FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 सितंबर सन 2026। इस स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 29 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। जैव उर्वरक के प्रकार एवं महत्व पर जानकारी दे रही हैं प्रति

0: किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की संरचना और बनावट में काफी बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण मिट्टी नमी रहित और सख्त हो गई है। वर्षा आश्रित क्षेत्र में नमी संरक्षण हेतु जैविक खाद का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसके प्रयोग से कृषि योग्य भूमि में आवश्यकता अनुसार सस्ते दर पर पोषक तत्वों की पूर्ति कर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक खाद की तुलना में इसके प्रयोग से फसल और मिट्टी को कोई हानि नहीं पहुंचती। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ उसके भौतिक और जैविक गुणों में वृद्धि होती है। अतः यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी परीक्षण के साथ साथ फसलों की आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल और प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर चलता रहा था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु और वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ साथ गौ पालन किया जाता रहा है। हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों और दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल और वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य और प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। जैविक खाद के प्रयोग से गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो रही है और जैविक खाद का प्रयोग रासायनिक खाद के प्रयोग की अपेक्षा अधिक पैदावार ली जा सकती है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। जैविक खाद के प्रयोग से होने वाले कई लाभ हैं किसान भाइयों, जैसे भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि, सिंचाई अंतराल में वृद्धि, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है, जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा, भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी और आय में वृद्धि होती है। जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं, जो भूमि के अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, इसलिए इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक है। इन खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं, इसलिए यह एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है। इससे मृदा उर्वरता का संतुलन ठीक रहता है। जैविक खाद रासायनिक खाद की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है, अर्थात जैविक खाद मृदा की उर्वरता और कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित ना हो, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा, जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों और मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी और हमें खुशहाल जीवन जीने की राह दिखा सकेगी। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बस यहीं तक। दीजिए हमें अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आज आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 200।

एक मशहूर गाना है, मन की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। गीतकार शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा। गाने को लिखते समय उनके क्या भाव थे यह तो नहीं पता, लेकिन यह सही है, मन की गिरह खोल दो, यानी मन के अंदर दबी हुई कोई भावना है तो उसे खोलकर बह जाने देना चाहिए, क्योंकि मन की यह दबी भावना, चाहे वह क्रोध हो, चिंता हो, दुख हो, यदि वह अंदर रह गया तो धीरे धीरे गांठ बनकर टीस पैदा करता है, जो जख्म बनकर नासूर बन जाता है। जैसे शरीर में गांठ उसे कैंसर की तरफ ढकेलती है, वैसे ही मन की गांठ जीवन के रस, स्नेह, आत्मीयता को सोखकर हमें दुखी, नीरस बना देती है। जिंदगी में हम अक्सर एक तरफा सोचते रहते हैं, क्योंकि हमें दूसरे पक्ष के बारे में बहुत ही कम पता होता है। अपनी उलझनों में हम उलझ कर रह गए हैं। तनाव इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी सोच पाना मुश्किल है। कुंठा, अवसाद से घिरा हुआ मन अंदर ही अंदर उलझता जाता है और फिर वह कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता है। हम अपने मन पर दूसरों के कचरे को जमा करते रहते हैं और व्यर्थ ही परेशान होते रहते हैं। दर्द में हम डूबे रहते हैं। मन के दर्द को परत दर परत धीरे धीरे साफ करते रहना चाहिए, जिस तरह हम मोबाइल को साफ करते हैं ताकि उसमें फालतू के संदेश ना रहें और मोबाइल की मेमोरी ठीक ठाक रहे। मन के अंदर बैठे व्यर्थ की गांठों को भी खोलकर मन को हल्का रखना चाहिए, ताकि मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे। मन की गांठ कैंसर से कम नहीं है। अगर कैंसर सही समय पर नहीं पकड़ा गया तो वह जीवन को खतरे में डाल देता है। वैसे ही मन की गांठ यदि ना खोली जाए तो यह भी मानव को मानसिक रोगी बना देती है। बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट, ये सभी मन के विकार हैं। मनोचिकित्सक इस विषय में कहते हैं कि मन की गांठ को खोलें, क्योंकि यह गांठ जब टीसती है तो आक्रोश, गुस्सा दिलाती है, रुलाती है। यह गांठ कभी बदला लेने के लिए आक्रोशित होकर ज्वालामुखी तरह धधक उठती है, तो कभी असहाय होने के एहसास की पीड़ा बनकर छटपटाती रहती है। जापानी चिकित्सा शास्त्री के कुरोकावा के अनुसार मन की यह पीड़ा तन में उतरे बिना नहीं रहती है। उनके शोध निष्कर्ष बताते हैं कि मन की परेशानी ज्यो-ज्यो गहरी होती है, वैसे वैसे तन की बीमारी का रूप लेती जाती है। यानी नकारात्मक भावनाएं न केवल मन को पीड़ा देती हैं, बल्कि तन भी हर पल बीमारी से ग्रसित होता चला जाता है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार का विकार न पड़ने दें। मन के अंदर क्रोध, बीमारी पनपने ना दें। मन में जो कुछ भी है उसे दूर झटक देना चाहिए। अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों को कभी भी घर नहीं बनाने देना चाहिए। और जो लोग सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, मन की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ। जी हाँ, गीत संगीत एक अच्छा टॉनिक है शरीर के लिए। इसलिए जब मन बेचैन हो, संगीत का आनंद लें, स्वस्थ रहें।

चिंतन कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी को। अब समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। आज आइए इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं भक्ति गीत हरिहरन सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति से।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का, जिसके तहत हम आपको देते हैं स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता डॉक्टर अर्चना कुमारी से। विषय है योग करें स्वस्थ रहें। भेंट करता है श्री संजीव कुमार लाल।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शरीर मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग बहुत ही सहायक है। तो यदि हम प्रातःकाल योग का सहारा लेते हैं, कुछ योग क्रियाएं करते हैं, तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा। तो कैसे योग को आत्मसात करें, योग के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रहें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राज्य योगा केंद्र के योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी। अर्चना जी स्वागत है। अर्चना जी, आज के समय में योग का कितना महत्व बढ़ गया है?
2: अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में योग को देखें तो सबसे ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो लोगों की शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हैं वो घटने के बजाय बढ़ते ही चली जा रही, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या में उन्होंने अब तनाव को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया है, उसको अगर वो धीरे धीरे धीरे धीरे हटाते नहीं चले जाएंगे तो ये बढ़ते चली जाएगी। और उसको हटाने का, अपने शरीर और मन को शांत शिथिल और स्थिर करने का एकमात्र उपाय योग है। अगर हम बात करें बीमारियों से लेके, तो आप देखेंगे आजकल की जो बीमारियां हो गई हैं वो मनोदैहिक हो गई हैं। मन से बीमारियां शुरू होती हैं और तब वो आपके शरीर में पहुंचती हैं। पहले के जीवन में था कि संयुक्त परिवार होता था, कोई भी हमारा खुशी वाला पल होता था या दुखी वाला पल होता था, हम घर में सबके साथ शेयर करते थे और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वैसा नहीं है। लोग अपनी बुरी समस्या हो वो कुछ भी बताना नहीं चाहते लोगों को, जिसके कारण वो तनावग्रस्त होते चले जा रहे हैं। तो योग जो हमारी भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है अष्टांग योग, मतलब तो योग के आठ अंग जो आज के परिप्रेक्ष्य में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आती है। तो सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझाना चाहें तो यम का मतलब होता है मन की शुद्धिकरण। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? नेगेटिव अगर हम सोचते रहेंगे तो उससे नहीं होगा ना? मतलब नेगेटिव विचारों को, नकारात्मक विचारों को आपको हटाना है और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश करना। जैसे सकारात्मक विचार आपके अंदर प्रवेश होंगे, आपके हार्मोन चेंज होने लगेंगे। तो ये हो गया मतलब कि आपके मन का शुद्धिकरण। नियम, दिन की जो क्रियाएं हैं जो शरीर के द्वारा की जाती हैं, जैसे मल का त्याग करना और भी छोटी छोटी चीज़ें। अगर छोटी सी चीज़ें हैं कि सुबह हमारा पेट साफ़ हो जाता है तो हम अपने शरीर और मन दोनों से फ्री हो जाते हैं। अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो हम अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो नित्य कर्म की जो क्रियाएँ हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे ही आप यम और नियम का पालन करने लगेंगे, आपका शरीर और मन दोनों आसन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब फिजिकल जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो इजी वे में होने लगेगा आपसे। और जैसे ही आप आसन करेंगे, आसन से आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर होगा। तो आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन का जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल होता है, वो नियंत्रित होता है आपके आसन और प्राणायाम से। जैसे आप आसन प्राणायाम की क्रियाएँ कंप्लीट करते हैं, प्रत्याहार के लिए आपका मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आज के समय में आप कहीं भी चलते हैं, कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है तुरंत, लेकिन जब प्रत्याहार जैसी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप अपने मन को बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण में इजीली प्रवेश करवा सकते हैं। तब आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेगी। आपके लिए क्या सही है, आपके शरीर और मन के लिए, आप सोचने में सक्षम होंगे और उस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक विचारों में चीज़ें नहीं आती हैं तब तक हम उन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही प्रत्याहार के लिए हम तैयार होंगे तो हमारा जो शरीर और मन है वो आंतरिक चीज़ों के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। और इसको भी मैं बहुत सामान्य भाषा में बताना चाहूँगी। धारणा मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ पे फोकस करना, धारणा। ध्यान मतलब उस फोकस जहाँ हमने किया है उस पे कंटिन्यूटी को बनाए रखना। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो लोगों के बीच पेशेंस नहीं रह गया है, तो उस पेशेंस का ही नाम समझिए तो एक तरफ से ध्यान है। मतलब उसमें कंटिन्यूटी को आप बनाए रख रहे हैं। और समाधि, आप उसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं, उस चीज़ को पा ले रहे हैं। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि जब आप इस चीज़ को करने लगेंगे तो हर छोटे छोटे वर्क में आपका जो छोटा छोटा डे टू डे लाइफ का नित्य प्रतिदिन का जो एक एम है आप उसको फुलफिल करेंगे, तब देखिएगा आप कैसे स्ट्रेस से मतलब स्ट्रेस तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप स्ट्रेस से निकलते चले जाएंगे। और दिन प्रतिदिन आप अपने बॉडी और माइंड की टॉक्सिसिटी को अगर रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट ईजली हो जाता है आपके लिए। क्योंकि स्ट्रेस अगर जीरो होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी कुछ नहीं पाएंगे, मतलब उसको बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अष्टांग योग बहुत हेल्पफुल है। आप देखेंगे नित्य प्रतिदिन के क्रिया में, मतलब 24 घंटे में अगर आप एक घंटा बहुत अच्छा योगा करते हैं जिसमें आसन प्राणायाम आप यूट्यूब देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं और एक घंटा बहुत अच्छा योगा करेंगे, लेकिन 23 घंटे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो
1: जी।
2: आप दूसरों के बारे में टॉक कर रहे हैं बार बार, जो खान पान का जो आपका तरीका है उस पर चेंजेस ला रहे हैं, जिस समय उठना है उस समय नहीं उठ के आप उस समय सो रहे हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए समस्या का कारण बनती हैं। तो आप दिन में अगर 5 या 10 मिनट का टाइम निकालें और बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ों को टेक्निक को फॉलो करें जिससे आपका शरीर और मन दोनों बैलेंस में रहे, तो इसके लिए कुछ कुछ बीच में आपको योगा ब्रेक सेशन लेने होते हैं। तो योगा ब्रेक सेशन में जैसे कि कभी थकान होती है तो चाय पीने की इच्छा होती है, आप चाय पिए फिर फ्रेश हो गए, तो बीच बीच में योगा ब्रेक सेशन, तो योगा ब्रेक सेशन का मैं बहुत सारे उसके टेक्निक्स हैं कि कैसे करना है, लेकिन जो छोटी छोटी टेक्निक्स जो डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं, जैसे जम्हाई लेना। आजकल के अगर हम सोसाइटी में कहीं बैठे होते हैं जम्हाई आती है तो हम रोक लेते हैं वहीं पे, अगर जम्हाई आ रही है प्रॉपर वे में जम्हाई ले लीजिए, अंगड़ाई आपको लेना है आप प्रॉपर वे में अंगड़ाई ले लीजिए। ये छोटी छोटी स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं हमारी, अगर स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे कुछ कुछ समय पे, अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं डाउन होके तो थोड़ा पीछे आप स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को, फुल बॉडी को आपको ताड़ासन की मुद्रा में मतलब अंगड़ाई जैसे लेते हैं वैसे आप स्ट्रेच कीजिए तो बॉडी आपकी फ्री होती है। उसके बाद कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग मतलब आपको स्लोली इनहेल करना है फुल्ली एक्सहेल करना है। आप देखेंगे आप बैठे बैठे एक लंबी गहरी सांस भरते हैं तो आप क्या फील करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अगर कंटिन्यूटी में 5 to 10 राउंड उसी समय कर लिया जाए तो आप बॉडी और माइंड से फुल्ली फ्री फील करेंगे। स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होना जेन्यून है क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया, तो आप उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ओम का उच्चारण, ओम में 3 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं अ उ म, तीनों के बॉडी के अलग अलग सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है। जैसे अ का है आपके एब्डोमिनल रीजन में, आपका पूरा पेट वाला जो भाग है उसमें उसका इम्पैक्ट आता है, उ से आपका थोरेसिक रीजन जहाँ से आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं आपका पूरा छाती वाला भाग, और म के उच्चारण में पूरा नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन एक्टिव होता है। तो जैसे आप ओम का उच्चारण कर ले 5 बार बीच बीच में, दो चीज़ें हैं, एक तो ओम का उच्चारण हम भ्रामरी प्राणायाम में यूज कर सकते हैं जिसमें मुंह बंद किया जाता है जिसमें भौरे का गुंजन आता है, एक ओम का उच्चारण में आपको प्रॉपर साउंड क्रिएट करना होता है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ, आप बीच बीच में इसको कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग सीरीज करने के बाद हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे है आपका भ्रामरी प्राणायाम, जैसे इसमें लंबी गहरी सांस भरते हैं हम लोग और सांस छोड़ते हुए भौरे का गुंजन करते हैं,

इसको ध्यान ही रखना कि खींचना नहीं है। आपकी ब्रीदिंग जितनी है, अगर आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट है तो शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट होगी, आपकी ब्रीदिंग अगर लॉन्ग है तो वो लॉन्ग पीरियड में कंप्लीट होगी। रिदमिक वे में कंप्लीट करना है 5 to 10 राउंड करना है, और आफ्टर जैसे कंप्लीट हो जाइए तो आपको वो जो वाइब्रेशन आपके मन मस्तिष्क में क्रिएट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसको आपको फील करना है कुछ सेकेंड के लिए। उसी प्रकार ओम का उच्चारण करते हैं हम लोग, इसमें भी एक लंबी गहरी सांस भरते हैं

0: आप जैसे ही ओम का उच्चारण करेंगे, आपके देखेंगे, आप खुद देखिएगा कैसे आपका जो अनवांटेड थिंकिंग है वो कैसे कंट्रोल होना स्टार्ट करती है, माइंड और बॉडी आपकी शांत शिथिल और स्थिर होना स्टार्ट करती है। आप इसको 5 to 10 राउंड में ही फील कर सकते हैं, बजाबते इसको प्रॉपर वे में किया जाए। और करने के बाद सडन आपको उठना नहीं है, सडन थोड़ी देर आपको फील करना है जो भी वाइब्रेशन आपका क्रिएट हुआ है, इससे आप फ्लक्चुएशन कम करने में हेल्पफुल होगा। प्लस ये स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कोशिश करना है हमें कि इनको डे टू डे लाइफ में, बीच बीच में जैसा हमारा वर्क पीरियड होता है, बीच बीच में हम एक योगा ब्रेक सेशंस लें और उसको करें। ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद चीज़ों को ना करें, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं।
1: आज की जीवन शैली के बारे में आप क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को? अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय अपने लिए निकालें, काम के समय में थोड़ा सा ब्रेक करके इन सारी गतिविधियों को करें और आप खुश रहेंगे, तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप खुश रहेंगे तो घर परिवार भी खुशहाल रहेगा।
0: देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि टाइम समय की कमी नहीं है, बस अवेयरनेस की कमी है। एज ए रिसर्चर अगर मैं कुछ बोलूँ तो योगा इज ओनली नेम ऑफ द अवेयरनेस। आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड इन द योगा। अगर इन सब चीज़ों, क्योंकि ये तो जनरल रूटीन की चीज़ है आपकी, अगर इन पे थोड़ा सुधार कर दिया, थोड़ी अवेयरनेस लेकर अगर आए आप, तो 2 से 3 मिनट का समय निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। आप 2 से 3 मिनट सोच।
2: इसके साथ ही आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यापारी लेनदेन पर ही लागू रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदर राजन ने लिखी है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में योगदान की जानकारी देती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों और कमजोर लोगों सहित और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। ये निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ये पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाई कुंडा में बनाए जाएंगे। इन चारों हवाई अड्डों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच उड़ान योजना के अंतर्गत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर 23 सितंबर को कोलकाता में हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री KR नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। अभ्यास सत्र उत्तराखंड के औली प्रशिक्षण केंद्र और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी और अधिक सुदृढ़ करना है। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकारों को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर करीब 200 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमलों में राजधानी के पेट्रोल पंप के अलावा कई क्षेत्रों में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिजरान की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को बचा लिया गया है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने विजयी लक्ष्य 15 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। कलाकार होंगी बशीर अंसारी और इनके साथी। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय है 7:45। आज के कलाकार हैं हरिहरन। सुबह के 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगी। फिल्म गीतों की महफिल सजेगी। 8:45 पर कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कड़ी संख्या 1373। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से हम जुड़ेंगे समाचारों के लिए, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे। दिन के 1 बजे पुनः दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे।

दिन के 2 बजे दिल्ली के अंदर से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार और 2:30 मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। 2:55 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली। शाम 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। शाम 5 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पुनः हमारे स्टूडियो से होगा कार्यक्रम विवरण। 5:35 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा होगी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और बचत की आदत पर, और साथ ही आप सुनेंगे वार्ता बेटियों की शिक्षा में माँ की भूमिका पर। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम और शाम 7 बजे

जी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगी। 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम एक रंग। 7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर सुशील पांडे से ली गई भेंट वार्ता, अपेंडिक्स कारण एवं निदान।

होंगे रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

नवा नवा याले हाय रे नवा नवा याले माया पहरी जम काले रे सिसाई थाना गदिल घार कुला के डो बाले हाय रे कुला के डो बाले

इसके साथ ही आज का स्वर सरिता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्री

0: मंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
2: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
6: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
7: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की

0: जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरल में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा

सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। यूपीआई के लिए संशोधित एमडीआर व्यवस्था अगले महीने से होगी लागू। यूपीआई के 96% व्यापारी से व्यापारी लेन देन पर नहीं होगा एमडीआर। 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने की शिरकत। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने दिव्यांगजनों के लिए सुगम संसद की जरूरत पर रखे विचार। गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए झारखंड बना देश का पहला मॉडल राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के इंटीग्रेटेड एनसीडी मॉडल को दी मंजूरी। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। और रांची में भारत वेस्ट इंडीज T20 मुकाबले की तैयारियां तेज। टिकट बिक्री जल्द शुरू होने की संभावना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होंगे टिकट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति यूपीआई लेनदेन पर किसी भी राशि के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर के दायरे में आने वाले लेनदेन और 2000 रुपए तक के व्यापारी भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। 2000

0: रुपए से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही एमडीआर लागू होगा। यह व्यवस्था अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगी।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है। सम्मेलन के वर्कशॉप बी में श्री महतो ने कहा कि दिव्यांगजन लोकतंत्र में केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नागरिक, मतदाता, प्रतिनिधि और निर्णयकर्ता हैं। सम्मेलन 19 सितंबर तक चलेगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 के जरिए करीब 41,000 मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन से फॉर्म 7 के सभी आवेदनों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है।
2: ये लोग फॉर्म 7 लोगों को दिया जा रहा है और लोग ये कहा जा रहा है कि ये फॉर्म सही है और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके उस फॉर्म को भरवाया जा रहा है ताकि जो लोग जेन्युइन लोग हैं गलत फॉर्म भर के उनका नाम हमेशा के लिए काट दिया जाए। दलितों का नाम काटा जा रहा है और खास करके मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। तो मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से कि जामतला जिला में चिन्हित किया जाए।
0: बीजेपी ने SIR में फॉर्म 7 के मामले में कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। पलामू बीजेपी के BLA सूर्या सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है।
3: SIR की प्रक्रिया में अगर फॉर्म 7 से किसी का भी नाम जाता है चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, तो उसे जुड़वा सकते हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट, क्योंकि यही SIR का सबसे पहला रूल है।
0: झारखंड को गैर संचारी रोगों की रोकथाम और समग्र प्रबंधन के लिए देश का पहला मॉडल राज्य चुना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य के इंटीग्रेटेड NCD मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, तंबाकू नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग, समय पर रोग की पहचान और डिजिटल ट्रैकिंग पर भी जोर रहेगा। सफल मूल्यांकन के बाद इस मॉडल को देश भर में लागू करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC परीक्षा में अनियमितता के मामले में जेल में बंद तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को रांची स्थित CID की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान CID ने आरोप लगाया कि श्वेता गुप्ता ने मोबाइल फोन के जरिए व्हाट्सएप पर परीक्षा की उत्तर कुंजी लीक की थी और जांच के आधार पर करीब 1000 पन्नों की केस डायरी अदालत में पेश की गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम में मेयर रोशनी खलको की अध्यक्षता में मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षदों और अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कर्मा पूजा, दुर्गा पूजा और छठ सहित आगामी पर्व त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। मेयर ने बताया कि सभी वार्डों और पूजा स्थलों पर साफ सफाई तथा प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए।
4: 53 पार्षदों से आग्रह किया गया था आज बैठक में आने के लिए, चूंकि कि लगातार त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, आपका गणेश चतुर्थी से आज शुरुआत हो जाती है और आप देखिए 3

0: महीने अलग अलग तरह के त्योहार होंगे, चाहे कर्मा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, इसके बाद दीपावली है, छठ है, तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। अब ऐसे में कैसे जन सुविधा चीजें हम लोग पहुँचा सकते हैं।
1: धनबाद के बलियापुर प्रखंड में जल संकट गहरा गया है। प्रखंड की करीब 12 पंचायतों के 27 गांवों में पिछले एक महीने से जलापूर्ति ठप है। रखितपुर रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की आपूर्ति बाधित हुई। ग्रामीणों ने जल्द जलापूर्ति बहाल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
2: लगभग 20 दिन हो गया, ठीक है, 20 दिन से जो है पानी का 12 पंचायत में ठप। कारण है कि जो आपका रेलवे अंडरपास रखितपुर है, वहाँ पर ठेकेदार काम कर रहा था और काम के दौरान जो है वो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। अब उसको बनाने वाला कोई नहीं है, जो है आना कानी किया जा रहा है, आज बनेगा कल बनेगा और कोई इस पर कार्य नहीं हो रहा है।
1: सरायकेला खरसावां जिला स्थित आदित्यपुर में 59वां अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया गया। स्वर्णरेखा भवन में हुए कार्यक्रम में भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर स्वर्णरेखा परियोजना के प्रशासक राजीव रंजन ने कहा कि अभियंता विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: विकास के अग्रणी यही लोग हैं, इन अभियंताओं के सहयोग से ही जो बोलते हैं कि राष्ट्र निर्माण करने में इनका काफी सहयोग रहता है। इसीलिए इस अवसर पर हमने सब लोगों को शुभकामना दी है इसका, और ये मतलब उम्मीद हम लोग करते हैं कि राष्ट्र निर्माण और हमारे राज्य के निर्माण में अपना ये जैसे योगदान दे रहे हैं इसको और बेहतर योगदान दे।
1: साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रांची होकर गुजरने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में अक्टूबर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी20 मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्टेडियम में साफ सफाई और रंग रोगन का काम चल रहा है। टिकट बिक्री से जुड़े टेंडर के आज से खुलने की संभावना है। जेएससीए के अनुसार टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बिना ठोस कारण एक दिन में 2500 से अधिक नियुक्ति रद्द करना तुगलकी फरमान जैसा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, वोटर लिस्ट में अब 30 सितंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम, सुधार भी होगा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीजीएल केस में यूट्यूबर और ट्रस्ट संचालक गिरफ्तार। दैनिक जागरण की लीड है, यूपीआई से 2000 से अधिक की खरीदारी पर लगेगा शुल्क। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई के लिए संशोधित एमडीआर व्यवस्था अगले महीने से होगी लागू। यूपीआई के 96% व्यापारी से व्यापारी लेनदेन पर नहीं होगा एमडीआर। 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने की शिरकत। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने दिव्यांगजनों के लिए सुगम संसद की जरूरत पर रखे विचार। गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए झारखंड बना देश का पहला मॉडल राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के इंटीग्रेटेड एनसीडी मॉडल को दी मंजूरी। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। और रांची में भारत वेस्टइंडीज टी20 मुकाबले की तैयारियां तेज। टिकट बिक्री जल्द शुरू होने की संभावना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होंगे टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
2: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करो।
1: अच्छा,
2: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
6: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
5: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
6: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
5: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा हित में जारी।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
8: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं चंबल की कसम फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: कुमार शानू और साधना सरगम को भी आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म में। और इस गीत के साथ ही आज के गीत गुंजन कार्यक्रम का समय अभी ही समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुप्रभात जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। दोस्तों, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जी हाँ, जब आप खुद अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं तभी आपकी हार होती है, वरना कोई भी आपको हरा नहीं सकता अगर आपने खुद हार नहीं मानी। बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है आज, और बादल छाए रहेंगे। कल यानी कि 17 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। तो मौसम की जानकारी के बाद बारी है आज की इस कार्यक्रम की पहले की।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं मुख्य खबरों पर। गैर संचारी रोगों की रोकथाम में के झारखंड मॉडल को मंजूरी। एनसीडी नियंत्रण में झारखंड बना देश का पहला मॉडल राज्य। मॉडल के क्रियान्वयन से झारखंड में गैर संचारी रोगों की रोकथाम मजबूत होगी। मॉडल में मौखिक स्वास्थ्य, तंबाकू नियंत्रण, उपशामक और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल। गैर संचारी रोग एनसीडी की रोकथाम और समग्र प्रबंधन की दिशा में झारखंड को बड़ी उपलब्धि मिली है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए एकीकृत गैर संचारी रोग नियंत्रण मॉडल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन 1 में 15 सितम्बर को हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव एवं मिशन निदेशक श्रीमती आराधना पटनायक ने मॉडल को मंजूरी दी। इसके साथ ही झारखंड में इसके क्रियान्वयन रास्ता साफ हो गया है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गैर संचारी रोग प्रभाग की ओर से उप महानिदेशक एवं निदेशक डॉक्टर एल स्वास्तिचरण ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई एकीकृत अवधारणा, संस्थागत ढांचे और तकनीकी व्यवस्था की जानकारी दी गई। केंद्रीय नेतृत्व ने मॉडल को व्यवहारिक और प्रभावी मानते हुए इसकी पूर्ण स्वीकृति प्रदान की। इस एकीकृत मॉडल के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, तंबाकू नियंत्रण, मुख स्वास्थ्य, उपशामक देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य को एक साझा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। गरो कपल ब्राजील के ट्रैक पर दम दिखाएंगी हजारीबाग की दो बेटियां। अंडर 17 विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पृथ्वी राव और अनोखी कुमारी का चयन। किसान परिवार से आने वाली दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जिले में है खुशी। हजारीबाग की खेल प्रतिभाओं ने एक बार फिर जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हजारीबाग में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दो युवा एथलीट पृथ्वी उरांव और अनोखी कुमारी का चयन अंडर 17 विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम में हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 3 से 10 दिसंबर तक ब्राजील में होगा। दोनों खिलाड़ियों के चयन से जिले के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता के लिए झारखंड के कुल 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें हजारीबाग में प्रशिक्षण ले रही पृथ्वी उरांव लंबी कूद और अनोखी कुमारी 400 मीटर बाधा दौड़ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। झारखंड में ऐसी इंजीनियरिंग संरचना विकसित करें जिसकी हो चर्चा, यह कहना है दीपिका पांडे का। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ JESC द्वारा रांची में 59वें इंजीनियर्स डे एवं भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की 165वीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुई। इस अवसर पर मंत्री दीपिका ने महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके कार्य और दूरदृष्टि के कारण आज भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर किसी भी राज्य के विकास के आधारशिला होते हैं। झारखंड में ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जो जनता के लिए उपयोगी, मजबूत और टिकाऊ हो। मेदिनीनगर फोरलेन बाईपास व पोखराहा बाईपास पर पोखराहा और जोड़ में बनेगा अंडरपास। 23 जुलाई को सांसद ने लोकसभा में उठाया था मामला। पलामू संसदीय क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। सांसद विष्णुदयाल राम के लगातार प्रयासों के बाद मेदिनीनगर फोरलेन बाईपास NH 39 पर पोखराहा एवं जोड़ के पास अंडरपास फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। सांसद ने दोनों स्थानों पर अंडरपास निर्माण की आवश्यकता को लेकर 23 जुलाई 2026 को लोकसभा में नियम 377 के तहत मामला उठाया था। इसके जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 31 अगस्त को पत्र भेजकर परियोजनाओं को वर्तमान स्थिति की परियोजनाओं की जानकारी दी गई और यह कार्य अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर जल सहियाओं के साथ बनी रणनीति। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान को लेकर हैदरनगर में मंगलवार को प्रखंड सभागार में जल सहियाओं की
बैठक संपन्न हुई। इसमें सार्वजनिक और सामुदायिक स्तर पर गंदे स्थानों को चिन्हित कर सफाई कराने की रणनीति बनाई गई। प्रखंड व समन्वयक हरसु कुमार दयानिधि ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान के तहत तालाबों, सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों एवं अन्य धार्मिक स्थलों और सामुदायिक संस्थानों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। जल सहियाएं अपने अपने गाँव के लोगों को अभियान से जोड़ने का काम कर रही हैं। उन्होंने जल सहियाओं को गंदे स्थानों को चिन्हित कर जियो टैग फोटो साझा करने और सफाई के बाद उसी स्थान का दोबारा जियो टैग फोटो भेजने का निर्देश दिया है। अगस्त में 20 हादसों में 12 की मौत, नियम उल्लंघन पर 67 चालान से 7 लाख रुपए वसूले गए। सड़क दुर्घटनाओं पर डीसी ने जताई चिंता, ब्लैक स्पॉट के लिए बनेगी विशेष कार्य योजना। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अगस्त में हुई सड़क दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिक दुर्घटना वाले स्थलों की मैपिंग कर उनके लिए अलग कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि अगस्त 2026 में जिले में 20 सड़क दुर्घटनाएं हुई, इनमें 12 लोगों की मौत हुई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जनवरी से अगस्त तक जिले में 239 सड़क दुर्घटनाओं में 172 लोगों की मौत और 155 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अगस्त में 67 चालान जारी किए गए। बिना लाइसेंस, शराब के नशे में वाहन चलाने, बिना फिटनेस और परमिट, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट और बिना बीमा वाहन चलाने के मामलों में कार्रवाई की गई। अगस्त में 45 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए गए। दुबियाखाड़, कंडाघाटी, लोहारा, पोखराहा और सतबरवा बाजार सहित चिन्हित ब्लैक स्पॉट की बैठक में समीक्षा की गई। इन स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण, साइन बोर्ड, रंबल स्ट्रिप, रिफ्लेक्टर, कन्वेक्स मिरर और बैरिकेटिंग जैसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम में तेजी लाने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार, विभिन्न SDPO, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रोताओं, आप भी सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें और अगर आप ईमानदारी से इन नियमों का पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक सड़कों पर आप सुरक्षित होते हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय बिना हेलमेट के आप सड़कों पर बिल्कुल न उतरें और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप राइडिंग गियर्स का इस्तेमाल करें। राइडिंग गियर्स में आपके पैरों में जूते होने चाहिए, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए और अगर आपकी पैंट थोड़ी मोटी है यानी जींस जैसे पैंटों को आपने पहन रखा है तो भी चोट लगने पर आपके घायल होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और आपके सिर पर जो हेलमेट हो वह एक टोपी न हो। आपको चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं पहनना है बल्कि आपको अपने सिर की सुरक्षा और अपने जीवन को बचाने के लिए हेलमेट पहनना है। आपका हेलमेट DOT सर्टिफाई होना चाहिए और अगर आप ऐसा हेलमेट पहनते हैं, आप उच्च कोटि का हेलमेट पहनते हैं तो आपके सिर की सुरक्षा होगी और दुर्घटना में आप अपनी जान नहीं गंवाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में ज़्यादातर मौतें सिर में चोट लगने से होती हैं और उसमें समय भी नहीं मिलता कि मरीज को बचाया जा सके। तो आप अपने सिर को अवश्य बचाएं और दो पहिया वाहन चलाते समय आप हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें और अगर आप

और कभी भी ड्रिंक करके यानी कोई भी नशा करके आप गाड़ी न चलाएं। और गाड़ी चलाने से पहले आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। अगर आप रात को भरपूर नींद नहीं लिए और सुबह सुबह आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी भी आपको झपकी आ सकती है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और साथ ही आपके जीवन में कोई भी टेंशन हो, कोई भी तनाव हो, कृपया उसे घर पे छोड़ के ही सड़कों पर निकलें। जब आप सड़कों पर हो तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो। जब आप तनाव मुक्त होंगे तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे और आप सही दिशा में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि अपनी गलती से नहीं बल्कि किसी और की गलती से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगर आप सही चल रहे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं, आपकी स्पीड भी सही है, उसके बावजूद भी कोई और आकर आपको ठोक कर चला जाता है, आपको दुर्घटनाग्रस्त करके चला जाता है, तो आपको सड़कों पर यह भी सावधानी बरतनी है कि कोई गलत तरीके से आकर आपको डिस्टर्ब न करे, आपको आपका एक्सीडेंट न करवा दे। और साथ ही सही लेन में आपको चलना है और तमाम राइडिंग गियर्स का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार आप अगर सही सड़क सुरक्षा नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं, ईमानदारी से पालन करते हैं, तो काफ़ी हद तक इन दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप सड़कों पर जा रहे हैं, चाहे आप पैदल हों, बाइक से हों या कार से हों, और कहीं पर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ आपको दिखता है, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं और तुरंत उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि अब यह सब करना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोई भी पुलिस या कोई भी व्यक्ति आपको तंग नहीं करता, बल्कि इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास जो गोल्डन आवर होता है, यानी दुर्घटना के बाद का जो एक घंटे का समय होता है, अगर उसका सही इस्तेमाल हो और सही समय पर वह व्यक्ति अस्पताल तक पहुंच जाए तो उसकी जान काफ़ी हद तक बच सकती है। तो आप इसके लिए ज़रूर आगे आए, कहीं भी आप वीडियो बनाने में मस्त न हो ताकि वह समय हाथ से निकल न जाए, बल्कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। आप पुरस्कार के भी भागी होंगे और पुणे के भी भागी होंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इन शब्दों पर अमल करेंगे। और इसके बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की। 1908 में अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की स्थापना आज ही की तारीख यानी 16 सितंबर को हुई थी। 1810 में मैक्सिको ने स्पेन के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। तारीख थी 16 सितंबर। 1963 में मलाया, उत्तरी बोर्नियो, सरावाक और सिंगापुर को मिलाकर मलेशिया का गठन किया गया था आज की तारीख को। 1975 में पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता मिली थी। 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी आज ही के दिन। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म भी हुआ था आज की तारीख को। 1961 में भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका M.S. सुबालक्ष्मी का जन्म हुआ था 16 सितंबर को। 1893 में प्रसिद्ध झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्याम लाल गुप्त पार्षद का जन्म हुआ था। तारीख थी 16 सितंबर। 1968 में भारतीय सिनेमा के मशहूर गीतकार प्रसून जोशी का जन्म भी आज ही की तारीख यानी 16 सितंबर को ही हुआ था। तो और भी कई बातें हैं आज के इतिहास से जुड़ी, और समय समय पर आज के इतिहास की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसे ओजोन परत संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका उद्देश्य है पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के क्षरण या नुकसान और इसके बचाव के उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि यह दिन 1887 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया दिलाता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों को कम करने से जुड़ा हुआ है। तो यह थे आज की इतिहास की जानकारी और आज के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें, और अब बारी कार्यक्रम की अगली की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन प्रशांत गौरव का। और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग, कड़ी संख्या 1313।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
3: हेलो चिल्ड्रन।
4: हेलो मैम।
3: हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन मैम।
5: आई एम गुड मैम।
6: आई एम फाइन।
3: गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। Do you like going to the garden?
4: Yes, ma'am.
5: I like it.
3: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
7: I see beautiful flowers.
3: And any other thing that you like in a garden?
8: I like sitting under the tree.
3: And you, Soham?
9: I like to see butterflies.
3: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
4: Yes, ma'am.
8: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
3: Very good, that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
4: garden.
3: Wonderful, you have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत। और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन। इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है।

0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन रामकृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,

0: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली

0: ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्रों से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद हम जुड़ेंगे मुंबई केंद्रों से, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आइए, समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र

0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2000 रुपए से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीक क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। IMF के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहा है। इस दौरान श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैक्काल में भी आज स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 दिन में बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं केरलम के एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कुन्नूर जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर

0: Chandigarh and Delhi today. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. And that is the end of this news bulletin.
1: नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे।
2: अच्छा, एनीवे
1: तो क्या कह रही थी आप?
2: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है, जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है?
1: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहां पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर में। जी हाँ, थिएटर में
2: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
2: फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
1: क्यों हम लोग टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं।
2: यही बात तो उगलवाना चाह रहे थे।
1: गुस्सा आ गया, गुस्सा दिलवा के है।
2: अच्छा, जब शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्याल आते हैं इस बारे में?
1: देखिए, मेरे ख्याल जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं, मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया, लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है, आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज़ अ ग्रेट मैजिक, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
2: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
1: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं
2: जो आपको पसंद हो।
1: गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है, और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
2: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे,
1: जी हाँ
0: मतलब प्रवेश करते थे,
1: जी,
0: और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं वो सीरियल से आ रहे हैं। सीधी बात है,
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम
1: जिनको,
0: कर रहे
1: जिनको
0: हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है वहां
1: नहीं,
0: भी
1: रोजी रोटी के
0: शायद।
1: भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है।
1: जी
0: आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस,
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा, तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं नहीं हाँ, तो ऑब्वियसली
0: है ना,
1: जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप? पॉपुलर हर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं
0: मतलब
1: मिला था इनिशियली,
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को 1 साल दे, 2 साल दे, 2.5 साल दे, 3 साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को।

0: कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है, कि कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या?
1: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है,
0: जी
1: तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को, किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
0: नहीं, क्यों, मैं जेलसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, तो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
1: ताकत।
0: ताकत, इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए। ये
1: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं, या सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: पति
0: नहीं
1: के लिए?
0: नहीं वो वजह बहुत छोटी थी, मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
1: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना।
0: सुंदर सी बीवी के लिए
1: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए, क्यों नहीं?
0: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं,
1: कौन सी फिल्म का?
0: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी आप हम क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूँ। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं IAS पे जाऊँ, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे NDA का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं NDA में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना
1: नहीं
0: वहां पर?
1: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
0: नहीं,
1: नहीं
0: अच्छा।
1: इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
0: अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या
1: ये
0: ख्याल है इस
1: आप
0: बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
0: ऊंची है
1: ऊंचे
0: ना?
1: होंगे,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ
1: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
0: जी,
1: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
0: ओ
1: तो देखिए एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो दो तीन थोड़ी आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है एक 60वां भी होगा वहां, तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहां आया, कहीं कोई और चीज जिम में ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए। ये
0: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, हाँ, चप्पा चप्पा कोशिश करते
1: बिल्कुल,
0: रहना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए। इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में,
1: माचिस
0: हो जाए
1: बिल्कुल हो जाए, जलाइए
0: चप्पा चप्पा चरखा,
1: जलाइए माचिस
0: तो सुनते हैं वही गाना चप्पा चप्पा चरखा चले
1: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: अब बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था। मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वो यूज टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन मुझे, आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर तो मैं ये भी
0: 20
1: कर
0: 25 साल हो गए
1: डालूंगा।
0: आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। नहीं, अब देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स

0: बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम ही इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं, तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, गोता
1: चांस लेना
0: हाँ चांस लेना चाहूँगा।
1: फिल्म में या सीरियल में,
0: किसी में भी,
1: किसी में भी। अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
0: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि मैं
1: आप बड़े आर्टिस्ट
0: हैं
1: भाई।
0: तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ, देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूँ डायलॉग लाइन को यूँ करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियाँ नहीं हैं, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियाँ
1: जी।
0: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज़ जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा ज़रूरी है।
1: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना ज़रूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा है कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
0: मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती, आपको कैसा लगता है ये?
0: देखिए ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूँ।
1: मतलब जो छूट गया वो छूट गया,
0: मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है या फिर मेरी कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह,
0: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है,
1: मतलब छैया छैया
0: हाँ, छैया।
1: तो आइए फिर सुनते हैं छैया छैया,
0: बेशक
1: है, आपको पसंद है ना।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नहीं, नहीं ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने
0: जी,
1: उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं।
0: अच्छा
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मैं मुझे शौक है खेलने के, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे जाते हैं।
1: तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में, या वो आपकी ही मदद करती रहती
1: हैं? नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है, तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि, और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: जी हाँ, एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दूसरा आई टेक ऑन, एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
0: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप।
1: हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
0: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
1: सत्ता, जी हाँ जी,
0: है ना?
1: हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया
0: है।
1: चलिए साहब,

0: अच्छा कमल जी,
1: जनाब।
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में। तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ,
0: कुछ
1: बेकार
0: और
1: ही
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के,
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इससे
0: मतलब
1: अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाए,
0: है
1: अगर
0: ना।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहे काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं। वरना एक वो होता है, इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो ज़रा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
1: नहीं
0: गया
1: नहीं
0: कि मैं काम कर लूं,
1: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है या लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है?
1: नहीं,
0: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: ठीक
1: है। तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड

0: मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जानी मानी भजन गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी का जन्मदिन है। हम उन्हीं की याद में ये भजन आपको सुनवा रहे हैं।

एमएस सुबालक्ष्मी की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना। और आइए एक बार फिर इसी आवाज को सुनते हैं। ये भक्ति पद भी संत मीराबाई का ही है।

महान भजन गायिका एमएस सुब्बालक्ष्मी के जन्मदिन पर हमने उन्हें इस कार्यक्रम में भजन के जरिए आज याद किया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और गैर फिल्मी गीत, स्वर जावेद अली का। गीतकार और संगीतकार हैं सुहित अभ्यंकर।

0: la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
0: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाजें मुबारक बेगम, जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की, और ये अजीज गाजी की लिखी कव्वाली है। संगीत विपिन और महबूब का है।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में रोशन नादान का ये कलाम।

कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार का लिखा ये पारंपरिक गीत, आवाजें मीका सिंह, यो यो हनी सिंह और साथियों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज

0: रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आपने ये भक्ति पद सुना। आइए लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये नानक का शब्द। संगीत दिया है सिंह बंधु ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद मेहदी हसन का गाया ये राजस्थानी लोकगीत मांडगा।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

सूरज से मैंने समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोती रहो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी, किस लिए?

0: नितिन मुकेश और साथी। इस गैर फिल्मी रचना को संगीत दिया है भूपेन हजारिका ने।
1: बंवराता आया

0: इस गैर फिल्मी रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूले। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये

है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम गीतकार प्रसून जोशी के लिखे कुछ गीत लेकर आए हैं। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे संगीतकार राम लक्ष्मण को भी। तो पहले सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में ये गीत।

फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। आवाजें एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों की। गीत को देव कोहली ने लिखा है।

कार्यक्रम में आप सुनिए राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

यादों की महफिल, आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण का संगीत, नूर कसकार का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम महबूब मेरे महबूब।

अभी आपने राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में पत्थर के फूल फिल्म का ये दो गाना सुना। स्वर लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के थे। इससे पहले आप सुन रहे थे फिल्म सातवां आसमान का गीत। गाने वाले कलाकार थे प्रीति उत्तम और उदित नारायण। सूरज सनीम के बोल थे और राम लक्ष्मण की धुन।

0: राम लक्ष्मण की संगीत निर्देशन में रविंद्र रावल का लिखा गीत आपने सपना अवस्थी का गाया हुआ सुना। फिल्म का नाम था दुल्हन बनू मैं तेरी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
6: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
7: क्या बात है।
6: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
5: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
6: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
7: बिल्कुल।
5: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत, और अब सुनते हैं गीतकार प्रसून जोशी की गीत रचनाएं। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स, आवाजें रेखा भारद्वाज और साथियों की प्रसून जोशी के बोल ए आर रहमान की धुन।

कार्यक्रम में आप सुनिए जतिन ललित का संगीत, प्रसून जोशी के बोल, शान और कैलाश खेर की आवाजें, फिल्म का नाम है फना।

कार्यक्रम का अगला गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का ही लिखा हुआ, स्वर है बेनी दयाल श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम है गजनी।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम तुम का युगल गान, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, गीत प्रसून जोशी का और धुन जतिन ललित की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त

0: सात मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Lalema Aneja Dang. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, that is P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero merchant discount rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that merchant discount rate MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's Parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from tomorrow across the country. It will continue till the 17th of next month. The key focus areas of the campaign include transforming cleanliness target units and high footfall public places, promoting youth participation in cleanliness and promoting Swachhata Se Samriddhi through circular economy and waste to wealth initiatives. The theme of this year's campaign, Swachhata Me Sehbhag, Swachh Bharat, Vikasit Bharat, underlines the role of collective participation and shared responsibility in advancing the vision of a Swachh and Vikasit Bharat. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of this month. During his three-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Mordvikiev, on issues of mutual interest, including professional military cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honor and pay tribute to fallen soldiers at the tomb of the unknown soldier in Moscow. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme for 2026 is Global Action for a Cooler Planet. This year marks the 10th anniversary of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. On the occasion, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change Kirti Vardhan Singh said that the ozone layer is the shield against harmful UV rays. In a social media post, the minister said that simple measures like maintaining ACs at 24 degrees Celsius and choosing efficient

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में दो सोना समेत पांच खदानों के लीज आवंटन रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा नीलामी के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेंशन भुगतान में देरी से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की परेशानी का उठाया मुद्दा। राज्य सरकार से बकाया राशि जल्द भुगतान करने की रखी मांग। देश भर में कल से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान। युवाओं की भागीदारी और वेस्ट टू वेल्थ पर रहेगा जोर। विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण का संदेश। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एसी का तापमान 24 डिग्री रखने और ऊर्जा दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल पर दिया जोर। और हजारीबाग के चौपारण में 18 दिवसीय नमो फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू। 64 टीमें लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने दो सोना खदान समेत पांच खदानों के लीज आवंटन रद्द कर दिए हैं। इनमें दो सोना, एक लौह अयस्क और दो ग्रेफाइट खदान शामिल हैं। इन खदानों में फॉरेस्ट क्लियरेंस समेत आवश्यक मंजूरी नहीं मिलने के कारण उत्पादन शुरू नहीं हो सका था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निष्क्रिय खनिज ब्लॉकों को रद्द कर दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने पहले भी लंबे समय से निष्क्रिय खदानों की समीक्षा कर उन्हें दोबारा नीलाम करने की प्रक्रिया पर जोर दिया है। 15 अक्टूबर से झारखंड में बालू घाटों पर एनजीटी की रोक समाप्त होगी। इसके साथ ही बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अभी 444 में करीब 304 घाटों की नीलामी हुई है। खान निदेशक ने बताया कि अभी सिर्फ 14 बालू घाटों से ही बालू का खनन हो रहा है।
1: इस राज्य में कुल मिला के 444 बालू घाट हैं, जिसमें से कि 304 बालू घाटों का सक्सेसफुल ऑक्शंस कंप्लीट हो चुका है और कुल मिलाकर 45 घाटों का सीए के द्वारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त हो चुका है और जिलों में इन सभी घाटों के फाइनल लीज देने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में वृद्धा और दिव्यांग पेंशन के भुगतान में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 महीनों से पेंशन का भुगतान रुका हुआ है, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के सामने दवा, राशन और घर का चूल्हा जलाने तक की परेशानी खड़ी हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की बकाया राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से पूरे देश में शुरू होगा। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों और अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहलों के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। झारखंड भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को कार्यकर्ता अपने घरों, मंदिरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में आशीर्वाद का दिया जलाएंगे। बैठक में जिला और मंडल स्तर की कमेटियों के गठन को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया गया। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित किसी भी अफवाह, भ्रम या अपुष्ट सूचना पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी बीएलओ को बंधक नहीं बनाया गया है। डीसी ने बताया कि दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार सत्यापन और निस्तारण किया जाएगा।
2: फॉर्म 6 में 39,458 फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1230 फॉर्म अभी अनप्रोसेस्ड बचे हैं। फॉर्म 7 में हम लोग को जो टोटल फॉर्म रिसीव हुए हैं 319 है, जिसमें से 214 अभी अनप्रोसेस्ड। फॉर्म 8 में 42,337 फॉर्म हम लोग को प्राप्त हुए हैं, उनको भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर्म 8 में शिफ्ट डेट वाला है, जिसमें फैमिली मेंबर्स को एक साथ करना है अथवा किसी का जो बूथ है अगर दूर है तो अपने पास के बूथ है नाम जुड़वा सकता है। 19 अक्टूबर हम लोग का फाइनल कन्विक्शन का अभी डेट है।
0: राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की झारखंड प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को ज्ञापन सौंप कर आगामी जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष ने मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इस संबंध में कानून मंत्री से बातचीत की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली ढाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा, ओजोन परत का संरक्षण मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने लोगों से सुरक्षित भविष्य के लिए टिकाऊ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। जमशेदपुर के चाकुलिया में हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। विभाग 14 अति संवेदनशील हाथी प्रभावित क्षेत्रों में AI कैमरे और टावर लगा रहा है।

0: चलकर मार डाला। मृतका की पहचान गोहर पहाड़ निवासी कमला देवी के रूप में हुई है। विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने घटना पर दुख जताते हुए वन विभाग से हाथियों से लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से काम करने की मांग की।
1: इस तरह की घटनाओं को लेकर वन विभाग गंभीर हो और इसका स्थायी समाधान का रास्ता ढूंढे, और जिस तरह से अन्य राज्यों में या अन्य जगहों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है और फोन नेटवर्क सिस्टम से लोगों को आगाह किया जा रहा है, उस तरह का नए आधुनिक टेक्नोलॉजी से जिधर जिधर हाथी जाते हैं उधर के लोगों को आगाह किया।
0: गणेश पूजा के मद्देनजर रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में कल रात क्षेत्र भ्रमण कर पूजा पंडालों, क्राइम ब्लैक स्पॉट, स्नैचिंग, अड्डेबाजी और निशानेबाजी वाले संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुरला पहाड़ क्षेत्र में छापेमारी में अवैध शराब बरामद की गई। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को गश्ती और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
2: कुछ कटिंग्स जिनके कारण की जाम लग रहा था, मैंने ट्रैफिक एसपी के साथ डिस्कस किया और उन कटिंग्स को हम लोग तत्काल जो है जो स्लाइडिंग बैरियर से हम लोग बंद करवाएंगे ताकि ट्रैफिक को बेटर तरीके से रेगुलेट किया सके। इसके अलावा जो सड़क के किनारे जो ऑटोज और कुछ अन्य गाड़ियां जो खड़ी हो रही हैं उनके लिए भी हमने बोला है कि कल से जो है फाइन काटने का एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि ऐसी जगह जहां पे पार्किंग नहीं होनी वहां पे लोग गाड़ी पार्क करके ट्रैफिक में व्यवधान फैलाने पड़े।
0: आज सुबह के सेशन में घरेलू इक्विटी इंडेक्स में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 117 अंक बढ़कर 23,235 पर रहा। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। हजारीबाग के चौपारण में सांसद खेल महोत्सव के तहत 18 दिवसीय नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। ब्लॉक मैदान में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल और विधायक मनोज कुमार यादव ने किया। टूर्नामेंट में विभिन्न पंचायतों की 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मुकाबला इंगूनिया और सेवई की टीमों के बीच हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में 2 सोना समेत 5 खदानों के लीज आवंटन रद्द, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा नीलामी के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेंशन भुगतान में देरी से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की परेशानी का उठाया मुद्दा। राज्य सरकार से बकाया राशि जल्द भुगतान करने की रखी मांग। देश भर में कल से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान। युवाओं की भागीदारी और वेस्ट टू वेल्थ पर रहेगा जोर। विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण का संदेश। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एसी का तापमान 24 डिग्री रखने और ऊर्जा दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल पर दिया जोर। और हजारीबाग के चौपारण में 18 दिवसीय नमो फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू, 64 टीमें लेंगी हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये कि ऐसा कौन सा गीत है जिनके बोलों का स्पष्ट अर्थ तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सा जो शब्द है आपको आज भी याद है। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो त्रिदेव फिल्म का गाना है ना, ओए ओए ओए ओ वाह, ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। ये जो कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से गाया जाता है, अमित कुमार साहब गाते हैं, तो ये गाना जो शुरू होता है तो एक अलग ही रिदम महसूस होती है। और तो आपको भी बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द आपको पसंद आता है या आया किसी एक गाने का जिक्र बस। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी या निरर्थक जिसे हम मानते हैं, कौन सी है जो आपको सबसे मजेदार लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि गीतकारों ने ऐसे गीत लिख दिए हैं जिनका कोई मतलब ढूंढने बैठे तो शायद उलझ ही जाएगा, लेकिन सुनते ही वो गाना चेहरे पर हमारी मुस्कान जरूर आ जाती है। तो ऐसे ही शब्दों की मस्ती है इस गीत में, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कहते हैं मुझको राजा। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

పడక బౌల బెట బం బం పడక బౌల బెట బం.

बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी बादशाह कुड़िए पुत्र

0: मेरे जमूरे जरा हटके, चल वे दिखा दे प्यारे बटके, यहीं से दिखेगा अलमत्ता, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, हरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी, कल आज और कल 20 साल पहले, एक से एक नहले पे दहले, एक से एक नहले पे दहले, बैकुम बैकुम काला तुड़ी जो दुमा का चोशुर बाड़ी रेल कॉम जमा जाम पा बिजे आलो दम कांदे की भाजी हाय मुल्ला कादी रसून की चटनी हाय कटनी का बटरा मुंशी मुंडका हक्का पक्का हुजूर अगदाज दिमागे फुरकत हुजूर अगदाज दिमागे फुरकत कमाले हलकत कमाले हलकत चल हट नट कट पन घट चट पट फुटबॉल वॉलीबॉल डस्टबिन बेसबॉल पिंग पॉंग किंग कॉन्ग बॉल बॉल हॉल हॉल
1: क्या शानदार गीत था और हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या सोच के मजरू साहब ने इस गीत को लिखा होगा, है ना? आपके मन में भी जरूर ये सवाल आया होगा। तो इस मजेदार गीत के बाद हम श्रोताओं के जो विचार हैं उनको शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अर्थहीन शब्दों के गीतों से सजा सुरीला सफर कुछ अलग अंदाज में होगा, ऐसा हम सोचते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये गीत के शब्द शब्दकोश में हैं भी कि नहीं। गीतकार ने क्या सोचकर लिखा होगा इन शब्दों को और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर गीतों के शब्दों को गुनगुनाने के लिए इस प्रकार से ये हमारे लिए छोड़ दिया और गीत हमेशा के लिए यादगार गीत बन गए। तो फिर सुनते हैं खूबसूरत गीतों का ये सफर आपके साथ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं हमें उम्मीद है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में कई ऐसे हैं जिसमें कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर सुनने में मजा आता है। ये ताल धुन और सुंदर संगीत के संयोजन पर निर्भर करती है। जीवन से न हार जीने वाले जिंदगी है खेल जैसे करके आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी शब्द अर्थ की तलाश छोड़कर सिर्फ धुन का हाथ थाम लेते हैं फिर बेतुके से बोल भी सुरों में घुलकर ऐसी मिठास रचते हैं कि उनका कोई शब्दार्थ न होते हुए भी वे मन की भाषा बन जाते हैं। संगीत की यही खूबसूरती है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां धुन अपना अर्थ खुद लिख देती है। आज सुरीला सफर उन्हीं अलहड़ अटपटे और बेपरवाह बोलों की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा जहां अर्थ भले न मिले मगर आनंद भरपूर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज आपको आनंद तो भरपूर मिल रहा है ना? सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था, ऐसा कौन सा गीत यानी किसी एक गीत का नाम आपको बताना है जिनके बोलों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था लेकिन वो अजीब सा शब्द या वाक्य आपको आज भी याद है। जैसे कि हमने आपसे कहा ओए ओए ये जो वाक्य हमें बेहद पसंद आता है, खासतौर से मुझे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल है,

0: कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी लगती है या निरर्थक लगती है या आपको हंसा देती है, कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। जैसे कि अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ना, उसमें वो पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है, कौन सी बताइए। फिल्म जंगली का गीत है वो। सुकू सुकू अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू, है ना। तो कभी कभी प्यार में दिल की बात कहने के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते दोस्तों, बस एक शरारती सी धुन और कुछ अनोखे बोल काफी होते हैं। और ये जो गीत अब आप सुनने वाले हैं, इसके बोल भी उसी मस्ती और चुलबुलेपन का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का ये दिलकश और मस्त मौला गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है। और हाँ, ये भी बताइएगा, फिल्म जंगली का एक और गीत है जिसे हम अक्सर कहीं ना कहीं उस शब्द को गाते हैं या पसंद करते हैं। लिखना शुरू कर दीजिए।
1: करूं मैं क्या सुकू सुकू, आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू,

0: दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: दोस्तों को मत ऐ दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा।

श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इसी फिल्म में एक और गाना है, याहू, है ना। ये गाना हमें बेहद पसंद आता है और जब भी हम खुश होते हैं तो इसी अंदाज में गाते हैं याहू। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दे दिया है कि वो कौन सा गीत है। वो यही गीत है चाहे मुझे कोई जंगली कहे। और भी श्रोताओं ने लिखा है कि श्रीदेवी का हवा हवाई गाना उन्हें बहुत पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे उल्टे पुल्टे गीतों में मुझे जब जब फूल खिले का गीत रफी साहब का है वो पसंद आता है। और फिल्म कारवां का भी जो आशा जी की आवाज में है कि मैं कहां आप हंसी, वो वाला गाना इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता को किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मेरे सामने वाली खिड़की में उस गाने की जो शुरुआत है वो बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को यम्मा यम्मा जो गाना आर डी बर्मन की आवाज में है वो बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के गीतों में अटपटे या बेतुके शब्दों जिनका शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इसके साथ साथ कुछ गीतों में दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य का प्रयोग गीत के मीटर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, लेकिन वे बेतुके नहीं होते और उनका अर्थ होता है, जैसा कि दो फूल का गाना है मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि हम तमिल गीत को नहीं समझ पाए, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, उस वाक्य को नहीं समझ पाए, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया है गीत करने। लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है, जब हम समझते हैं तब पता चलता है, लेकिन उसको सुनते समय हमें लगता है कि कितना बेतुका सा शब्द लगता है, है ना। और वहीं और सारे गानों का जिक्र भी आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अभी मुंबई की उड़ान पर हूं, इसलिए आज के दिलचस्प कार्यक्रम में प्रतिभागी नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अरे आप तो हमारे नियमित श्रोता है और लगातार लिखते हैं, अच्छी बात है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम ये उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का अंदाज और मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में मंदाकिनी जी अपने आप में एक ऑलराउंडर उद्घोषिका हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आपने हमारी तारीफ में लिखी है कुछ चंद पंक्तियां, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि सच में संगीत अद्भुत कला है जिसे वरदान स्वरूप इंसानों को मिला है। कई पुराने गीतों में उटपटांग शब्दों को भी इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, ढालकर प्रस्तुत किया गया है कि आश्चर्य भी होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अत्यंत सुंदर गीतों से सजे हुए सुरीला सफर में कई दोस्तों को नमस्कार लिखते हैं और हमें भी हंसती खिलखिलाती हुई। अच्छा हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में गीत शब्दों का अर्थ घटन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है। चाहे टिम्बकटू हो या काठमांडू, लारालप्पा कहते हुए अपलम चपलम हो, गापूजी कापूजी हो, या फिर देखिए डम डम डिगा डिगा होता है, अगर नहीं हुआ तो इनामिना डीका होगा और होना ही है। विविध भारती के लिए इतना जरूर कहते हैं कि आहा झमाझम प्यारे प्यारे गीत लिए, जब छोटी बहना मंदाकिनी जी आ रही है तब झिंगुर तो बोलेगा, और चिकी मिकी जब हमारी नजर टिकी हुई है घड़ी की सुई की ओर तो कब एक बजने वाला है और चिलचिल के कजरी सुनने को मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है, शुक्रिया, मेहरबानी। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम त्रिदेव। कितना चला था ये ओए होए, याद है आपको? इससे जुड़ी कोई घटना याद हो तो बताइए।

हमारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। आप लिखते हैं कि अजी किबला मोहतरमा ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू चीज बड़ी है मस मस ये मोहरा फिल्म का गाना हमें पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार का फिल्म मिस मैरी का गाना न आया बजाना न आया ये गाना बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमसे आंख मिलाना बीए पास करके ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार जी का एक गाना पसंद है जगत नारायण की जय जय बोलो और नगद नारायण छोड़ो, उसमें भी बीच में बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, शब्द आते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हैं। वहीं एक श्रोता को मुझे संगम फिल्म का गीत लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया ये गाना बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है आज तो आपने मेरी मनपसंद का ये सबसे मनपसंद गीत सुनवा दिया जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ है। और मैं अभी यही बताने वाला था कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है, आपने जो सवाल पूछे थे उसका पहला जवाब यही है कि किशोर कुमार का गाना ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गीत याद आ रहा है मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू ये गीत बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता को हेलन जी पर फिल्माया गया गाना आ जाने जा इसमें जिंगा लाला हूं जो शब्द आते हैं वो इन्हें बेहद पसंद आते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये शालीमार फिल्म का गाना है, इसमें ये पंक्तियां आती हैं झिंगा लाला हुर हुर ऐसे करके आती हैं। तो आप कहते हैं कि इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया मंदाकिनी जी, लेकिन गाने का आनंद तो आप उठाते हैं ना। एक श्रोता को इलू इलू गाना जो था वो बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नीलकमल पिक्चर का गाना है खाली डिब्बा खाली बोतल ये बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता को पांच रुपया बारह आना गाना जो है किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ वो बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन फिल्म का गाना इन्हें बेहद पसंद है, साथ ही फिल्म झुमरू का गाना आपने लिखा है जा रे जा तू मुंह धो के आ, जहां किशोर कुमार और आशा भोंसले इस गीत को गाते हैं वो गीत बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गे गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू वाला गाना बहुत पसंद है। और एक श्रोता को पड़ोसन फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही एक श्रोता ने लिखा है कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा ये गाना हमें बेहद अच्छा लगता है। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। खय्याम साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन अटपटे और अर्थहीन जैसे लगने वाले शब्दों को लोगों के दिल तक पहुंचाने में सचमुच संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत दिनों बाद ये तक धुम धुम गाना सुना, अटपटा है मगर सुर लय के कारण बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई भी गाना निरर्थक नहीं होता, जो संगीत मन को भा गया वही अर्थपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी गीत निरर्थक नहीं होता। हमने कहा कि हमें कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो बेतुके से लगते हैं या निरर्थक लगते हैं, तो लेकिन उनका इस्तेमाल कितने खूबी के साथ किया गया है कि वो गीत हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, तो उन गीतों का जिक्र आज हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुके शब्दों से बने गीत अक्सर आपस में खेली जाने वाली अंतराक्षरी की शान होते हैं, जिसे सब बढ़ चढ़ कर गाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आप हर बार नया विषय खोजकर लाती हैं जो आपके रिसर्च वर्क को दर्शाता है। दूसरे, आपकी इबारत एकदम नपीतुली है, टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं है, गागर में सागर की तरह। आज अटपटे शब्दों वाले गीत विषय पर मुझे एक अलग तरह का गाना याद आ रहा है, मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम की आवाज में है और तारा रम पम पम पम करके ये गाना है जो इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हमारा दिमाग सुन्न हो गया है कुछ भी गाने समझ नहीं आ रहे हैं। अरे आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद तो आपको लगा होगा ना कि आज हमने किस तरह के गीतों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्य में इबारत की बात सामने आई है, आज कुछ ऐसे गीतों की बाहर है जिनके शब्दों में अर्थ भले ही हमें शब्दकोश में ना मिलते हों लेकिन उनकी धुन सुर लय ताल हमारे जहन में है ना, कितनी अच्छी बात। अरे दिल तो अभी से ही हक्कू बक्कू करने लगा है। और आपने कई शब्दों का जिक्र भी किया है जो किशोरदा अपने गानों में अक्सर करते हैं, ओ पांडुबा है ना, इस तरह के गाने किशोरदा ने बहुत गाए हैं, उनका जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गीतों की गणना हास्य गीतों में की जा सकती है और हर जीवन में हास्य की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जीवन के आपाधापी में प्राय सभी के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। इस दृष्टिकोण से आज का ये इबारत प्रशंसनीय है, अपितु सराहनीय भी है। अब देखिए ना, पुराने किशोर कुमार अभिनीत फिल्म आशा में किशोर कुमार ने एक गीत गाया है इना मीना डी का और संजीदगी से भरा वो गीत है, लेकिन जब उसे सुनते हैं तो उसका कुछ और ही रूप नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, जब इस गाने का जिक्र हो गया है तो सुन लेते हैं यही गीत। सी रामचंद्र यानी चितलकर साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण की बोल है, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है आशा।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

तो किशोर कुमार और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था आशा। और ये गीत तो हमने कई बार कई जगह गुनगुनाया भी है और कई कार्यक्रमों में हमने इस गीत को बखूबी और लोगों को गाते सुना भी है। लोग कोशिश करते हैं कि इस गीत को किस तरह से हास्य से परिपूर्ण बना दिया जाए, है ना? आपने भी कोशिश की कभी इस गीत को गाने की? बताइएगा। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। बताइए इसमें कौन सी पंक्ति है जो हमें थोड़ा सा अटपटी लगती है लेकिन बड़ी मजेदार है?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संगीत की उस अनोखी दुनिया की ओर ले जाती है जहां हर बात का अर्थ होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई स्पष्ट मतलब नहीं मिलता, फिर भी वे धुन के साथ मिलकर यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही गीतों से जुड़ा है आज का ये कार्यक्रम और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों का जिक्र भी किया है जिनमें हमें ये अटपटे और चटपटे शब्द सुनाई देते हैं और वो गीत हमेशा के लिए यादगार बन भी जाता है। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं तक और फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio.

0: सैनिक को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2000 से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गयी।

0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
5: वासुदेव कमला। कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्मभूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोककर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, कभी कभी किसी फिल्म की कहानी हमें कुछ घंटों तक बांधे रखती है, लेकिन उस कहानी के गीत सालों साल हमारे साथ चलते हैं। कभी किसी गीत में प्यार की मासूमियत सुनाई देती है, तो कभी परिवार की खुशियां, कभी दोस्ती और कभी त्योहारों का ऐसा रंग जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो आज ऐसे ही एक संगीतकार जोड़ी की बात करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में जब यादगार धुनों की बात करते हैं ना, तो राम लक्ष्मण का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इन फिल्मों के गीतों ने सिर्फ लोकप्रियता हासिल नहीं की, बल्कि एक दौर की पारिवारिक और रोमांटिक फिल्म संगीत की पहचान भी बना दी थी। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक मशहूर संगीतकार की नहीं, आज की कहानी एक ऐसे संगीतकार की है जिसने अपने साथी की मृत्यु के बाद भी उसकी पहचान को अपने नाम से अलग नहीं होने दिया। ये कहानी है काशीनाथ पाटिल, यानी हमारे जाने पहचाने राम लक्ष्मण की।

श्री बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत संगीत फिल्म 100 डेज से लिया गया है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम कलाकार यानी कि एक ही कलाकार जो आज हमने चुना है राम लक्ष्मण। विजय पाटिल का जन्म 16 सितंबर

1942 को नागपुर में हुआ था। संगीत उनके जीवन में बहुत जल्दी आ गया था। उन्होंने शुरुआती संगीत शिक्षा अपने परिवार से ही हासिल की और आगे चलकर शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया। नागपुर में वे गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार के रूप में ऑर्केस्ट्रा से जुड़ गए, लेकिन उनके सपने सिर्फ मंच पर गाने या वाद्य बजाने तक तो सीमित नहीं थे। वो संगीतकार बनना चाहते थे और इसी सपने को लेकर विजय पाटिल मुंबई पहुंच गए। हालांकि मुंबई में आना संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाना था, यहां पर उनका संघर्ष भी बढ़ा और मुलाकात हुई सुरेंद्र कदम से। सुरेंद्र भी संगीतकार बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे थे। दोनों की दोस्ती हो गई, संगीत को लेकर सोच भी मिली और धीरे धीरे दोनों ने साथ काम करने का फैसला ले लिया। यहीं से जन्म हुआ उस जोड़ी का जिसे आगे चलकर हिंदी सिनेमा में राम लक्ष्मण के रूप में जाना। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उन्होंने खुद नहीं चुना था। मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता निर्माता दादा कोंडके ने इस जोड़ी को राम लक्ष्मण नाम दिया था। दादा कोंडके ने अपनी फिल्म पांडु हवलदार में इसको संगीत देने का मौका दिया था और यहीं से उनकी प्रतिभा की पहचान हुई थी। साल 1975 ये मौका दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और राम लक्ष्मण की जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। यानी जिस जोड़ी ने आगे चलकर हिंदी सिनेमा में रोमांस, परिवार और उत्सव के गीतों की नई लोकप्रियता दी, उनकी शुरुआत हुई थी मराठी सिनेमा से। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कौन सा वो मोड़ था, बात करेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, राम लक्ष्मण का संगीत के जो करियर की शुरुआत है वो बहुत जबरदस्त हुई, और जैसे ही उनका कदम हिंदी फिल्मों में रखा गया, राम लक्ष्मण को हिंदी फिल्म एजेंट विनोद मिली। लेकिन फिल्म के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद सुरेंद्र कदम यानी कि राम का निधन हो गया। विजय पाटिल के सामने अब एक बड़ा सवाल था कि क्या वो राम लक्ष्मण नाम छोड़ दें या अपने साथी की याद को अपने काम के साथ जीवित रखें। विजय पाटिल ने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने अकेले ही संगीत देना जारी रखा लेकिन नाम वही रखा, राम लक्ष्मण। यानी एक व्यक्ति संगीत दे रहा था लेकिन नाम में दो लोगों की साझेदारी कायम थी। ये फैसला सिर्फ कमर्शियल पहचान बनाने का नहीं था, बल्कि वो अपनी यादों में संगीत में अपने साथी को सम्मान देना चाहते थे, उन्हें हमेशा संगीत में याद रखना चाहते थे। और इसी कहानी को शायद सभी लोगों ने बहुत ही भावुकता से देखा। समय आगे बढ़ता गया, राम लक्ष्मण नाम से विजय पाटिल ने हिंदी, मराठी, भोजपुरी सिनेमा में लगातार संगीत दिया। एजेंट विनोद, तराना, 100 डेज, पुलिस पब्लिक, पत्थर के फूल, और उसके बाद दौर आया 1989 का। फिल्म थी मैंने प्यार किया, निर्देशक सूरज बड़जात्या, मुख्य भूमिका में थे सलमान खान और भाग्यश्री, और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने। फिल्म की कहानी में प्यार था, दोस्ती थी, परिवार था, और इन भावनाओं को गीतों ने आवाज दी। इस संगीत को भी लोगों के यादों का हिस्सा बन गया। मैंने प्यार किया कि सफलता ने राम लक्ष्मण को देश भर में एक बड़े फिल्म संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया, और इसी फिल्म के संगीत के लिए विजय पाटिल को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।

तो भाई अब हमारे बहुत सारे श्रोता भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपने अपने संदेश, प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो ये पहला संदेश आया है चानीसर गौत से, अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक, शेख शंकर, गुल शर्मा, वीरानी वाले, और सारे गाने उन्हें बहुत ही अच्छे लिख रहे हैं, ऐसा संदेश उनका है। और अगले संदेश के साथ हैं तुलसी मस्कीन जी, जो जुड़ रहे हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघा, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना, और ये लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग से आगाज हुआ सुन बेलिया, और आज कार्यक्रम में एक ही कलाकार में राम लक्ष्मण जी को याद किया जा रहा है। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार का है, लिखते हैं आज फिल्म जगत के मशहूर संगीतकार राम लक्ष्मण के बारे में बेहतरीन बातें, रोचक किस्से और नगमे सुनवाए जा रहे हैं, हमें भी बेहतरीन जानकारी मिल रही है, हमें भी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आप कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अगला संदेश ग्राउ फ्रांसिस से है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी का। अगले संदेश के साथ है संजय ढींगिया जी जुड़ रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और हमारे श्रोता हैं श्रवण सिंह गिल, लोहागढ़ ठकुरावाला से दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज जी, और संदीप मक्कड़ जी जुड़ रहे हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, बुराया जालंधर से, निसार अली जुड़ रहे हैं धनौरी तेलीवाल से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएस नुहावकर, निर्मला नुहावकर और विशाल नुहावकर, और लिख रहे हैं कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है, साथ ही राधेश्याम देवगन, चंपा देवगन, राजू नेहा, जगदीश देवगन भवरपुर बसना से जुड़ रहे हैं। अगले संदेश के साथ छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद असहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, और देवशंकर तमूरिया, अजय सिंह, अजय देव तमूरिया, पोता मास्टर अली कबीर जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं एक ही कलाकार में राम लक्ष्मण के बारे में सुन रहे हैं, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। तो जी हमारे बहुत सारे श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं और साथ ही साथ अपने संदेश भी भेज रहे हैं, तो चलिए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत जो है फिल्म हम आपके हैं कौन से, आवाज SP बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोताओं, राम लक्ष्मण की असली पहचान सिर्फ रोमांटिक गानों तक सीमित नहीं थी, उनकी धुनों में भारतीय पारिवारिक माहौल की मिठास भी थी। हम आपके हैं कौन साल 1994 में आई थी राजश्री प्रोडक्शंस की ये फिल्म भारतीय परिवारों के लिए एक उत्सव, रिश्तों और परंपराओं को केंद्र में लेकर बनाई गई थी। और इसकी गीत राम लक्ष्मण की खासियत ये थी कि उनकी धुनें सीधे दिल तक पहुंचती थी, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। और एक खास बात यह है कि राम लक्ष्मण के गायकों के साथ काम करने की शैली बिल्कुल अलग थी। फिर आया साल 1999, हम साथ साथ हैं, एक बार फिर सूरज बर जाते, एक बार फिर राजश्री प्रोडक्शन और एक बार फिर राम लक्ष्मण की धुनें। विजय पाटिल ने राजश्री के साथ कई फिल्मों में काम किया, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं उनके करियर के प्रमुख पड़ाव थे। लेकिन राम लक्ष्मण की कहानी को केवल 3 फिल्मों तक सीमित करना उनके पूरे सफर के साथ न्याय नहीं होगा। अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी, भोजपुरी में 150 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली, सूरज बड़जात्या जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। आज की संगीत यात्रा में बस इतना ही। अगली बार जब आप इस तरह का कोई भी गाना सुने तो सिर्फ गायक की आवाज पर मत रुकिएगा, उस धुन के पीछे बैठे उस संगीतकार को भी जरूर याद कीजिएगा जिसने सुरों को कहानी का हिस्सा बनाया। अभी के लिए लेती हूँ आपसे विदा और छोड़े जाती हूँ आपको एक और प्यारे से गीत के साथ।

और इस गीत के बाद यानी कि 3 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गोल्डन एरा, जहां पर आपको हमारी साथी अर्चना गोयल जी ले जाएंगी बॉलीवुड के स्वर्णिम युग की तरफ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आंखों की जुबान सबसे अलग होती है, जो बात लफ्ज नहीं कह पाते वो अक्सर एक नज़र कह देती है। नमस्कार दोस्तों, मैटनी मेलोडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। आज हम लेकर आए हैं हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया से एक ऐसी थीम जिसके बिना मोहब्बत की कोई कहानी शायद पूरी नहीं होती। आंखें, नजरें, निगाहें, नैन। कभी आंखें प्यार का इजहार करती हैं, कभी इंतजार का, कभी शिकायत का, तो कभी पिछड़ने का दर्द भी आंखें बयां कर देती हैं। और हिंदी सिनेमा में तो आंखों को लेकर खूबसूरत गीत दिए हैं कि लगता है जैसे गीतकार ने आंखों में पूरी एक कहानी गढ़ ली हो। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें आंखों की खूबसूरती और उसका जादू दोनों महसूस होता है।

कितनी खूबसूरत बात है ना, बिना कुछ कहे किसी की आंखों से आंखें मिल जाएं और दिल संभल जाए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इसलिए तो मोहब्बत में पहली बातचीत अक्सर शब्दों से नहीं, नजरों से होती है। पुरानी दौर की फिल्मों में आंखों को सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें भावनाओं की भाषा बना दिया गया। और जब बात आंखों की हो तो अगला गीत भी जैसे इसी कहानी को आगे बढ़ा।

दोस्तों जानते हैं, आंखों की सबसे खास बात यही होती है कि वे झूठ बोलना नहीं जानती। चेहरा मुस्कुरा सकता है, होठ कह सकते हैं कुछ नहीं, लेकिन आंखें बता देती हैं कि दिल के अंदर क्या चल रहा है। कभी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, तो कभी किसी की याद में ठहरी हुई नमी, और कभी यही आंखें किसी के प्यार में ऐसी डूब जाती हैं कि दुनिया की हर चीज धुंधली नजर आने लगती है। इसी एहसास को इस गीत में सुनते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। और अब सुनते हैं अखियों की दास्तां को बयां करता एक और गीत, फिल्म गूंज उठी शहनाई से आवाजें हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त की।

कहा जाता है कि इंसान की आंखें उसके दिल का आईना होती हैं। शायद इसलिए फिल्मों में जब किसी किरदार की भावनाएं शब्दों से ज्यादा दिखानी होती थी तो कैमरा अक्सर उनकी आंखों पर ठहर जाया करता था। एक नज़र और पूरी कहानी बदल जाती थी। कभी पहली मुलाकात में, कभी विदाई के वक्त, कभी मिलने की खुशी में और कभी जुदाई के दर्द में आंखें हर एहसास की गवाह बनीं।

और अब जरा उस दौर की ओर चलते हैं जहां मोहब्बत थोड़ी धीमी थी, मुलाकातें कम थी और चिट्ठियों का इंतजार लंबा था, और एक नज़र मिल जाना भी कई दिनों की खुशी दे जाता था। ऐसे ही एहसासों से जुड़ा एक बेहद खूबसूरत गीत सुनते हैं।

और इसी के साथ मैटनी मेलोडीज के आज के सफर में आंखों की भाषा को महसूस करते हुए मैं अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। आज हमने जाना कि फिल्मी गीतों में आंखें सिर्फ आंखें नहीं होती, कभी वो ख्वाब होती हैं तो कभी इंतजार तो कभी प्यार, कभी आंसू और कभी किसी की पूरी दास्तान। फिर मिलेंगे मैटनी मेलोडीज में फिल्मी गीतों की सुनहरी यादों के साथ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है उर्दू मजलिस।

0: बुले की तरह नापायदार है और दुनिया की रौनक शराब की मानिंद। इस एहसास बेसबाती का असर मीर के इश्क पर भी पड़ता है। शायद यही वजह है कि उनके यहाँ मोहब्बत में खुशी के साथ एक गहरी उदासी भी मौजूद है। मीर का आशिक दुनिया से बेनियाज नहीं, बल्कि दुनिया के दुख से पूरी तरह वाकिफ है। वो मोहब्बत करता है, टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होता। यही मीर के इश्क की अजमत है। उनकी शायरी में खुद कलामी भी बहुत नुमाया है। मीर अक्सर अपने दिल से बात करते हैं, अपने जख्मों को देखते हैं और अपने जज्बात का एहतसाब करते हैं। ये खुद कलामी दरअसल हर उस इंसान की आवाज बन जाती है जिसने मोहब्बत की हो, जुदाई सही हो, किसी को खोया हो या अपने अंदर नामालूम दर्द को महसूस किया हो। मीर का कमाल यही है कि वो अपने जाती तजर्बे को इज्तमाई इंसानी तजर्बा बना देते हैं। उनका दुख सिर्फ मीर का दुख नहीं रहता, वो हर उस शख्स का दुख बन जाता है जो मोहब्बत में नाकाम हुआ, जिसे जुदाई ने आजमाया, जिसे तन्हाई का सामना किया, जिसने जिंदगी की बेसबाती को करीब से देखा। वो बरमला कहते हैं, हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। मीर की शायरी में इश्क एक ऐसा आईना है जिसमें हमें इंसानी जिंदगी के बेशुमार सूरतें दिखाई देती हैं। उसमें मोहब्बत भी है और महरूमी भी, उम्मीद भी है और शिकस्त भी, वसल की खुशबू भी है और हिजर की अजियत भी। वो कहते हैं, इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपने ही मुब्तला है इश्क। मीर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ अकल से नहीं, एहसास से भी पहचाना जाता है। दिल के तजर्बात, आंसू, तन्हाई, इंतजार, ख्वाहिश और शिकस्त, ये सब इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए मीर की गजल आज भी हमें अपनी सी महसूस होती है। जी बिल्कुल, जमाना बदल गया, जिंदगी के अंदाज बदल गए, लेकिन इंसानी दिल की बुनियादी कैफियत आज भी वही है। आज भी कोई किसी के इंतजार में है, कोई जुदाई का दुख सह रहा है, कोई मोहब्बत के ख्वाब का मुंतजर है और कोई अपने ही दिल के सवालों में उलझा हुआ है। और शायद यही मीर की शायरी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो अपने अहद से निकलकर हर अहद के इंसान के दिल तक पहुंच जाते हैं। मीर के इश्क में इंसान टूटता जरूर है, मगर उसी टूटने में से अपनी जात का शऊर भी हासिल होता है। इश्क उसे बताता है कि इंसान कितना कमजोर है, कितना हसास है और अपने जज्बात के सामने कितना बेबस भी। शायद वो इसीलिए ये कहते हैं, मुझको शायर ना कहो मीर कि साहब मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। ये सिर्फ एक आशिक का शिकवा नहीं, बल्कि इंसानी दिल की वो आवाज है जो सदियों का सफर तय करके आज भी हमारे कानों में सरगोशी करती है। वो जिंदगी को देखे किस तरह सहल बनाकर पेश करते हैं। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कहा जाता है कि मीर ने तमाम उम्र सऊबते रंजो अलम तकालीफ में अपनी जिंदगी गुजारी और 20 सितंबर 1810 को इस दारिफानी को अलविदा कहा और आखिरी आरामगाह लखनऊ उत्तर प्रदेश को बनाया। उन्होंने खुद अपने लिए कहा था, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। इस शेर के साथ हम खुदाए सुखन, जिसको उस्ताद का दर्जा मिर्जा गालिब ने भी दिया था, खुद उनके अल्फाज में ये कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। मीर को पढ़ना दरअसल इंसान के दिल को पढ़ना है और मीर के इश्क को समझना अपने अंदर के इंसान को समझने की एक कोशिश भी है।
1: मीर तकी मीर की गजल में इश्क का फलसफा और इंसानी कैफियत। अभी आप इस मौजू पर मोहतरमा नेहा जोहरा से उनकी तकरीर सुन रहे थे। सामिन, मीर तकी मीर की बात हो रही हो और गजल ना सुनी जाए, आइए सुनते हैं मीर की ये गजल आवाज का पैरहन दिया है इंदु प्रकाश ने।

0: इंदु प्रकाश की गाई ये गजल आपने सुनी। कलाम था मीर तकी मीर का। समीन, मुख्तसर अफसाना नसरी अदब की एक इंतहाई मकबूल सिंफ है। नावल के मुकाबले में अफसाने में ज़िंदगी के एक जुज या जाविये को पेश किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इख्तसार और एक ही वक्त में इसका तासुर छोड़ना है। अफसाना सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं बल्कि ये अपने अहद का आईनादार होता है। तरक्की और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की वजह से इंसान के पास तवील नावल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, इसलिए ये इसके मुतबादिल के तौर पर भी कारगर है। और ये माशरे की बुराइयों और नफ्सियाती उलझनों का भी अक्कास है। आइए सुनते हैं अफसाना मोहतरमा उनज़िला फारूकी से। उन्वान है नीम रुख तस्वीर ट्रेंड।
1: मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए मरियम ने जैसे ही अपनी फेसबुक वॉल स्क्रॉल की, उसकी फ्रेंड लिस्ट के ज्यादातर लोगों की पोस्ट में एक के बाद दीगरे कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही थीं। किसी ने आंखों तक चेहरा छुपा रखा था, किसी ने बालों की आड़ की हुई थी, कोई हाथ से रुखसार ढापे हुए था और किसी ने तस्वीर को ऐसा जाविया दिया था कि चेहरे का सिर्फ एक हिस्सा नजर आ रहा था। हर तरफ लोगों के चेहरे दिख रहे थे, मुस्कुराते हुए, सोच में डूबे हुए और सबसे ज्यादा आधे चेहरे। सोशल मीडिया पर इन दिनों नीम रुख तस्वीर फैशन, हाफ फेस एस्थेटिक लुक ट्रेंड जो चल रहा था, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लोगों की ऐसी तस्वीरें गर्दिश कर रही थी। मरियम ने मोबाइल में इस पर रख दिया। लोगों को आखिर पूरा चेहरा दिखाने में क्या कबाहत है? मरियम की ये बात सुनकर सामने बैठी सारा हंस पड़ी। तुम भी कितनी पुरानी सोच रखती हो यार, इसे कहते हैं स्टाइल, मिस्ट्री लुक। मरियम ने बेदिली से कहा, ओहो मिस्ट्री लुक, जी हाँ आजकल का यही ट्रेंड है। सारा ने अपना मोबाइल उठाया, कैमरा खोला और बालों को एक खास अंदाज से चेहरे पर गिराया। देखो ये सेल्फी कैसी है। मरियम ने तस्वीर देखी, चेहरे की एक आंख, आधी नाक और होठों का एक किनारा दिखाई दे रहा था। अच्छी है, मरियम ने कहा। सिर्फ अच्छी? हाँ, अरे यार तुम्हें फन और फैशन की कोई समझ ही नहीं है। सारा ने अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। चंद मिनटों में उसकी पोस्ट पर बहुत से लाइक और कमेंट आने लगे, वाह, खूबसूरत, वंडरफुल, लाजवाब वगैरह वगैरह। सारा का चेहरा खिल उठा, वो कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी। मरियम खामोश बैठी रही। सारा और मरियम की दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। दोनों एक साथ पढ़ाई करती, एक साथ इम्तिहान देती और ज़िंदगी के अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ भी निभाती। हालांकि दोनों एक साथ पली बढ़ी, लेकिन दोनों की शख्सियत में कुछ बुनियादी फ़र्क थे। मरियम खामोश तबीयत और संजीदा ख्याल, बातें कम करती और सारा बातें बहुत करती थी। कभी बेतकल्लुफ़, कभी घुमा फिरा कर, उसकी कुछ बातें फ़ौरन समझ में नहीं आती। वो अपनी गुफ्तगू में नए नए अल्फाज का इस्तेमाल करती। बहुत सी बातों में कई दूसरे मतलब छुपे होते थे। फिर वो बेतकल्लुफाना हंसती और अपने इस अंदाज से कभी कभी मरियम को भी हंसने पर मजबूर कर देती। पिछले कुछ माह से मरियम नोटिस कर रही थी कि आजकल सारा हर शख्स के सामने एक नया रूप इख्तियार कर लेती है। असातिज़ा के सामने संजीदा, दोस्तों के सामने बेतकल्लुफ, बड़ों के सामने बाअदब और ज़रूरत पड़ने पर अजनबियों के सामने ऐसी मासूम कि देखने वाला उसकी हर बात पर फौरन यकीन कर ले। मरियम अक्सर उसे छेड़ती, तुम्हारे अंदर कितने लोग रहते हैं? सारा हंसकर जवाब देती, जितने लोगों की ज़रूरत हो उतने। पहले ये जुमला मजाक लगता था, लेकिन अब नहीं। सोशल मीडिया पर सारा रोज़ाना एक पोस्ट ज़रूर करती। उसकी हर तस्वीर पर सैकड़ों रद्द अमल आते। कभी वो किताब हाथ में लिए होती, कभी खिड़की के पास बैठे कॉफ़ी मग हाथ में लिए पोस्ट देती, कभी बारिश में भीग रही होती और उसकी तकरीबन हर तस्वीर में पूरा चेहरा नज़र नहीं आता। मरियम ने एक दिन सारा से पूछ ही लिया, तुम पूरा चेहरा क्यों नहीं दिखाती? सारा ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, पूरा चेहरा दिखा दिया तो लोग क्या देखेंगे, तुम और तुम्हारा चेहरा। नहीं यार, मरियम ने उसे गौर से देखा, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। सारा ने बात बदल

और दोनों कैंटीन की तरफ चल दी। कुछ अरसे बाद सारा के फॉलोअर्स काफी बढ़ गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर उसकी मकबूलियत बढ़ने लगी। उसकी तस्वीर पहले से ज्यादा खूबसूरत थी। वो नई नई जगह घूमने जाती और वहाँ के अच्छे अच्छे स्नैप वीडियो पोस्ट करती। लोग उसकी शख्सियत के बारे में कयास लगाते। उसकी तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट्स आते। सारा ये पढ़कर बहुत खुश होती। पहले वो मरियम से फोन पर खूब बातें करती थी। आज उसे इतने लाइक्स मिले, आज उसकी पोस्ट को इतने लोगों ने देखा। लेकिन अब वो अपनी सोशल लाइफ में इतनी मसरूफ हो गई थी कि मरियम के साथ तवील गुफ्तगू तो क्या करती, मैसेज में भी उनकी कम बातें होने लगी। अब बस कॉलेज में ही उनकी मुलाकात होती। मरियम जानती थी कि लोगों को हकीकत से ज्यादा राज पसंद है और बातिन से ज्यादा जाहिर। एक मुकम्मल चेहरा इंसान को आम बना देता है और छुपा चेहरा सारा को खास बना रहा था। एक दिन मरियम ने सारा को कैंटीन बुलाया। तुम्हें नहीं लगता तुम बदल गई हो? क्या मतलब? शायद हम मकबूलियत के खुमार में वही बनने लगते हैं जो हकीकत में नहीं होते, सारा ने कह कहा लगाया। आजकल तुम बहुत फलसफी बन गई हो। और तुम? मैं लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। अच्छी बात है, इंजॉय करो। हाँ यार, याद आया, मुझे जल्दी निकलना है, बाद में बात करते हैं। अरे कॉफी तो खत्म कर लो, आराम से चली जाना, शाम में मिलते हैं, अभी घर नहीं जाना। सारा बैग उठाती तेज कदमों से कैंटीन से बाहर निकल गई। मरियम, बुरा नहीं मानना यार, जल्दी ही मिलते हैं, मरियम उसे जाते हुए देखती रही। कुछ माह बाद सारा और मरियम अपने तालीमी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई यूनिवर्सिटी गईं। सारा की सोशल मीडिया पर मकबूलियत देखकर कुछ लोग उससे काफी मुतासिर होते। पहले दिन जब दोनों यूनिवर्सिटी गईं तो सारा बहुत पुरएतमाद नजर आई। नर्म लहजा, नपीतुली गुफ्तगू, बात करने का एक नया और खास अंदाज। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। डिपार्टमेंट में भी लोग उसे पसंद करने लगे। लेकिन उन्हीं दिनों एक अजीब बात हुई। जिस काम का क्रेडिट मरियम को मिलना चाहिए था, सारा उसे अपनी तरफ खींच लेती। जिस गलती की जिम्मेदारी सारा की होती, वो बड़ी महारत के साथ मरियम के सर डाल देती। वो कभी बराह रास्त मरियम से कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ हालात को इस तरह मोड़ देती कि मरियम खुद कसूरवार दिखाई देने लगे। उसके इस रवैये से मरियम हैरान थी। वो सारा से बात करना चाहती थी, लेकिन सारा मसरूफियत का बहाना बनाकर बात टाल देती। एक दिन यूनिवर्सिटी से दोनों साथ हॉस्टल जा रही थी। मरियम ने सारा से कहा, तुम बिल्कुल बदल गई हो। सारा ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ। छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लिया करो यार, मैं बहुत सी बातें दरगुजर करती हूँ सारा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सारा चिढ़ गई, ये क्या बातें करने लगी हो? अच्छा, क्या नजर आती हूँ मैं? नहीं सारा, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे अंदर न जाने कितना जहर भरा हुआ है। तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हें नहीं लगता? साथ होकर भी तुम मुझे इग्नोर करती हो, लोगों के सामने तुम मेरे साथ

0: सारा ने हंसकर जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लिया करो यार, मैं बहुत सी बातें दरगुजर करती हूँ सारा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सारा चिढ़ गई, ये क्या बातें करने लगी हो, अच्छा क्या नजर आती हूँ मैं? नहीं सारा, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे अंदर न जाने कितना जहर भरा हुआ है, तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हें नहीं लगता? साथ होकर भी तुम मुझे इग्नोर करती हो, लोगों के सामने तुम मेरे साथ दिखाया। रात को सारा अच्छे से सो नहीं पाई, उसके जहन में मरियम के साथ हुई बातें गर्दिश कर रही थी। सारी बातें भूलने की कोशिश में फोन चलाते चलाते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उसकी नींद खुली तो 11 बज रहे थे, आज संडे था। वो जब आईने के सामने आई तो पहली बार उसे अपना चेहरा अजीब लगा। नहीं, चेहरा अजीब नहीं था, अजीब वो किरदार था जो अरसे से उसके चेहरे के पीछे छुपकर अदाकारी कर रहा था। सारा ने कैमरा ऑन किया, इस बार उसने अपना चेहरा छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की, वो अपने आप को कैमरे में गौर से देखने लगी। लोग कैसे किसी चेहरे को देखकर किरदार का अंदाजा लगा लेते हैं, चेहरे खूबसूरत हो सकते हैं लेकिन असल खूबसूरती इंसान के रवैये अच्छे अखलाक में होती है, खुलूस से पेश आने में किसी फिल्टर की जरूरत नहीं होती। उसने बेदिली से कैमरा बंद कर दिया, वो बैठ गई और मरियम के साथ किए गए अपने पिछले एक हफ्ते के सलूक पर निदामत करने लगी। वो तेजी से बाहर निकली, उसने मरियम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मरियम ने दरवाजा खोला, सारा जल्दी से मरियम के गले लग गई। प्यारी मरियम, सॉरी यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ ये सब क्या हो रहा है हमारे दरमियान, मैं तुम्हारी दिल आजारी कैसे कर सकती हूँ, दिल से माजरत खा हूँ यार प्लीज। इस वक्त दोनों की आंखें नम थीं, सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सारी बदगुमानियाँ खत्म हो गईं। मरियम ने उसे अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, कॉफी पियोगी? सारा ने बेसाख्ता कहा, हाँ यार चल कहीं बाहर चलते हैं।
1: नीम रुख तस्वीर ट्रेंड। अभी आपने मोहतरमा उनजिला फारूकी से उनका ये अफसाना सुना। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्स अदब, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफी ने। और अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान निर्णय इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ा देता है, जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु

0: बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया
1: The question should not only be...
2: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके
0: नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है इसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया इसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री लियोनपो डी एन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे तीन दिन का ये सम्मेलन प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा ये सहयोग को बढ़ावा नवाचार को गति विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल तीन वर्ष पूरे कर लेगी इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था इसका उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार The Union Cabinet has enhanced the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organization, EPFO, from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Addressing the media, after the Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision significantly widens social security protection for workers.
4: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा जो कि 15 टू 25 वाले बैंड में थे दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर
3: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टुडे कॉल्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑन टैक्स पॉलिसी टू बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स सेइंग टैक्स प्रोफेशनल्स मस्ट लुक बियॉन्ड sectoral interests and put the national interest first. The minister was speaking at the inaugural session of two-day conference on new age taxation organized by the International Tax Research and Analysis Foundation in Bengaluru today. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of Semicon India 2026 in New Delhi tomorrow. The three-day conference will serve as a flagship platform bringing together the global semiconductor and electronics ecosystem. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 50 countries.

0: Delhi has been ranked as top performer in states and union territories in electric mobility adoption. As per the India Electric Mobility Index 2025, the index was released by the Niti Aayog in New Delhi today, which outlines both the policy framework and implementation outcomes for e-mobility at the sub-national level. After Delhi, the other top performing states and UTs are Maharashtra, Karnataka, Chandigarh and Goa. External Affairs Ministry today summoned the Charged Affairs of the High Commission of Pakistan in New Delhi and lodged a strong protest over the unacceptable conduct of Pakistan naval units at sea, which led to a collision with a unit of the Indian Navy. In a statement, the ministry said, while the incident, which took place in international waters, did not cause any major damage, the conduct was in direct contravention of the agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercises, maneuvers and troops movements of April 1991. The ministry asked the Charged Affairs of Pakistan to convey to the concerned Pakistani authorities the need for all military units to observe due care and respect the provisions of the relevant agreements between the two sides in order to prevent any such incidents in future. Saudi Arabia has said that its air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone near Mecca last evening. The spokesperson for the Coalition Forces to Support Legitimacy in Yemen, Major General Turki al-Maliki, described the incident as the second attempted attack by Yemen's Iran-backed armed group Houthi on Mecca, referring to an earlier ballistic missile incident in 2017. He also warned that the Saudi-led coalition would take necessary measures against further attacks. Meanwhile, the Houthis have denied targeting Mecca. In Gaza City, rescuers are searching through the rubble of a collapsed apartment building which was damaged in an earlier Israeli strike during the war. The building fell apart today. Civil defense officials say 16 Palestinians have been killed, while 14 others were injured. Nearly 100 people may still be trapped beneath the debris. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh, Punjab for today. Similar weather conditions are also expected to prevail over Kerala, Mahi, Punjab, Sub-Himalayan, West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. The Sensex gained 333 points to close at 74,336. The Nifty added 99 points to settle at 23,218. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. लीजिए प्रस्तुत है लापता व्यक्ति के बारे में सूचना. लापता व्यक्ति का नाम है पवन सोनी, पुत्र पन्नालाल, ग्राम बिलासपुर. इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप एसएचओ पीएस बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं. इनके बारे में एक ब्यौरा है. आयु इनकी 45 वर्ष है. कद 5 फुट 7 इंच है. शरीर की बनावट हष्टपुष्ट है. चेहरे का रंग सांवला और चेहरे की बनावट गोल है. अगली सूचना अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है संजय कुमार, उम्र 25 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला है और चेहरा गोल है. व इनके बारे में किसी भी प्रकार की यदि सूचना आपके पास है तो एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं. खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है सोनू, पुत्र शंभू प्रसाद, रंग गेहुआ है, आयु 22 वर्ष है, कद 5 फुट 6 इंच है. इनके बारे में यदि कोई भी सूचना आपके पास है तो आप पुलिस स्टेशन बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं. हमारी अगली सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्रीमती रिंकू सिरोही, पत्नी राहुल, निवासी ग्राम कटेल, थाना सयाना, जिला बुलंदशहर. इन्हें अंतिम बार 2 दिसंबर 2025 में देखा गया था. स्थान था दनकौर अड्डा, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर. इनकी आयु करीब 40 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच है, शरीर की बनावट मजबूत, आंख नाक कान औसत हैं, चेहरा गोल है और रंग गोरा है। इनके बारे में यदि आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप भास्कर कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर को सूचित कर सकते हैं। हमारी अगली सूचना अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है काजल। पत्नी दीपक शर्मा, निवासी झमझम कॉलोनी कस्बा व थाना गुलावटी, जनपद बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार 5 दिसंबर 2025 को शाम 5:29 पर देखा गया था। इनकी उम्र 24 वर्ष है, कद 4 फुट 9 इंच है, शरीर की बनावट सामान्य है, लंबा चेहरा है और रंग गोरा है। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना है श्रीमती मिथिलेश देवी की। पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी ग्राम भीमपुर, थाना डिवाई, जिला बुलंदशहर। आयु उनकी 39 वर्ष है, कद 4 फुट है, शरीर की बनावट मजबूत है और रंग गोरा है। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप रवि रतन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली डिबाई बुलंदशहर से संपर्क कर सकते हैं। इन्हें अंतिम बार 29 सितंबर 2025 को देखा गया था। अगली सूचना है पिंकी देवी। पत्नी शीश पाल सिंह, बुगरासी चौराहा कस्बा सयाना, बुलंदशहर। ये शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। आयु 35 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप उपनिरीक्षक थाना सयाना, जनपद बुलंदशहर को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना है कोई हुई व्यक्ति डॉली सिंह के नाम। पत्नी बलबीर सिंह, विस्तार कॉलोनी इंदिरापुरम। आयु इनकी 31 वर्ष है, शरीर की बनावट पतली है, ऊंचाई 5 फुट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। ये थी लापता व्यक्तियों के बारे में सूचना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: गणपति बप्पा मोरिया एक ऐसा नाम जिसमें आस्था भी है, उम्मीद भी है और एक ऐसा विश्वास जो हर नई शुरुआत को और भी खास बना देता है। कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर बप्पा के नाम से हो तो रास्ते अपने आप आसान होने लगते हैं। तो क्यों ना आज की इस खूबसूरत मुलाकात की शुरुआत भी गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अनामिका और आप सुन रहे हैं युववाणी आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर।
1: और मैं हूं शैलजा। नमस्कार साथियों, आपके इस फेवरेट यूथ प्रोग्राम युववाणी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे घरों में रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता यानी गणपति जी का आगमन हो चुका है। चारों ओर उत्सव और उमंग का माहौल है। और अनामिका, जब गणपति जी का आगमन हो और बात बुद्धि और ज्ञान की हो तो क्यों ना आज के वेडनेसडे विजडम में हम अपने लिसनर्स के साथ ऐसी ही कुछ बातें शेयर करें जो उनकी स्टडी, करियर और फ्यूचर की राह को थोड़ा और आसान बना सकें।
0: बिल्कुल शैलजा, क्योंकि करियर हो, पढ़ाई हो या फ्यूचर की कोई उलझन, सवाल हम सबके मन में आते हैं। तो आज का ये स्पेशल प्रोग्राम उन्हीं सवालों के जवाब, कुछ काम की गाइडेंस और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं सुखविंदर सिंह जी की आवाज में एक प्यारा सा गीत, गजानाना फ्रॉम बाजीराव मस्तानी।

0: आशीर्वाद, व्हाट अ पॉजिटिव वाइब। ऐसा लगा जैसे बप्पा खुद हमारे बीच इस स्टूडियो में आ गए हों। इसी पॉजिटिविटी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट यानी कि टुडेस टॉक की ओर। अनामिका, आजकल हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटियां अच्छी पढ़ाई करें, अपने पैरों पर खड़ी हों और अपने पसंद के फील्ड में करियर बनाएं।
1: बिल्कुल, लेकिन कई बार अच्छी एजुकेशन के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत भी होती है।
0: और इसी से जुड़ी एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आज हमारे लिसनर्स के लिए भी है।
1: अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन है?
0: अनामिका, आपने AICTE की प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में सुना है?
1: नहीं शैलजा, प्रगति स्कॉलरशिप ये क्या है?
0: तब तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। प्रगति स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट्स की टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट करने की एक पहल है। अगर आप AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में डिग्री या डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर लेटरल एंट्री के जरिए सेकेंड ईयर में आए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
1: अच्छा, यानी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एजुकेशन में अपना करियर बनाने का सपना देख रही बेटियों के लिए ये एक यूजफुल अपॉर्चुनिटी है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, और एलिजिबिलिटी में एक और इम्पोर्टेंट बात है, एप्लीकेंट की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उसे कोई दूसरी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या फिर AICTE स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होनी चाहिए।
1: अच्छा शैलजा, और अगर ये क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो स्कॉलरशिप में कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है?
0: इस स्कॉलरशिप में 50,000 रुपए तक की एनुअल स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में मिलती है।
1: दैट्स क्वाइट अ सपोर्ट। और अप्लाई कैसे करना है?
0: अप्लाई करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP के माध्यम से।
1: तो फिर डेडलाइन भी बता दीजिए ताकि कोई स्टूडेंट ये मौका मिस ना कर दे।
0: हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31st October 2026। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और समय रहते नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करिए,
1: क्योंकि सपने बड़े हों तो उन्हें पूरा करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी भी पहचाननी जरूरी है।
0: और प्रगति जैसी पहल बेटियों के एजुकेशन और करियर जर्नी में उस सपोर्ट को मजबूत करने का एक प्रयास है। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं फिल्म गुजारिश से ये प्यारा सा गीत सुनिधि चौहान और सैल हाजा जी की आवाज में।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। इस प्यारे से गीत के बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हिंदी पखवाड़े की।
1: लेकिन शैलजा, ये हिंदी पखवाड़ा होता क्या है?
0: अनामिका, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और लगभग एक सप्ताह तक गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिंदी को लेकर तरह तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे पोइट्री, स्टोरी, स्लोगन या ऐसे कॉम्पिटिशन्स जैसे इवेंट्स होते रहते हैं। तो हिंदी भाषा को सेलिब्रेट करती इन वीक लॉन्ग एक्टिविटीज को ही हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है।
1: अच्छा, यानी ये एक तरह से अपनी भाषा के साथ दोबारा जुड़ने का मौका है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में हिंदी की स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेजेंस है और दुनिया के करीब 40 देशों में लगभग 600 यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई दी जाती है। यानी हिंदी हैज अ ग्लोबल एकेडमिक प्रेजेंस टू।
1: So, Hindi is not just something we speak at home. It's also being studied, taught and explored around the world.
0: Yes, और यूथ के लिए तो हिंदी की पॉसिबिलिटीज और भी इंटरेस्टिंग है। जर्नलिज्म हो, रेडियो हो, कंटेंट क्रिएशन हो, सोशल मीडिया, पब्लिशिंग, पॉडकास्ट, ट्रांसलेशन, टीचिंग या फिर डिजिटल मीडिया। अगर आपके पास लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं।
1: हिंदी सिर्फ संवाद की भाषा नहीं है, यह अभिव्यक्ति की भाषा है, साहित्य की भाषा है, कविता की भाषा है, किस्सों और कहानियों की भाषा है।
0: जी बिल्कुल। कबीर से लेकर तुलसीदास तक, प्रेमचंद से लेकर निराला और महादेवी वर्मा तक, दिनकर से लेकर दुष्यंत कुमार तक, हिंदी का साहित्य सिर्फ शब्दों का संसार नहीं गढ़ता, समाज को देखने की एक दृष्टि भी देता है। देखिए ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी कैसे एक पुष्प के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम की सुंदर सरल अभिव्यक्ति करते हैं और कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना वन माले उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक।
1: बिल्कुल। और साहित्य सृजन से आगे भी हिंदी की भाषा अपनी उपयोगिता है ना शैलजा?
0: बिल्कुल अनामिका। हिंदी में टीचिंग, रिसर्च सहित गवर्नमेंट

0: के भी कई अवसर मौजूद हैं। एसएससी के कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशंस में ही इस साल 84 वैकेंसीज थी और वहीं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी इसी महीने यानी सितंबर में हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली है। यानी हिंदी जानना सिर्फ भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, राइटिंग और कम्युनिकेशन की अच्छी कमांड है तो यह एक प्रोफेशनल स्किल भी बन सकती है।
1: बिल्कुल शैलजा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट सेगमेंट से पहले हमारे लिसनर्स के लिए एक गीत अनाड़ी मूवी से, जिसके बोल हैं किसी

0: वाओ नामिका, बिल्कुल मानना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने इस सॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया है, उसने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दी। और अब इस प्यारे से गीत के बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी मन से माइक्रोफोन तक की ओर। तो आइए सुनते हैं एक यंग म्यूजिकल टैलेंट हर्षित पाठी को, जिनसे बातचीत की है हमारी ही युववाणी के एक साथी निखिल भास्कर ने।
1: नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद प्रतिभाशाली हिंदुस्तानी शास्त्रीय बांसुरी वादक हर्षित पाठी जी। गुरु शिष्य परंपरा में तराशे गए हर्षित जी ने बांसुरी के साथ साथ वोकल और कीबोर्ड सिंथेसाइजर में भी दक्षता हासिल की है। इन्होंने ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल योगा डे और स्पीक मैके जैसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। संगीत के साथ साथ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और शहीद भगत सिंह कॉलेज के कल्चरल हेड की भूमिका भी निभा चुके हैं और आजकल भूगोल में MSc की पढ़ाई भी कर रहे हैं। यानी एक तरफ शास्त्रीय संगीत की गहराई तो दूसरी तरफ एकेडमिक जिज्ञासा। तो आइए हर्षित पाठी जी का आकाशवाणी में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू निखिल, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया।
1: हर्षित जी, गुरु शिष्य परंपरा में सीखना आज के डिजिटल दौर में किस तरह से बदलाव ला रहा है और आपके इस पूरे सफर ने आपको एज एन आर्टिस्ट के रूप में कैसे गढ़ा?
2: अभी आपने मुझे एज एन आर्टिस्ट के रूप में कैसे गढ़ा जो बात कही, इसके लिए तो मैं बस इतना सा कहूंगा कि टू बी एन आर्टिस्ट इज टू रिमेन अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। आई डोंट सी माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, मैं खुद को आज भी एक स्टूडेंट की तरह ही देखता हूँ। लेकिन जो एक छोटी सी चीज जो आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे फर्क है, इसके एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव भी। पहले पॉजिटिव साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो इट इज वेरी गुड इन दिस मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड, अभी सीखना बहुत आसान हो गया है। यू हैव गॉट एम्पल ऑफ रिसोर्सेज हमारे आसपास, सब कुछ हमारे पास। जैसे तानपुरे के लिए मुझे बाहर से कुछ जरूरत नहीं है कि बड़ा तानपुरा कैरी करना है, आई हैव गॉट ऑल दैट इन माई फोन, तो वो तानपुरा मेरे पास है। मैं जब भी रियाज करता हूँ, देयर आर मेनी एप्स दैट आई गो थ्रू, और कितने सारे म्यूजिक स्कूल्स हैं जो डिजिटल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन। तो सीखने के लिए जो कोई रिमोट लोकेशन पे है, जो नहीं आ सकते, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पर भी ये सीखने की चीजें शुरू हो रही हैं, तो दैट इज वेरी गुड। और अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूँ कि शास्त्रीय संगीत में क्या प्रॉब्लम आ गई है जो गुरु शिष्य परंपरा में सीखने की है, आई फील कि अटेंशन स्पैन जो आजकल हमारा सोशल मीडिया से काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से अगर एक घंटे में आपको सेम सरगम बजाने को कहूंगा तो आप नहीं बजा पाएंगे, वो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। और सेम हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा पेशेंस, जब गुरुजी कभी डांटते हैं, आजकल बच्चे वैसे बुरा मान जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो इस तरह से नहीं। आई थिंक वो ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस, वो चीजें चाहिए।
1: हर्षित जी, अगर मैं बात करूँ आपके एजुकेशन के बारे में, तो आप ज्योग्राफी में MSc कर रहे हैं और साथ में शास्त्रीय संगीत की गहन साधना भी कर रहे हैं। ये दोनों बहुत अलग सी दुनिया है, ये दो अलग अलग दुनिया एक साथ कैसे चल रही है और क्या इनमें कोई खास जुड़ाव है?
2: जी, तो जब ज्योग्राफी हमने पढ़ना स्टार्ट करा, उसके पहले चैप्टर के अंदर ही वी रोट अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, दिस इज द रूल ऑफ ज्योग्राफी, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज्योग्राफी धरती की पढ़ाई है, इट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। 1993 में लंदन में एक स्पीच में उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने एक बात कही थी, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में तरह तरह के कल्चर्स हैं, तरह तरह के रिलीजन हैं, लेकिन षड्ज ऋखभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, तो ये सात सुर दुनिया का कोई नहीं कह सकता कि आठवां है, सिर्फ सात सुर ही हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड की एक सिमिलैरिटी है जो बहुत खूबसूरत बात है एक म्यूजिक की, और पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करती है। अब हम ज्योग्राफी का अगर हम इम्पैक्ट देखें, तो जैसे भारत में बांस मिलता है तो वहां से बांसुरी, अरब साइड में जाते हैं तो वहां पे आपको रीड्स, जाइंट रीड्स जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिलती हैं उनकी वेजिटेशन में, जिससे ने फ्लूट का इजाद हुआ। और आप स्कॉटलैंड साइड जाएंगे तो वहां पे शीप की जो स्किन होती है उससे वो बैकपाइपर बनाते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में ट्राइब्स ने, जैसे जेम्बे आया जिसमें गोट की स्किन यूज होती है, तो इस तरह से कर करके हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का कैसे इम्पैक्ट आता है म्यूजिक के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स ने, किस किस तरह से ट्राइबल्स ने ज्योग्राफी के थ्रू अपने म्यूजिक को इवॉल्व करा, कैसे कैसे ज्योग्राफी का इम्पैक्ट म्यूजिक पे देखने को मिलता है। और इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो हमारे तो राग सिस्टम सारा मौसम से है, तो किसी मौसम में हम बसंत बहार गाते हैं, किसी में मेघ गाते हैं, वो मौसम का ही तो, ज्योग्राफी का ही तो इफेक्ट है। तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि मेरा सब्जेक्ट जो एकेडमिकली मैं परस्यू कर रहा हूं, और साथ साथ म्यूजिक, ये दोनों इंटरकनेक्टेड मिलते हैं मुझे।
1: आपने फोक म्यूजिक का जिक्र किया, अगर आप एक नगमा पेश कर पाए तो?
2: जी बिल्कुल, मैं अभी अपने गुरुजी पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी द्वारा सिखाई गई एक ब्यूटीफुल हिमाचल फोक मैं आपको सुनाता हूँ, चंबा कितनी दूर।

0: बेहद खूबसूरत हर्षित जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर्षित पाठी को हम आगे किस रूप में देखेंगे, एक परफॉर्मर, एक शिक्षक या एक कल्चरल लीडर के रूप में, आपके सपनों का अगला पड़ाव क्या होने वाला है?
1: जो अब मेरा पर्सपेक्टिव है, स्पेशली आफ्टर सीइंग दिस कोविड-19 थिंग, वहां से मुझे थोड़ा सा लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। एंड आई फील कि इट इज अ जर्नी दैट अनफोल्ड्स एवरी डे। हर रोज कुछ नया आपकी लाइफ में लाती है, कुछ नया अनएक्सपेक्टेड। सो आई डोंट प्लान माई सेल्फ फॉर नियर फ्यूचर कि मैं अभी ऐसा हो जाऊंगा या ऐसा देखूंगा खुद को या कल को मैं क्या करूंगा। बट हाँ, अप टू द गॉड्स विल, जो भी होगा, आई फील जो चीजें मेरे कंट्रोल में, दैट इज माई बिहेव, दैट इज माई कंसिस्टेंसी, दैट इज माई ओन डिसिप्लिन एंड माई नेचर। आई फील दैट इज जो मेरे हाथ में है, जो मुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक शायरी से आपको ये बात कंक्लूड करूंगा कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, तो मुझे क्या गरज है किससे, कैसा है ये रास्ता है, मेरी कौन सी है मंजिल, मेरा यार जानता है। सो
0: क्या
1: दैट्स
0: बात है,
1: इट।
0: क्या बात है। तो जाते जाते क्यों ना एक और प्यारी सी धुन हो जाए।
1: जी जरूर, मैं आपको एक पहाड़ी धुन सुना के ये सेशन खत्म करता हूँ।

0: बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित जी, आप यहाँ आए और कुछ खूबसूरत पल हमारे साथ बांटा। आपकी बांसुरी यूं ही गूंजती रहे, आगे की यात्रा के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं।
1: थैंक यू।
2: कितना प्यारा समा बन गया है सच में। तो अब इस खूबसूरत सी वार्ता के बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम सुनते हैं अपना अगला गीत जो कि है मूवी चेन्नई एक्सप्रेस से।

0: वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री का। तो जानते हैं क्या है आज के दिन इतिहास में खास।
1: आज है वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन लेयर को अक्सर अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, जो सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से हमारी और पर्यावरण की रक्षा करती है। इस साल की थीम है ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट, जो ओजोन संरक्षण और क्लाइमेट एक्शन के बीच के कनेक्शन पर बेस्ड है। खास बात यह है कि 2026 में किगाली अमेंडमेंट के 10 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अपनाया गया था। आसान शब्दों में कहें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहां ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, वहीं किगाली अमेंडमेंट उसी फ्रेमवर्क के तहत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करने का रोड मैप देता है।
0: और आज ही के दिन यानी 16 सितंबर 1916 को संगीत की देवी एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी का जन्म हुआ, जिन्हें बचपन में सब कुंजम्मा बुलाते थे। और दोस्तों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत सीखने के बाद उन्होंने मीरा जैसी प्रतिष्ठित फिल्म में संत मीरा का किरदार निभाया और पूरे देश के दिलों पर छा गई। और वो संयुक्त राष्ट्र महासभा 1966 में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीत कलाकार बनी। और हाँ, एक और जबरदस्त फैक्ट, वो संगीत जगत की पहली ऐसी कलाकार थी जिन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। उन्हें एशिया का नोबेल यानी रेमन मैक्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। उनके गाए हुए वेंकटेश्वर सुप्रभातम और भजो गोविंदम आज भी हर सुबह हमारे घरों को एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं।
1: आज का दिन हमें देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान सैनिकों को याद करने का अवसर भी देता है। साल 2017 में आज ही के दिन भारत ने खोया था मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह को। भारतीय वायुसेना के इतिहास में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया। वे भारतीय वायुसेना के ऐसे महान अधिकारी थे जिन्हें देश ने 5 सितारा रैंक मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स से सम्मानित किया था। उनका जीवन अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा का उदाहरण है।
0: अच्छा शैलजा, कभी ऐसा हुआ है कि आप मेट्रो पकड़ने के लिए पूरी जान लगाकर भागी हो और जैसे ही आप गेट पे के पास पहुंची, झट से गेट बंद?
1: अरे हाँ, वो एन मोमेंट पर तो जैसे दिल रुक सा जाता है।
0: लेकिन चिल करो, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही क्रेजी मोमेंट्स पर हंसने का है। आज जन्मदिन है मशहूर अमेरिकी कार्टूनिस्ट आर्ट सेंसम का, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि लाइफ के लूजर मोमेंट्स भी कितने कूल हो सकते हैं। आर्ट सेंसम ने 1965 में एक आइकॉनिक कॉमिक स्ट्रिप शुरू की थी, द बॉर्न लूजर। ये कॉमिक दुनिया के 1200 से ज्यादा अखबारों की जान बन गई और आर्ट को कार्टूनिंग का ऑस्कर यानी रोबेन अवार्ड भी मिला। और शैलजा, आपको पता है इसमें हीरो कौन था?
1: कौन?
0: इसका हीरो ब्रिटिश का एक ऐसा आम इंसान है जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ पोपट होता रहता है। बॉस की डांट, बीवी के नखरे और बैड लक, बिल्कुल हमारे कॉलेज के वाईफाई जैसा, जो कभी चलता ही नहीं है।

0: तो दोस्तों, जब भी कोई फेलियर मिले तो उदास मत हो, अपने अंदर के बॉन्ड लूजर को जगाओ, क्योंकि आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, कोई बात नहीं बॉस, पिक्चर अभी बाकी है।
1: बिल्कुल। और 16 सितंबर का दिन एक और शानदार नाम लेकर आता है, प्रसून जोशी। 1968 में जन्मे प्रसून जोशी गीतकार, कवि और विज्ञापन जगत के जाने माने नाम हैं। उनके गीतों में सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि भावनाएं होती हैं। उनकी लेखनी ने देशभक्ति से लेकर प्रेम और मानवीय संवेदनाओं तक को खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। MBA करने के बाद प्रसून जी 1992 में विज्ञापन की दुनिया से जुड़ गए। 1996 में उनका पहला एल्बम अब के सावन आया निकला। प्रसून जी का कहना है कि प्रकृति से प्रेम ही व्यक्ति की रचनात्मकता को धार देता है। उन्होंने तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, हम तुम और फना जैसी फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे हैं। प्रसून जी ने फिल्म लज्जा, आंखें और क्योंकि के लिए भी संगीत दिया। बतौर प्रसून जोशी हवन करेंगे, मस्ती की पाठशाला और ससुराल गेंदा फूल जैसे गीत किसी भी इंसान को थिरकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन्हें हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही सुनते हैं उन्हीं का लिखा ये खूबसूरत सा गीत फिल्म नीरजा से।

0: this beautiful song, now it's time for today's last segment, that is Quick Buzz. Dear listeners, अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसमें आप दूसरों से बेहतर हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026-27 में आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल को नेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस कर सकते हैं. IT, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, कुकिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, कारपेंट्री सहित 63 कैटेगरीज में ये कॉम्पिटिशन हो रहा है. पार्टिसिपेशन का तरीका बहुत ही आसान है. स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी SIDH पर जाएं, इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन करें और अपनी स्किल कैटेगरी सिलेक्ट करें. इसके बाद सिलेक्शन के अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए नेशनल लेवल तक पहुंचने का मौका मिलेगा और तो और टॉप परफॉर्मर्स के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के रास्ते भी खुल सकते हैं. तो अगर स्किल है तो उसे सिर्फ खुद तक मत रखिए, दुनिया को दिखाइए. इंडिया स्किल्स 2026-27 के लिए आज ही रजिस्टर करिए.
1: अच्छा शैलजा, कल ही मैं माई भारत पोर्टल चेक कर रही थी और वहाँ चल रहा है विकसित भारत क्विज 2026. पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से मिलने वाला है चांस सीधे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में देश को रिप्रेजेंट करने का. तो दोस्तों, बस घर बैठकर कमेंट सेक्शन में ज्ञान मत बांटो, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, क्विज में हिस्सा लो और दिखा दो कि हमारी जनरेशन सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती, ट्रेंड्स सेट करती है.
0: बिल्कुल. और आइए अब सुनते हैं नेक्स्ट गीत, जो कि है मूवी दिल्ली 6 से मसक्कली.

0: दोस्तों, उम्मीद है युववाणी का आज का ये कार्यक्रम आपने एंजॉय किया होगा। हमें हमेशा आपकी फीडबैक्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव और फीडबैक्स हमें ईमेल कर सकते हैं yuvvani@gmail.com पर। जी हाँ, yuvvani@gmail.com पर। कल फिर से मुलाकात होगी नई जोश और नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, वक्त का पहिया चलता रहेगा और ये बातें कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन आज की हमारी ये मुलाकात अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीद है आज का ये सफर आपके लिए उतना ही खास रहा होगा जितना हमारे लिए था। जुड़े रहिए, सुनते रहिए युववाणी, क्योंकि यहाँ पर मुलाकात में कुछ नया है और हर बात में एक कहानी।
0: मैं शैलजा
1: और मैं नामिका
0: लेते हैं आपसे विदा।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में कोलकाता में पदस्थापित ऑस्ट्रेलियन काउंसिल जनरल बर्नार्ड लिंच से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा, मिनरल्स, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और खेल सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कल 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे कल शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने अपने घरों में प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए आशीर्वाद का दिया जलाएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विकसित भारत 2047 के संकल्पों को लेकर आज कोडरमा जिले के बिजली बीएड कॉलेज में एक पॉडकास्ट का आयोजन किया गया। इसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सीबी शर्मा ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। और लोहरदगा के उर्सलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आज युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की थीम नशा मुक्त अभियान फॉर विकसित भारत रही। इस दौरान छात्राओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्यार नीम है, गुलाब है, बेला है, चंपा चमेली है प्यार।

प्यार की शबिस्ता में सिर्फ खुशियों की कलियां ही नहीं चिटकती, दर्द का सैलाब भी उमड़ता है। प्यार के सागर में दो बूंद खारा नमक भी घुल जाता है। जब प्रतीक्षा के पल ठहर जाएं, टीस भी उठती है मन में। प्यार के मौसम में आए दर्द की आंधी या बहे टीस का झरना, भला किसे परवाह।

0: सुंदर सी दुनिया प्रेम की, फिर अकुलाहट क्यों, फिर ये बेचैनी क्यों? बेचैन मन कहता है कुछ पहाड़ों से, नदियों और झरनों से, फूल पर मंडराती तितलियों से, हाथ में उल्टा आईना पकड़कर आसमान को उल्टा अपने सामने देखा। ये सब मुमकिन है प्यार की दुनिया में।
1: प्यार पर

तूफान है, आंधी है, इसका नज़ारा साहिल से नहीं बल्कि पानी में उतर कर जाना जा सकता है। सागर की गहराई है प्यार, करता है प्यार कोई तो बदल जाता है उसका मन, बदल जाती है दुनिया, पूरी कायनात का नज़ारा कुछ और ही हो जाता है जब जिया जाता है प्यार के पलों को।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। स्मृतियों का गुलमोहर खिला है, लम्हों के पलाश छतनार हुए हैं, प्यार की रात रानी महक रही है। रेडियो से आप सुन रहे हैं छाया गीत। हम कर रहे हैं गुफ्तगू उनसे जिन्होंने भेजी है प्यार की सौगात।

की खामोशी के खजाने से चुन रहे हैं कुछ शब्द। बारिश की महीन झींसी की मानिंद सुहानी लगती है उसकी अनकही बातें। वो है कोई इंसान या फरिश्ता या कोई फंतासी, कौन पड़े इस भरम जाल में, सिर्फ महसूस करते रहें उसके धरती से आसमान तक फैले विशाल प्यार को।

कहा कुछ उन्होंने, सुना कुछ दिल ने, बन गया प्यार का अफसाना। खूबसूरत लम्हों को तह कर संजो लिया है दिल की अलगनी में, आंखों के सामने सिर्फ प्यार की दुनिया है।

एक जमाने में प्यार का इजहार करना बड़ा मुश्किल होता था। चिट्ठियों के जरिए या गानों के जरिए प्यार का इजहार किया जाता था। सूचनाओं संदेशों के युग में जीने वाले लोग क्या जाने प्यार के इजहार के सही मायने क्या होते हैं। अपनी प्यार भरी बातें गानों के साथ जोड़कर करते हैं इजहार कुछ यूं।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:35 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही चर्चा में सुनेंगे बचत की आदत डालें। वार्ता में सुनेंगे बेटियों की शिक्षा में माँ की भूमिका और वार्ताकार होंगी नैन्सी कुमारी। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, जिसे आप रांची केंद्र से सुन सकेंगे। 6:02 पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे खेती बारी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी अरहर की खेती में प्रबंधन। साथ ही चर्चा में आप सुनेंगे कम पूंजी में सागों की खेती। भेंट वार्ता में सुनेंगे कृषि में जैव विविधता। वार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ पलामू से दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। कृषक महिलाओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण सभा का समय होगा 6:30 और आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र। और आज की बात में सुनेंगे दीदी बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। भेंटवार्ता में सुनेंगे गुट्टी विधि से नए पौध का निर्माण। भेंटवार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर जिले में आजकल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे एक रंग। कल्याणी कार्यक्रम का समय होगा 7:45। आज के इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता में आप सुनेंगे अपेंडिक्स कारण एवं निदान भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशील कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संजय कुमार मिश्रा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से का समय होगा रात्रि के 8:00।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में खबरें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर छाया गीत आप सुन सकेंगे विविध भारती से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा लेकर हम उपस्थित होंगे रात्रि के 10:00 अपने स्टूडियो से और 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों, ये दिल है ना, बड़ा नाजुक होता है, इसे संभाल कर रखना होता है बड़ी जतन से, नहीं तो क्या पता दिल उधर उधर भाग जाए और फिर परेशानी क्या होगी, ये तो हम सभी जानते हैं। और नहीं पता तो फिर सुन लीजिए इस गीत को।

बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका संबंध हम सभी के जीवन से है। जी हाँ बहनों, आपने ठीक समझा, हमारा हृदय। हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय को स्वस्थ रखने, हृदय रोगों के कारणों को समझने और उनसे बचाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। हमारा हृदय शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है बहनों। यह लगातार रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है और हमें जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति में मदद करता है। इसीलिए हृदय का स्वस्थ रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आज की बदलती जीवन शैली में हृदय रोगों का खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण है लोगों के गलत खान पान, अधिक तला भुना और नमकीन भोजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, अत्यधिक तनाव, मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे कारण हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है बहनों। जैसे कि भोजन में हरी साग सब्जियां होनी चाहिए, मौसमी फल फूल, साबुत अनाज, दालें तथा अन्य पौष्टिक पदार्थ भी शामिल जरूर करें। बहुत अधिक तेल, नमक, चीनी और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करनी चाहिए, ये हमारे हृदय को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके साथ ही नियमित शारीरिक गतिविधियां भी जरूरी है। अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार रोज कुछ समय पैदल चलना, योग करना तथा उपयुक्त व्यायाम करना लाभकारी होता है। और यदि किसी बहनों को पहले से कोई बीमारी या व्यायाम करने में परेशानी हो तो फिर आप चिकित्सक से मिलकर सलाह लेकर ही कोई भी योग करें। तंबाकू और धूम्रपान का सेवन हृदय तथा रक्त वाहिनियों के लिए नुकसानदायक होता है और इनसे बहनों जितना बन सके दूरी बनाना ही हितकर है हृदय की सेहत के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि किसी भी प्रकार के धूम्रपान या तंबाकू का सेवन से दूरी बनाकर रखें। और बहनों, आज का जो जीवन है ना, वो तनाव जो हावी है आज सभी पर और शायद जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी बन चुका है। तो तनाव से होता क्या है, पर्याप्त नींद की कमी हो जाती है, परिवार के साथ समय बिताना मुश्किल होता जा रहा है, साथ ही साथ ध्यान वगैरह करना भी, योग ध्यान करना जो कि ज़रूरी है, वो सबसे भी आजकल लोगों का जो है काफ़ी दूरी

0: होता जा रहा है। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं वो सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बहनों, जिस प्रकार से हमारे लिए नियमित रूप से भोजन करना, सोना इत्यादि ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से कुछ योग करना, ध्यान करना भी उतनी ही ज़रूरी है और इसके लिए भी समय ज़रूर निकालें। एक और महत्वपूर्ण बात है बहनों कि नियमित स्वास्थ्य की जांच भी करवाते रहे समय समय पर, जैसे कि रक्तचाप, रक्त शर्करा इत्यादि इत्यादि जो है, आज थायराइड हो गया, इस तरह से बहुत सारी शरीर में है जिनकी नियमित जांच होनी आवश्यक है। क्योंकि यदि समय पर इन सभी रोगों का पता चल जाता है तो समय रहते इसका इलाज संभव है। लेकिन जब धीरे धीरे यही शरीर काफ़ी दिन हो जाते हैं नज़रअंदाज करने से, तो फिर शायद काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर इसे वापस ठीक होने में, और ख़ासकर हृदय रोग में, क्योंकि हृदय रोग में जोखिम काफ़ी होते हैं और समय समय पर जांच करवाते रहने से हम उसे स्वस्थ रखने में काफ़ी हमें सहायता मिलेगी। तो यदि किसी भी बहनों को अचानक से सीने में दर्द होता हो, सांस लेने में कठिनाई होती हो, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, कमजोरी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें बहनों, बल्कि आप तुरंत किसी चिकित्सक से मिलकर सलाह लें और उनकी देखरेख में आप उनकी दवा लें और जैसा सलाह आपको मिलता है आप उसका ज़रूर से पालन करें। तो विश्व हृदय दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ हृदय के लिए हमें रोज लेकिन छोटे मोटे जो कदम हैं वो ज़रूर उठानी चाहिए। और साथ ही साथ बहनों संकल्प लें कि आप संतुलित भोजन करेंगे, नियमित रूप से जो है शारीरिक व्यायाम करेंगे, नशा से दूर रहेंगे और साथ ही तनाव को भी नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से अपने दिनचर्या में यदि इतनी सी बात को भी यदि आप लागू करते हैं और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो निश्चय ही आप हृदय जो काफ़ी नाजुक होता है उसके आप बेहतर देखभाल कर सकेंगे। तो बहनों चलिए इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। बहनों, बच्चों की जो प्रथम पाठशाला है उनका घर होता है और उनकी प्रथम गुरु होती है उनकी माँ। बच्चे अपने माँ के सानिध्य में रहकर ही पलता है, पढ़ता है और बहुत कुछ सीखता भी है। तो बेटियों की शिक्षा में माँ की क्या भूमिका होती है, आइए इस पर विस्तार से जानते हैं नैन्सी कुमारी से। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: किसी भी समाज की उन्नति में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम स्त्री के सशक्तिकरण की बात करें तो शिक्षा उसका मूल आधार है। बेटियों की शिक्षा केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस शिक्षा की नींव परिवार में रखी जाती है और विशेष रूप से माँ का इसमें केंद्रीय स्थान होता है। माँ न केवल जीवन की पहली गुरु होती है बल्कि वह अपने बच्चों विशेषकर बेटियों के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्य और आत्मविश्वास के विकास में अहम भूमिका निभाती है। बेटी जब जन्म लेती है तब सबसे पहले अपनी माँ की गोद में आती है। माँ के स्पर्श, शब्द, व्यवहार और आचरण से ही वह जीवन के प्रारंभिक पाठ सीखती है। माँ ही उसे बोलना, चलना, खाना पीना, बात करना और लोगों से व्यवहार करना सिखाती है। इस प्रकार माँ ही जीवन की पहली पाठशाला बन जाती है। माँ की शिक्षा औपचारिक ना होकर भी सबसे प्रभावशाली होती है क्योंकि वह व्यवहार, अनुभव और स्नेह पर आधारित होती है। कई बार समाज बेटियों को कमतर आंकता है, उनको सपनों को सीमित कर देता है। ऐसे में माँ का विश्वास ही बेटी की सबसे बड़ी ताकत बनता है। यदि माँ अपनी बेटी को बचपन से यह सिखाए कि वह किसी से कम नहीं है तो वह आत्मविश्वास से भर जाती है। माँ का प्रोत्साहन, उसके संघर्षों में साथ खड़ा होना और उसे अपने फैसले लेने की आज़ादी देना ही उसे आत्मनिर्भर बनाता है। एक शिक्षित और सशक्त माँ अपनी बेटी को भी वैसा ही बनाती है। बेटियों की औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में माँ की भूमिका निर्णायक होती है, चाहे वह स्कूल में दाखिला हो, विषयों का चयन हो या करियर की दिशा तय करना हो। माँ का मार्गदर्शन बेहद जरूरी होता है। कई बार जब बेटी पढ़ाई से निराश होती है तब माँ ही होती है जो उसे फिर से प्रेरित करती है। माँ ही वह माध्यम है जो बेटी को जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराती है। वह उसे संवेदनशील, सहनशील और जिम्मेदार बनाती है। बेटियों के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। माँ उन्हें इन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देती है। वो बेटी को दूसरे के प्रति सहानुभूति, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के मूल्य सिखाती है जो किसी भी शिक्षा प्रणाली का मूल तत्व होते हैं। अक्सर समाज में बेटियों की शिक्षा को लेकर कई रूढ़िवादी सोच होती है, जैसे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत, शादी ही तो करनी है आदि। यदि इन रूढ़ियों को तोड़कर बेटी की शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है तो वह न केवल अपनी बेटी का जीवन संवारती है बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देती है। एक सशक्त माँ अपने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद बेटी को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटती। बेटी जब किशोरावस्था में पहुँचती है तो वह कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरती है। इस समय माँ का साथ और समझ अत्यंत आवश्यक होता है। यदि माँ बेटी की बातों को सुने, उसे सही सलाह दे और उसकी भावनाओं को समझे तो बेटी आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। यह संवाद माँ बेटी के रिश्तों को मजबूत करता है और शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहने देता बल्कि जीवन की शिक्षा बनता है। बेटियों की शिक्षा केवल उनके करियर तक सीमित नहीं है या उनके जीवन जीने के तरीके, फैसलों की समझ और समाज में अपनी जगह बनाने की ताकत देती है। माँ उन्हें यह सिखाती है कि वह कैसे कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सके, कैसे गलत और सही का निर्णय ले और कैसे आत्मसम्मान बनाए रखे। इस दृष्टि से माँ की शिक्षा बेटी को जीवन के हर मोड़ पर सशक्त बनाती है। माँ का समर्थन बेटी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। माँ का उत्साह, उसकी सराहना, उसकी प्रोत्साहना, यह सब बेटी के आत्मविश्वास को पंख देते हैं। जब माँ अपनी बेटी को छोटी छोटी सफलताओं पर खुश होती है तो बेटी को यह एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है, कोई है जो उसकी सफलता में भागीदार है। माँ की भूमिका केवल एक सहायक की ही नहीं होती बल्कि वह एक प्रबल प्रेरणा बन जाती है। जब माँ यह विश्वास देती है कि उसकी बेटी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है तो वह अपनी बेटी के भीतर शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करती है। माँ को अपनी बेटी को केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे अपनी बेटी को उसके अधिकारों के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। बेटी को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए ही नहीं बल्कि यह उसे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए है। माँ को अपनी बेटी को यह बताना चाहिए कि उसके पास भी अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा हक है। शिक्षा से वह न केवल अपना भविष्य संवार सकती है बल्कि समाज में भी एक सशक्त स्थान बना सकती है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह केवल खुद को नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सशक्त बनाती है। शिक्षा से आत्मनिर्भरता आती है और आत्मनिर्भरता से एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। माँ को यह समझाना चाहिए कि उसकी बेटी को शिक्षा को देकर वह सिर्फ एक बेटी को नहीं बल्कि पूरे समाज को एक नई शिक्षा दे रही है। एक शिक्षित बेटी न केवल अपने परिवार को बदल सकती है बल्कि पूरे समाज के सोच और दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकती है। माँ भले ही स्कूल या कॉलेज ना गई लेकिन वह घर में एक ऐसा वातावरण बनाती है जो बेटी को पढ़ने और सोचने की स्वतंत्रता देता है। वह समय पर खाना देती है, बेटी की पढ़ाई के समय शांति बनाए रखती है, उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सब कार्य शिक्षा की दिशा में उसके अप्रत्यक्ष लेकिन गहरे योगदान है। कई माओं के अधूरे सपने बेटियां पूरा करती है। जिन माओं को कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला वो अपनी बेटियों को डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर या पायलट बनते देखती है। ये वही बेटियां हैं जो अपनी माँ की आंखों के आंसुओं में पीछे छिपे संघर्ष को पढ़कर खुद को मजबूत बनाती है। वे जानती है कि उनकी हर उपलब्धि उनकी माँ की तपस्या का परिणाम है। भारत की आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में माएँ आज भी अत्यंत विषम परिस्थितियों में अपनी बेटियों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है। वहाँ विद्यालयों की दूरी, संसाधनों की कमी और सामाजिक रूढ़ियों बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी कई माएँ जंगल पार कर अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाती है, उन्हें अक्षर ज्ञान कराती है और अपने स्तर पर उन्हें प्रेरित करती है। ये माएँ इस बात की प्रतीक है कि शिक्षा का प्रकाश सबसे अंधेरे कोने तक पहुँचाने में माँ की भूमिका कितनी निर्णायक होती है। समाज में अनेक माएँ ऐसी भी होती है जो अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करती है। एकल माताओं के लिए बेटी की शिक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक संघर्षपूर्ण यात्रा होती है। उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके अनेक एकल माएँ अपनी बेटियों को शिक्षा की राह पर पूरी निष्ठा और समर्पण से अग्रसर करती है। वे न केवल बेटी के लिए एक आदर्श बनती है बल्कि समाज को यह सिखाती है कि संकल्प और प्रेम से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती। आज की शहरी जीवन शैली में अनेक माएँ घर और नौकरी दोनों जिम्मेवारियां निभा रही है। वे दिन भर कार्यस्थल की चुनौतियों से जूझती है और घर लौटकर अपनी बेटी की पढ़ाई उसकी समस्याएं और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है। ऐसी माएँ अपने समय और ऊर्जा का संतुलन बनाते हुए यह सुनिश्चित करती है कि उनकी बेटी को कोई कमी ना हो, वो अपनी जीवन

0: शैली से यह संदेश देती है कि शिक्षा और करियर दोनों एक स्त्री के लिए समान रूप से जरूरी है और वह बेटी उनके कदमों के निशान पर चलते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती है। बेटी की शिक्षा एक राष्ट्र के भविष्य को दिशा देने का कार्य है और इस दिशा की सबसे सशक्त चालक माँ होती है। उसकी सोच, संघर्ष और समर्पण से ही बेटी शिक्षित बनती है। माँ का आंचल न केवल ममता की छाया है बल्कि वह पुस्तक भी है जिससे बेटी जीवन के असली पाठ सीखती है। यदि हम एक शिक्षित, सशक्त और संवेदनशील समाज चाहते हैं तो हमें सबसे पहले माँ को सशक्त करना होगा, क्योंकि वही है जो बेटी को शिक्षा के पथ पर अग्रसर करती है और उसके भविष्य को संवारती है। बेटी की शिक्षा में माँ की भूमिका केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का आधार है।
1: बेटियों की शिक्षा में माँ की भूमिका, इस पर अभी बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही थी नैन्सी कुमारी। और चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, अब समय हो चला है कि हम आपसे लें विदा। कार्यक्रम घर आंगन से नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। धनबाद में आयोजित स्वच्छ वायु दिवस कार्यक्रम में अधिकारियों ने कोयलांचल की वायु गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में धनबाद ने 11 पायदान की छलांग लगाकर देशभर में 18वां स्थान हासिल किया है। वहीं झारखंड में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में धनबाद शीर्ष स्थान पर रहा है। रामगढ़ की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी गौरांग रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरायकेला के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम के मुख्य गेट पर दिशोम गुरु शिबु सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने का विवाद शांत हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिमा का स्थान बदलने का निर्णय लिया है। खूंटी के तोरपा रोड स्थित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का ड्रग इंस्पेक्टर पूनम गौतम ने उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देश अनुसार औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान दुकान संचालकों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के मधुसाई गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के अड्डे को ध्वस्त किया है। उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर हुई छापेमारी में 5,000 किलो जावा महुआ और 40 लीटर शराब जब्त की गई। और नई दिल्ली में खेले जा रहे सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में झारखंड की टीम ने दमन एवं दीव को 4-0 से हरा दिया। झारखंड के अनिश कुजूर, शुभम कुमार, सत्यम महतो और विक्की उराव ने 1-1 शानदार गोल किए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारा पलामू का जो क्षेत्र है वो थोड़ी पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है। ऐसे भूमि पर मुख्य फसलों की जगह यदि दलहनी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को निश्चय ही उससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। दलहनी में यदि हम बातें करें अरहर की, क्योंकि दलहनी में अरहर जो है वो मुख्य फसल है और यहाँ के लिए उपयुक्त भी है, तो आइए देखते हैं श्रोताओं कि अरहर की फसल की थोड़ी बहुत देखभाल करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा किस प्रकार से ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो श्रोताओं, अरहर की खेती में सबसे पहला जो कदम होता है वो उन्नत बीज के चुनाव का, क्योंकि उनका सही उपचार होना भी चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से बीजों को जो उपचार किया जाता है वो काफ़ी जो है अंकुरण क्षमता वाली होती है और वो साथ ही साथ बीमारियों से रहित भी होती है। तो ये जो बीज उपचार है उसका ही चुनाव करें, जो बीज उपचारित हो यानी प्रमाणित बीज हो, इससे आपको आगे लाभ मिलेगा और न केवल फसल को मजबूती मिलता है बल्कि मेहनत और कीटनाशकों पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। आजकल श्रोताओं हम बता दें कि अरहर को उगाने के लिए खेत के जो मेड़ होते हैं उस पर भी अरहर उगाए जाते हैं और मेड़ विधि एक क्रांतिकारी तरीका साबित हो रही है। इस तकनीक में पौधों को मेड़ों पर लगाया जाता है जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहती है और एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाते हैं। तो श्रोताओं, इसके लिए अलग से जल निकास व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये क्यारी मेड़ की तरह बनाई जाती है और ये जो तरीका है आज काफ़ी कारगर हो रहा है हमारे किसान भाइयों के बीच, क्योंकि इसमें अधिक उत्पादन की संभावना है। और ये जो तरीका है ना श्रोताओं, वो पौधे की जड़ों को ज़्यादा गहराई तक ले जाने में मदद करता है जिससे कि फसल लहलहा उठते हैं। अरहर की खेती में खाद और पानी का मैनेजमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारे अधिकांश जो किसान भाई हैं वो पारंपरिक सिंचाई की जगह अब ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि इसमें जो है खाद पानी को सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है जिससे कि पौधों का विकास तेज़ी से होता है और फलियों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिलती है और इससे जो है उत्पादन भी इसे निश्चय ही अधिक प्राप्त होता है। तो ये विधि जो है ड्रिप सिंचाई विधि, आज हमारे किसान भाई इसका कई प्रकार से लाभ देख रहे हैं और इसका अब प्रयोग भी करने लगे हैं। कीटों से बचाव के लिए हमारे किसान भाई रसायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि किसान भाई रासायनिक दवाओं की जगह यदि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उन्हें रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप जैसे मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके हानिकारक कीटों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और इससे फसल जो भी होगी वो ऑर्गेनिक बनकर तैयार होगी और इससे किसानों को बाज़ार में उन्हें उचित मूल्य यानी मूल्य से अधिक कीमत उन्हें मिल जाती है। मुनाफे को डबल करने के लिए अरहर के साथ इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसलिंग खेती भी करना बहुत ही लाभदायक होता है और हमारे अधिकांश किसान भाई ऐसा करते भी हैं। अरहर के साथ दो कतारों में मूंग, उड़द, मूंगफली इत्यादि लगा देते हैं और इनको लगाने से हमारे किसान भाई एक समय में दो या तीन उत्पादन ले सकते हैं और यदि उन्हें दो या तीन उत्पादन मिलता है तो निश्चय ही उन्हें दोहरा या तिगुना लाभ मिलेगा। या मिट्टी की सेहत सुधारने के साथ साथ आर्थिक जो उनकी स्थिति है उसको भी उनकी स्थिति को भी मजबूत करती है। तो ये ज़रूर हमारे किसान भाई करें कि आप अरहर के साथ साथ अन्य फसलों को भी लगाएं। अरहर की फसल तैयार होने के बाद इसकी सही प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का भी जो है वो बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आधुनिक मशीनों में दाल की सफाई करना हो जाता है और सीधे इसके जो है साफ़ की हुई जो दालें हैं वो बाज़ार में जो है आसानी से बिक जाती है और उचित मूल्य उसका मिल जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं यदि हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती को छोड़कर इस नए तकनीक को अपनाते हैं तो निश्चय ही उन्हें पहले से अधिक मुनाफा मिल सकता है, अधिक उत्पादन मिल सकता है और वे अधिक आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। कृषि में जैव विविधता, इस पर जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ पलामू से दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैव विविधता से हमारी कृषि का क्या संबंध है, इसका हमारे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित बातें आज हम साझा करेंगे। पलामू जिला के चियांकी के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
1: जैव विविधता क्या है?
2: जैव विविधता अपने आप में डिफाइंड है शब्द। जैव का मतलब होता है जिसमें जान है और उसमें विविध प्रकार का, उसका प्रकार चाहे संख्या में हो, चाहे गुण में हो, चाहे किसी और तरीका में हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रकृति में विविधता होनी आवश्यक है और प्रकृति में जितना विविधता होगा उतना ही अस्थायित्व होगा। जैसे हम लोग अपने यहाँ पे जमीन पे देखते हैं, इस धरती को बोलते हैं कि यहीं पे जीवन है। तो जीवन है चाहे पौधे में हो, चाहे पशु में हो, चाहे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं उनमें विभिन्न तरीका के हैं। तो जहाँ पे जितना विविधता होगा उतना ही ज़्यादा संभावना है, चाहे मानव के हित में हो या मानव के आगे वाली आने वाली पीढ़ी के हित की बात हो। तो विविधता का होना अति आवश्यक है और यही आधार है। तो विविधता ही प्रकृति का आधार है।
1: इसका हमारे कृषि से क्या संबंध?
2: देखिए कृषि के क्षेत्र में जब हम लोग देखेंगे तो कृषि का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जब से मानव का विकास शुरू हुआ तब से खेती का विकास शुरू हुआ है
1: जी।
2: लेकिन पहले जब खेती होती थी तो आदमी प्रकृति के साथ खेती करता था। लेकिन हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति ऐसी बनी कि प्रकृति के साथ हम लोग तालमेल बैठा नहीं पाए। जनसंख्या बढ़ती चली गई, जनसंख्या के अनुरूप हम लोगों को भोजन की आपूर्ति करनी थी तो हम लोगों ने मोनोकल्चर अपनाया। जैसे धान की खेती कर रहे हैं या धान में उन्नत प्रभेद है तो एक ही प्रभेद को
1: बार बार
2: करते गए, हाईलाइट करते गए। उसके जगह पे जो पहले का पुरातन आप खेती देखेंगे तो एक किसान भले छोटे पैमाने पे ही खेती करता था लेकिन वो रागी, मड़ुआ, मकई, दलहन, तिलहन सभी को करता था। लेकिन आज की स्थिति है कि धान का खेती कर रहा है तो धान की खेती कर रहा है, सब्जी में है तो लौकी की केवल खेती कर रहा है, टमाटर की खेती कर रहा है तो और उसमें भी केवल एक वैरायटी पे वो डिपेंडेंट हो जा रहा है। इसके चलते हो क्या रहा है कि खेती में लागत बढ़ रही है, किसान को सारा चीज बाजार से खरीदना है। दूसरा इसका प्रभाव ये हो रहा है कि इस पे आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है।
1: अच्छा।
2: तीसरा चीज रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज के प्रयोग से क्या हो रहा है कि वातावरण पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी, पानी, हवा तो प्रदूषित डायरेक्ट हो ही रहा है लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि आज विभिन्न प्रकार के जीव का अस्तित्व खतरा में मिट गया है, यहाँ तक कि मानव का जीवन भी खतरा में मिट गया है। जिसके चलते आप देखेंगे विभिन्न तरीका के रोग हो रहा है, जमीन पानी में सीसा की मात्रा बढ़ जा रही है और सारे ऐसे जो है हमारे लिए नुकसानदायक हैं, कैंसरस के कारण हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा खतरा अभी के समय में आ गया है और एक खतरा का समय जब कृषि को हम लोग देखेंगे 5000 वर्ष में जो खतरा नहीं हुआ वो मात्र 60-70 वर्ष में जो हम लोग खेती का नया मॉडर्न तरीका जिनको कहते हैं इनको अपनाने के बाद हो गई है। और यदि हम लोग जैव विविधता की तरफ से पुनर्रूप से नहीं जा रहे हैं तो हमारे अस्तित्व पे संकट है।
1: कीटनाशकों की अगर हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: कीटनाशक से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ किसानों को बताना चाहूँगा, सुनने वाले श्रोताओं को, कि भारत में लगभग 170 कीटनाशक पंजीकृत हैं और उसमें से 110 खेती में प्रयुक्त होते हैं, बाकी विभिन्न उद्योग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उसमें से 110 खेती में प्रयुक्त होते हैं और उसमें से भी लगभग 75 कपास की खेती में, 35 जो है धान की खेती के लिए प्रयोग होते हैं और 10 गेहूं के लिए प्रयोग होते हैं। अच्छा। तो जो सबसे ज़्यादा हम लोग उपज करते हैं धान गेहूं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा गया, शिद्दत से लोग सोचे कि जब तक हम लोग विविधता फिर से नहीं लाएंगे
1: तब तक
2: मुश्किल है। और जहाँ तक खाद्य सुरक्षा की हम लोग बात करें, एक सिंपल सा यदि मान लीजिए हम लोग धान उपजा रहे हैं, धान की एक वैरायटी उपजा रहे हैं, तो बाजार में क्या होता है, किसान का लागत तो बढ़ा, लेकिन चूंकि एक ही तरीका का फसल होने के चलते यदि किसी कीड़ा का प्रकोप हो रहा है तो सारा का सारा फसल मारा जा रहा है, तो खाद्य सुरक्षा पे एक संकट आ गया
1: जी।
2: दूसरा चीज, यदि किसान अपना उपज बाजार में लेकर के जा रहा है तो एक ही तरीका का उपज होने के चलते उसको बाजार में मूल्य भी कम आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसके आगे जब हम लोग पोषण सुरक्षा की बात करें, तो एक तरीका का जो हम लोग बोलते हैं एक ही तरीका का चीज जब हम लोग यूज में कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं, तो पोषण सुरक्षा जैसे उसको न प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट, न विटामिन, न मिनरल, ये सब की सही मात्रा में पूर्ति भी नहीं हो पाती है। और जैव विविधता होने के चलते प्रकृति खुद से चयन करता है। जैसे हम लोग भारत की बात करें या पलामू की बात करें, तो पलामू में हम लोग खास कर देखें, आज आप यहाँ से जाएंगे तो इतनी गर्मी पड़ रही है, आप देखेंगे कि पलाश का पेड़ आपको बहुत सुंदर हरियाली दिखेगा, बाकी सब खेत का मुरझा जा रहा है, सब्जी की खेती में पानी पटाना पड़ रहा है। तो पलाश के कुल के जो भी दलहनी कुल के वैसे पौधे हैं उनका हम चयन कर सकते हैं। आंवला का आप देखेंगे, आंवला पानी नहीं डालना पड़ रहा है, बेर है उसमें पानी नहीं डालना पड़ रहा है। लेकिन हम कुछ नया यदि सेब का यहाँ पे ये करें, तो हमने अपने क्षेत्र में विविधता नहीं लाया, हम एक मोनोकल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो विविधता क्षेत्र के अनुसार भी हमको विविधता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, नई नई वैरायटी जो उससे है उनको अपने से भी डेवलप होने देना पड़ेगा,
1: ताकि तो, एक ही खेत में तरह तरह की फसलें उगा सके,
2: वो विविधता उससे आएगी। अब विविधता आएगी तो अस्थायित्व आएगा। जैसे हम लोग कोई बीज बनाते हैं तो उसका काल होता है 8-7-8 वर्ष तक वो स्टेट में रहेगा, संतुलन रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो वैरायटी जो है नीचे गिरते चला जाता है। लेकिन जो प्रकृति के रूप से चयनित होता है उसमें अस्थायित्व 100 साल 200 साल तक रहता है, और उसका जो गुण है प्रकृति के द्वारा चयन किया हुआ है उसका आधार मजबूत होता है। इसके अलावा लोगों को आजीविका की भी सुरक्षा मिलती है, डिफरेंट तरीका का लोग खेती करेंगे, खेती में जैसे हम लोग बोलते हैं कि खेती में भी विविधीकरण आपको लाना है, जैसे खेती में विविधीकरण आपको लाना है तो फसल के साथ आप उधान के फसल जैसे फल को उपजाएंगे, फल को भी उपजाने की बात हुई तो उसमें एक लेवल पे जैसे सबसे ऊंचा पौधा, उसके बाद बीच में पौधा, फिर नीचे में ग्राउंड में मसाला की खेती, तो वहाँ पे भी विविधीकरण हम ला सकते हैं। इसके अलावा जानवर की भी हम लोग जानवर को भी उसमें लाएंगे विविधता, तो खेती में विविधता लाने के लिए हमको सारा चीज़ को लाना पड़ेगा। और उस सब सारे चीज़ को हम लाएंगे तो हमारा लागत भी कम होगा, क्योंकि एक चीज का उत्पाद दूसरे में प्रयोग होगा, दूसरे को उत्पाद तीसरे में होगा, तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगा और इसके चलते हमारी आजीविका की भी सुरक्षा होगी
1: जी।
2: और जहां तक हम लोग बोलेंगे जलवायु की अनुकूलता, तो जो हमारे पलामू का आज स्थिति आप देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, तो यहाँ की जो अनुकूल है तो जलवायु को भी अनुकूलता प्रदान करेगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ ऐसे हम लोग पतझड़ वाले पेड़ यहाँ पे ज्यादा होते हैं, लेकिन पतझड़ वाले पेड़ को आप देखेंगे कि अभी उनमें पूरा पत्ती आ गया है, तो उनमें जब पूरा पत्ती आ गया आप जंगल में चलेंगे तो शीतलता प्रदान करेंगे और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारे यहाँ जलवायु का भी अनुकूलता होगा, जलवायु को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आज चूंकि पेड़ में पत्ती कम होने के चलते आप देखेंगे कि गर्मी हम लोग महसूस करते हैं, तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ के जलवायु अनुकूल जो चीज था उस चीज को विविधता के रूप में हम लोग को बढ़ाना है।
1: कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है, यही माना जाता है।
2: एकदम सही। मैं यहाँ पे और लोगों को एक बताना चाहूंगा कि यदि आपके यहाँ विविधता है तो फसलों में जो मधुमक्खी है, तितली है, उनके द्वारा परागण भी होता है, और आपके यहाँ विविधता नहीं है और हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो उनकी संख्या कम होगी और जिसके चलते क्या होगा, फसल का उत्पादन भी कम होगा कृषि के क्षेत्र में। तो विविधता आप जितने लाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेती में वो मरते चले जा रहे हैं, उनमें जब विविधता होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी संख्या होगी उतना ही हमारा खेत जो है उपजाऊपन बढ़ेगा। तो विविधता को एक सीमित शब्दों में हम लोग नहीं मान सकते हैं। ये प्रकृति के साथ जब तक पृथ्वी है तब तक विविधता रहेगी, तब तक हम टिके हैं। जिस दिन विविधता खत्म हो जाएगी, हमारे पास आप इस बात को समझिए कि एक किताब हम लोग केवल लेकर के चलें तो किताब आपके जीवन को सुधार नहीं सकता है, लेकिन एक लाइब्रेरी आप बना लें तो आपके जीवन को सुधार सकता है। तो इसी तरीका से विविधता एक लाइब्रेरी की परिकल्पना है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, कहीं के भी क्षेत्र में जब तक आप विविधता नहीं लाएंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सर्वाइव के लिए विविधता का होना अति आवश्यक है। और खेती जो कि हमारा विभिन्न तरीका के रोजगार को देता है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं आजीविका की सिक्योरिटी, चाहे जलवायु की सिक्योरिटी, तो ये सब कृषि से है। तो कृषि में भी तो विविधता बहुत जरूरी है।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और जैव विविधता से संबंधित जानकारियां साझा की हमारे किसान भाइयों के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: कृषि में जैव विविधता, इस पर अभी जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे।

उसका विकास करने में सहायक बन सकते हैं। तो श्रोताओं, हम बता दें कि जो नर्सरी है वो पौध प्रबंधन करने का वह विशेष क्षेत्र होता है जिसमें विशेष रूप से देखभाल तथा उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है। फल नर्सरी स्थापित करने के लिए उस स्थान का चयन करना चाहिए श्रोताओं, और इसमें मुख्य रूप से भूमि के प्रकार पर जरूर ध्यान देनी चाहिए जो उत्तम प्रकार की हो, जैसे कि दोमट बलुई मिट्टी या बलुई दोमट जिसमें पानी निकास की उचित सुविधा होनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि जो भूमि है वो कंकरीली पथरीली ना हो, समतल हो, और यदि ये समतल होगी भूमि तो उसका परिणाम जो है अच्छा मिलेगा। जलवायु उचित होनी चाहिए, साथ ही साथ आवागमन का साधन भी होनी चाहिए जिससे कि आसानी से पौधे को कहीं भी लाया ले जाया सके। स्थल चुनाव कर लेने के बाद श्रोताओं, ये ज़रूरी है कि आप जो है कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि बीज की क्यारी होनी चाहिए जो मूल वृंद के लिए उगाई जाती है और खुले स्थान में हो जिससे कि पर्याप्त रोशनी मिल सके, तथा क्यारी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। खाद तथा उर्वरक भी आवश्यकता अनुसार उसमें डालनी पड़ती है। छायादार स्थान में जब पौधे अच्छी तरह से उसमें बढ़ने लगे तभी उसे, जब वो थोड़ी मजबूत हो जाए तभी आप उन्हें दूसरे स्थान पर उसे ले जा सकते हैं। और एक फल की विभिन्न किस्मों की अलग अलग क्यारी बनाएं, यानी कि यदि आप आम अमरूद लीची वगैरह लगाते हैं तो ध्यान रहे कि एक क्यारी में सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे नर्सरी हो, और जिससे कि पौधे की वृद्धि में आसानी होगी और उसकी देखभाल करने में आसानी होगी। यदि गमले में लगा रहे हों तो ध्यान रहे कि गमला जो है उन पर भी थोड़ी दूरी होनी चाहिए और वो भी थोड़ी छाया में रखी जानी चाहिए, खुली धूप में ना रखें। और खाली गमला मिट्टी रेत व खाद मिलाने व भरने के लिए अलग स्थान होने चाहिए। गमलों एवं नर्सरी की सिंचाई बरसात के दिनों को छोड़कर आवश्यकता अनुसार सुबह शाम जरूर करनी चाहिए जिससे कि उचित नमी बनी रहे। ध्यान रहे श्रोताओं कि बहुत अधिक तेज रूप से उसमें पानी का सिंचाई ना करें, बल्कि हल्के हल्के जो है उनमें पानी का छिड़काव करें या फिर किसी झरने का प्रयोग करें।

खाद या गड्ढा एक कोने में रखें और स्वयं ही खाद बनाकर आप सड़ी करें। जैसे कि आप अपने खेतों में ही अगर खाद बनाते हैं कंपोस्ट खाद, और यदि उसका प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी होगा। साथ ही पौधे को समय समय पर उचित खाद उर्वरक देते रहना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो आप उसमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक दवाओं के बदले आप यदि जैविक तरीके से तैयार किए हुए दवाओं का छिड़काव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिट्टी या क्यारी का उपचार, यानी कि जब आप उसमें लगा रहे हैं क्यारी में बीज, तो बीज को उपचारित करके ही लगाएं। और श्रोताओं, ध्यान रहे कि यदि आप कलम किए हुए पौधे को लगा रहे हैं तो फिर उसे आप जो है कलम द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ध्यान रहे कि मिट्टी जो है वहाँ पर हमेशा नमी नहीं रहनी चाहिए, जल निकास की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार उस पर भी सिंचाई करते रहें। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर नर्सरी को जो है या पौधशाला को है वो भली भांति

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम ग्रामीण सभा का।

अग्रामी सभा कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। विकास का पहिया टिका होता है महिलाओं एवं पुरुषों की समान भागीदारी पर, इसीलिए देश के विकास में महिलाओं की उतनी ही भागीदारी होती है जितनी की पुरुषों की, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के बिना कृषि कार्य तो संभव है ही नहीं। इसीलिए जो बहनें हैं वो खेत खलिहान पशुपालन से लेकर घर की जिम्मेदारियां तो निभाती ही हैं, यानी सभी स्थानों पर वो तालमेल कर चलती हैं। महिलाएं जो होती हैं वो घर के साथ साथ खेत खलिहान भी संभालती हैं। इन सभी जिम्मेदारियों का बोझ कुछ हल्का करने और खेती किसानी को आसान बनाने के लिए आज हमारी बहनों के लिए बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो उनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तो चलिए बहनों हम बता दें कि आपके लिए वो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे बहनों, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी वो तो बढ़ती ही जा रही है और अब ग्रामीण महिलाएं जितना जो है वो हर क्षेत्र में अपना हिस्सा बहुत ही अच्छी प्रकार से निभा रही हैं। लेकिन यदि हमारी बहनें की एक बड़ी आबादी है इसमें खेती बाड़ी में, तो फिर उन्हें पारंपरिक तरीके को छोड़कर इन आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाना होगा जिनकी लागत भी कम होती है, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करने में भी इनकी सहायता ली जा सकती है। तो बहनों आइए हम देखते हैं कि वो यंत्र कौन कौन से हैं। वो यंत्र बहनों हस्तचालित बीज बुआई यंत्र हैं। हाथों से बीजों को खेत में छिड़कने पर ज़्यादा बीजों की खपत होती है और उत्पादन भी कुछ खास नहीं मिलते। इस तरह बुआई करने के बाद कृषि कार्य करना मुश्किल भी हो जाता है। अगर लाइनों में बीजों की बुआई की जाए तो ये सभी काम आसान हो जाते हैं। हालांकि हाथ से बीज की बुआई लाइन में करेंगे तो 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और उसके साथ भी मेहनत भी। तो ऐसे में हर तरह के बीजों की बुआई के लिए हस्तचालित बीज बुआई यंत्र यानी मिनी सीड ड्रिल मशीन जो है उसका प्रयोग हमारी बहनें कर सकती हैं और ये आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं। इस मशीन के जरिए गेहूं से लेकर सोयाबीन, मक्का, चना और अरहर के बीजों की कतारों की बुआई पर कर सकती हैं। इस सीड ड्रिल मशीन में हैंडल के साथ बीज के लिए हॉपर, एक ग्राउंड व्हील, एक फ्लोटेड रोलर और ड्रिल खींचने के लिए एक हुक भी दिया होता है। बीजों को कतारों में लगाने के लिए फ्लोटेड रोलर से बीज गिराए जाते हैं। इस तरह बीजों की काफ़ी बचत हो जाती है और मेहनत भी। तो ये बहनों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है। अब हम बातें करेंगे उन्नत दांतेदार हंसिया की। तो ज़मीन पर बैठकर घंटों तक फसल की कटाई करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। अब महिलाएं ये काम भी बड़ी ही आसानी से किसी भी परेशानी के निपटा सकती हैं। ये जो यंत्र है बहनों वो गेहूं से लेकर सोयाबीन, धान, चना, सरसों, घास आदि पतले डंठल वाली फसलों की कटाई आसानी से कर देता है। इस कृषि यंत्र से दांतेदार ब्लेड, सामी और लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्ट टूल का वजन सिर्फ 180 ग्राम का होता है, जिससे कटाई करने पर जो है महिलाओं को ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी उनकी कलाई पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ती। उसी प्रकार से है बहनों गन्ना बड़ चीपर, और ये हम सभी जानते हैं कि गन्ना

0: जो है वो हमारे देश का बहुत बड़ा उत्पादक देश है और गन्ना की खेती एक बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो किसान बहनें हैं वो पारंपरिक तरीके से अपना रात दिन परिश्रम करके गन्ना का उत्पादन लेती हैं। तो ख़ास तौर पर महिला किसानों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो रात दिन उसमें लगे रहे। इस काम को स्मार्ट यदि करती हैं वे नए तरीके से, तो गन्ना बट चीपर आज बाज़ारों में आसानी से मिल जाता है। घंटे भर के में गन्ने की 100 से भी ज़्यादा बड़ निकालने में ये मदद करता है। इससे गन्ना की बर्बादी भी नहीं होती है और अपनी आवश्यकता अनुसार मोटे या पतले गन्ने के बड़ निकाल सकते हैं। ये कृषि यंत्र हाथ से चलता है, इसीलिए बिजली या ईंधन का कोई खपत इसमें नहीं होता। वजन में भी ये कृषि यंत्र काफ़ी हल्का होता है, जिसकी मदद से गन्ना की बुआई को कई गुना आसान बनाया जा सकता है। बहरो, अब हम बातें करेंगे पैडी ट्रांसप्लांटर की। तो धान की खेती जो है कई राज्यों में सालों भर भी की जाती है, तो यहाँ धान के पौधे की रोपाई करने में भी काफ़ी समय लग जाता है, जिस वजह से समय पर उत्पादन नहीं मिल पाता है और हमारी बहनों की काफ़ी श्रम जो है वो इसमें यूं ही चला जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो है शरीर में कई प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए, धान की रोपाई को आसान करने के लिए बाज़ार में बेहद सस्ता पैडी ट्रांसप्लांटर मौजूद है, जो कतारों में चटाई की तरह धान की रोपाई कर देती है। इस मशीन में धान जो पौध वो खिसकाने वाले ट्रे, हत्था पौध पकड़ने वाली ट्रे और गहराई नियंत्रण यंत्र भी लगा रहता है, और इस कृषि उपकरण की मदद से जो है बहनों को झुक कर धान बुआई करने की जो झंझट है वो भी खत्म हो जाती है, और जब कतारों में धान की रोपाई होती है तो निराई गुड़ाई छिड़काव इत्यादि सभी काम उनके लिए आसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी बहनों के लिए आज बहुत ही कम वजन में और सस्ते दर में बहुत सारे यंत्र उपलब्ध है बाज़ारों में, बस इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ज़रूर हमारी बहन जो है वो इन यंत्रों का प्रयोग करें और अपने समय को, परिश्रम को, सभी को बचाएं। तो बहनों, इस जानकारी के बाद चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। गुट्टी विधि से नए पौधे का निर्माण, इस पर जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे नए पौध तैयारी की और किस प्रकार हम नए पौध तैयारी करें, कौन सी विधियां लगाएं जिससे हम अधिक से अधिक पौध उत्पादन करके और खेतों में उसे लगा सकें। और वो विधि है किसान भाइयों गुटी विधि, जिस पर विस्तृत जानकारी आज हमारे साथ साझा करेंगे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि गुटी विधि क्या है।
2: जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते हैं, जब हम लोगों को खासकर खेत में फलदार पौधे लगाने होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, या कहीं हम लोग देखते हैं कि अच्छी उन्नत क्वालिटी की प्रभेद आपके पास है तो आप उसके बीज से जो पौधा लगाते हैं वो उसके जैसा नहीं होता है
1: जी।
2: 5 वर्ष बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें वो गुण नहीं है
1: नहीं।
2: तो इस स्थिति से पार पाने के लिए असेक्सुअल विधि है, जिसमें हम लोग पौधे के किसी भी भाग को ले करके एक नए पौधे के रूप में उसको तैयार करते हैं
1: जी।
2: तो उसी का एक पार्ट है गुटी। गुटी का मुख्य रूप से हम लोग यहाँ नींबू, अमरूद, कटहल, अनार में प्रयोग करते हैं, काजू तथा तेजपत्ता जो है इसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पौधा बहुत कम समय में तैयार होता है खेत में लगने लायक। बीज से हम लोग लगाते हैं तो 2 से 3 वर्ष मतलब उसको बड़ा होने में लगता है
1: जी।
2: जबकि इस विधि से आप 6 से 7 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। इसके लिए

0: किसान भाइयों को मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना होगा। किसी भी पौधे से यदि उसी के जैसा, उसी के गुण वाला, उसी की बढ़वार वाला यदि पौधा हम लोग तैयार करना चाहते हैं, खासकर नींबू, अमरूद, कटहल, काजू, अनार, तेजपत्ता, तो हम लोगों को गुटी विधि का चयन करना चाहिए। गुटी विधि को किसान भाई और जगह से मार्केटेज नाम देखेंगे, पॉट लेयरिंग नाम से भी जानते हैं, चाइनीज एयर लेयरिंग भी इसको कहते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसी गुटी विधि का तरीका है।
1: अच्छा।
0: और नाम है
1: जी।
0: इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले स्वस्थ पौधे का चुनाव करना होगा, जिससे वो पौधा, नए पौधा तैयार करना चाहते हैं। और इसका सबसे सही समय होता है जुलाई अगस्त महीना। जुलाई अगस्त में जब मौसम में आर्द्रता होती है, मतलब गर्मी भी हो, बढ़वार भी आती है और जड़ बढ़ने का वैसा कंडीशन बेहतर रहता है, हवा में आर्द्रता रहती है, पानी की मात्रा रहती है
1: जी,
0: तो सबसे पहले हम लोग समय हम लोग जान गए, पौधा भी हम लोग जान गए कि वैसे पौधा जो स्वस्थ हो और जिस जो वैरायटी हमको लेना है
1: जी।
0: जैसे यदि अमरूद में हम लोग को लेना है तो L49 या सरदार वैरायटी उसको बोलते हैं, इलाहाबाद सफेदा है, ललित है, इसका हम लोग चुनाव कर सकते हैं
1: जी।
0: तो जो सबसे बेहतर वैरायटी हो। इसके अलावा किसान भाई को कहीं अपना भी वैसा वैरायटी बेहतर हो जिसको लगता है कि इसका नया पौधा तैयार होना चाहिए, तो बीज से उसकी सही वैरायटी नहीं होती है तो उसको भी वो ए चाइनीज ईयर लेयरिंग या गुटी विधि से पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ये देखना होगा कि पेंसिल की मोटाई के आकार का वैसे पौधों को चुनाव करना होगा, जिसमें खासकर आप जैसे जो पौधा मैं बताया, इसके अलावा और भी पौधे आप कर सकते हैं, जिसका कि ऊपर भाग, नया वाला भाग आप देखेंगे कि मुलायम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो जो जिसका ऊपर वाला मुलायम होता है वैसे पौधा का चुनाव कर सकते हैं, और जिसका ऊपर का छाल आसानी से छोड़ देता हो।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो उसका हम लोग चुनाव कर सकते हैं।
1: ठीक है, चुनाव कर लिए उसके बाद
0: तो पेंसिल थिकनेस के आकार का हम लोग शाखा सिलेक्ट करेंगे, और उस शाखा को हम लोग देखेंगे कि जहाँ से हम लोग को चुनाव करना है, तो उसका जो बेस होता है, आधार होता है जहाँ से निकलता है, उसका हम लोग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे पहला कट लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: गोलाकार में।
1: अच्छा।
0: और उसका दूसरा कट जो है, मैंने 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बाद दूसरा कट लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: कट लगाने का मेन मकसद है कि ये दोनों कट के बीच के जो छाल है, उस छाल को हमको काट के हटा लेना है
1: जी, ऊपर से सिर्फ हटाना है,
0: ऊपर से हटा लेना है, और ये सावधानी देखना है,
1: 1-1 इंच,
0: हाँ, एक इंच से 1.25 इंच के आसपास में वो हटा लेंगे। और हम लोग को ये ध्यान देना है कि नीचे जब आप हटाएंगे तो उसके बाद एक हल्का पतला मांस जैसा रहता है, उस चीज को भी हम लोग चाकू के दूसरा तरफ से खुरच करके चाहेंगे कि हल्का हल्का करके वो हट जाए, या जूट का बोरा से भी उस चीज को हटा सकते हैं। यदि वो नहीं हटेगा तो बाद में क्या होगा कि पौधा तैयार नहीं होगा और जो छाल जो है, नया छाल बन करके एक दूसरे से जुट जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग को इस चीज को रोकने के लिए उसको पूरी तरीका से हटना चाहिए। दूसरा एक चीज किसान भाइयों को मैं एक सलाह और देना चाहूंगा कि जब भी चाकू का ये प्रयोग करें तो उस चाकू को सैनिटाइज आपको कर लेना है।
1: अच्छा।
0: खासकर हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसे थोड़ा सा पोंछ लेंगे, जिससे किसी तरीका का रोग का प्रकोप नहीं होगा। ये मुख्य बात हुआ। दूसरा हुआ है कि जब हम लोग जहाँ गुटी बांध रहे हैं उसके अगल बगल के अवांछित जैसे जो निकलता है और छोटा शाखा, उस शाखा को हटा लें, उस पर ज़्यादा पत्ती नहीं रहने देना है, जिससे कि सही मात्रा में जो भोजन तैयार होता है वो इस पार्ट तक मिले। और आपको जब आगे कुछ उसमें हम लोग को गुटी बांधना है तो आसानी से आप उस शाखा को पहचान भी लेंगे, दो इसे दो काम हो रहा है। इसके बाद किसान भाइयों को जो हम लोग गुटी जहाँ पे बांधना है उसका चयन करने

0: जो चिकनी मिट्टी जिसमें कोई भी कूड़ा कचार जैसा नहीं हो, उसको अच्छी तरीके से छान ले चलनी से, और पूरा सड़ा हुआ गोबर उसमें मिलाएं, और उसको इतना गूथना है, इतना गूथना है कि वो घर में जो आटा रोटी बनने लायक होता है हो इस तरीका से हो जाए। यदि संभव हो तो उसको 8-10 दिन गड्ढा में करके छोड़ भी दें कि उससे गंध हट जाए। सड़न यदि कुछ रहता है तो सड़न को ज़्यादा तेज करने के लिए हम लोग उसमें मिट्टी के जो हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं उसके अनुसार हम लोग पोटास खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक मुट्ठी के आसपास में यदि 10 kg के आसपास मिट्टी है, 10 kg गोबर है, तो दोनों को सम मात्रा में, बराबर मात्रा में लेंगे और 2 मुट्ठी के लगभग पोटास खाद का प्रयोग करेंगे।
1: अच्छा।
0: और जब उसको बीच में आप बोरा से ढक दीजिए, पूरा सड़न जब अच्छा से हो जाए, उससे गंध निकलना खत्म हो जाए, तो हमारा तैयार है। और यदि आपके पास कंपोस्ट पहले से है, तब आप तुरंत मिट्टी में भी दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में मिक्स करके आटा जैसा गूंथ करके तैयार कर सकते हैं। सावधानी ये रखना है कि ज़्यादा मिट्टी गीला नहीं होना चाहिए। या तो किसान भाई, बाजार में स्फैग्नम मॉस मिलता है, वो 300 से 500 रुपये केजी मिलता है, उसको आप पानी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है।
1: अच्छा,
0: तो हम लोगों को ये करना है कि उस मॉस को हम लोग रात भर पानी में डालेंगे, लेकिन जब सुबह प्रयोग करना है तो उस मॉस को पानी उसे निकाल लेंगे हाथ से दबा करके, और जो कटा हुआ भाग है उस जगह पे अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जो मिट्टी का गीला मिट्टी बनाए थे उसको एक मुट्ठी में ले करके उसको ढकेंगे या स्फैग्नम मॉस लगा करके ढकेंगे।
1: अच्छा।
0: और उसको ढकने लायक जो उजला प्लास्टिक होता है, उजला प्लास्टिक से उसको ढकेंगे। ढकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भीतर में जो मिट्टी की नमी हमेशा बरकरार रहे और बाहर से जो कटा हुआ भाग है उसमें कोई कॉन्टामिनेशन नहीं हो, उसको दोनों रोकने के लिए आर्द्रता भी बनी रहेगी तभी जड़ निकलेगा। और सुतली से बहुत टाइट करके दोनों तरफ बांध देंगे। दोनों तरफ बांधने का मुख्य उद्देश्य ये है कॉन्टामिनेशन को ही रोकना है और भीतर में आर्द्रता बना के रखना है। और ये कोशिश करना है कि जो हम लोग मिट्टी लगाए हैं वो दोनों कट वाले भाग को ढके रहे, ये नहीं कि कभी कभी करने में घसक जाता है। यदि ऊपर साइड से घसक जाता है तो जड़ तो कभी आएगा ही नहीं, नीचे साइड का यदि बाकी रहता है तो जड़ आने की भरपूर संभावना होती है, लेकिन ढके तो ज़्यादा बेहतर है, खासकर जब आप शुरुआत में कार्य कर रहे हैं तो ये। और इसके बाद जब किसान भाई देखेंगे, यदि किसी कारण से आप खेत में देख रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बीच में पूरा गर्मी पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जिसमें एक गुट्टी बांधे हैं उसमें समय समय पे स्प्रिंकलर इरिगेशन जो फवारा है
1: वो कर
0: उस तरीका से करते रहने से फायदा होता है। या फवारा नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई तो देखते हैं कि यदि जमीन सूखा हो गया है जिस पौधा में गुट्टी बांधे हैं तो वहाँ पे समय समय पे पानी देते रहना है। यदि नहीं देंगे तो गुट्टी सक्सेस नहीं होता है, बहुत कम सक्सेस,
1: जड़ नहीं निकल पाएगा,
0: रेशियो रह जाता है। तो मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखना है। और जब सारी परिस्थिति बेहतर रहती है तो 20 से 25 दिन में जड़ आपको निकलते हुए दिखने लगेगा। जब जड़ निकलते हुए दिखने लगा उसको घना होने के लिए छोड़ दीजिए और 15 दिन छोड़ दीजिए। और 15 दिन के बाद उस पौधे को यदि हमको अलग करना है तो हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे कि फिर से जो पत्ती वगैरह निकला है नया नया उस सबको छांटेंगे, बहुत कम पत्ती शाखा रहने देंगे, और जहाँ से हमको काट के अलग करना है उस जगह पे चाकू से थोड़ा सा कट करके छोड़ देंगे 5-7 दिन के लिए। बाद में दोबारा कट करके उसको पूरी तरीका से अलग करेंगे। अलग करने के बाद जिस प्लास्टिक से हम लोग उसको ढके थे उस प्लास्टिक को हटाएंगे और ट्यूब में जिस तरीका से हम लोग गोबर और मिट्टी का अनुपात बना करके ट्यूब को भरते हैं, उस ट्यूब में फिर से जो ये जड़ निकला हुआ गुट्टी है इस गुट्टी को उसमें लगाएंगे और हल्का छाया वाले क्षेत्र में कुछ दिन के लिए रखेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे आप इसको थोड़ा थोड़ा धूप में लाते रहिए जिससे पौधा में हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा और हमारा पौधा लगने की स्थिति में खेत में जाने

0: की स्थिति में 2 से 3 महीने के बाद आसानी से हो जाता है।
1: जहाँ किसान भाइयों ये बातें हुई गुटी विधि से, जिससे आप नए पौधे की तैयारी कर सकते हैं और बेहतर मात्रा में आप नए पौध की तैयारी कर सकते हैं एक पौध से, और उसे अपने खेतों में लगा सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण पौध से गुणवत्तापूर्ण पौध आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ गुटी विधि पर आज विस्तृत जानकारी साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े सर और गुटी विधि से जुड़ी जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, गुटी विधि से नए पौधे का निर्माण। इस पर जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। बहनों, आज आंगनबाड़ी केंद्र की जो भूमिका है वो निश्चय ही काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इस केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं, जो छोटे शिशु होते हैं, उनके विशेष पोषण की व्यवस्था होती है और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्हें दी जाती है। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो महिलाओं तथा छोटे बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से जुड़ी जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गर्भावस्था में माँ को अपने सामान्य भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड जैसे अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो संतुलित आहार के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर महिलाओं को दाल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही, अंडा उपलब्ध भी किए जाते हैं और उन्हें साथ ही इन सभी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। बच्चों के जन्म के बाद माँ को पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम की ज़रूरत होती है। आंगनबाड़ी केंद्र पर माताओं को स्तनपान, शिशु के उचित पोषण के बारे में भी जानकारी दी जाती है। माँ को पर्याप्त पानी पीने और विविध एवं संतुलित भोजन लेने की भी सलाह दी जाती है। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चों को केवल माँ का दूध देना चाहिए, इसकी भी सलाह दी जाती है और इस अवधि में पानी, शहद या अन्य खाद्य पदार्थ देने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने पूरे होने के बाद स्तनपान जारी रखते हुए बच्चों को कम उम्र के अनुसार उन्हें पूरक आहार भी शुरू करनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ पूरक आहार में जो है वो खिचड़ी, दाल, अनाज, सब्जियाँ, फल, अंडा आदि शामिल किए जा सकते हैं और भोजन की मात्रा बच्चों की उम्र के अनुसार घटाए बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो पौष्टिक भोजन के साथ स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। माँ और बच्चे को खाना खिलाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बर्तन साफ रखने चाहिए, सुरक्षित पानी या स्वच्छ जल को का सेवन करना चाहिए, भोजन को ढक कर रखना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी भी उन्हें आंगनबाड़ी में दी जाती है। तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो संतुलित आहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, उचित स्तनपान और समय पर निगरानी आदि सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है महिलाओं और बच्चों पर। तो ये सचमुच में एक बहुत ही जो है बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए। उन्हें इनसे जुड़ना चाहिए और इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो देखिए बहनों, अब समय हो चला है कि हम ले इजाज़त कार्यक्रम ग्रामीण सभा से। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत।
2: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अरे बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
4: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
3: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
5: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
6: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
9: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
8: पिछले हफ्ते ही तो तुमने NSB कराई है।
9: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
8: NSB कराने।
9: पुरुष नसबंदी यानी NSB की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
2: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
1: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
2: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
1: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
2: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनवाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, ईपीएफओ के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर की गई 25,000 रुपए। 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल जनरल ने रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। झारखंड में पर्यटन, संस्कृति, मिनरल्स और कौशल विकास में सहयोग पर चर्चा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर को लेकर अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 30 सितंबर तक का समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल से शुरू हो रहा है सेवा संकल्प अभियान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देशवासियों से आशीर्वाद का एक दिया जलाने का किया आह्वान। और नई दिल्ली में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड की शानदार जीत। एक तरफा मुकाबले में दमन एवं दीव को 4-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
4: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
3: कोलकाता में पदस्थापित ऑस्ट्रेलियन काउंसिल जनरल बर्नार्ड लिंच ने आज रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अलग अलग शिष्टाचार मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा पर्यटन, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, मिनरल्स और कौशल विकास के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अधिकारियों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। इस दौरान सीईओ ने निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य के पात्र नागरिकों के लिए दावा आपत्ति दर्ज करने और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई।
5: 1 अक्टूबर 2026 में आधार हो जाएगी। अविलंब फॉर्म 6 जमा करना, इसमें आपका कुछ नाम में परिवर्तन, पोलिंग स्टेशन में कोई परिवर्तन करना है तो फॉर्म 8 भरवा दें। किसी का नाम विलोपित करना है मृत्यु अन्य इनएलिजिबिलिटी कारण, वो फॉर्म 7 भरवा दें। अभी 30 सितंबर तक समय दिया जा रहा है।
3: रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत लोगों से आशीर्वाद का दिया जलाने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर कल शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने घरों में दिया जलाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करने का आग्रह किया है।
6: प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन और जो उनका संकल्प है विकसित भारत का, एक दिया आशीर्वाद का कल शाम को 6 बजे से 7 बजे तक पूरा देश जलाएगा। मैं आपके माध्यम से पूरे झारखंड की जनता को आह्वान करता हूं कि कल 17 तारीख जब हम सब विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक दिया आशीर्वाद के नाम पर आप सब जरूर प्रज्वलित करें।
3: केंद्र सरकार द्वारा यूपीआई को लेकर जारी नए नियमों का रांची के व्यापारियों और आम जनता ने स्वागत किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार नए नियमों में पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पूरी तरह शुल्क मुक्त रखा गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। प्रबुद्ध जनों ने इस मामले में फैलाई जा रही किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील की है।
7: जो भी ट्रांजैक्शन आपके फैमिली में होगा, आपके कजन में होगा, उस पर सरकार किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा रही। आप 1 लाख तक भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी ये ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा है, और टैक्स नहीं देंगे तो कंट्री डेवलप भी नहीं करेगा।
8: केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम लागू हुआ है यूपीआई के लिए, इसमें पर्सन टू पर्सन फायदा हुआ है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन विपक्ष के जो है वो लोग भ्रमर फैला रहे हैं, जो कि

0: बिल्कुल ही गलत है, इसमें हम लोग आम आदमी को फायदा है।
1: दुमका जिले की 150 महिला उद्यमियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के झारखंड इनक्यूबेटर कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आईआईएम कोलकाता इनोवेशन पार्क के विशेषज्ञ इन महिलाओं को बिजनेस रणनीति और ब्रांडिंग का प्रशिक्षण देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कोड और कॉलम की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से लोकभवन तक विरोध मार्च निकाला। पार्टी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जनगणना में ओबीसी कॉलम की मांग करते हुए कहा कि सही आंकड़ों के बिना आरक्षण का लाभ मिलना असंभव है।
2: जैसे एसटी का अलग कॉलम है, एससी का है, उसी तरह ओबीसी का जब तक अलग कॉलम नहीं होगा और जातिवार कोड नहीं होगा वैज्ञानिक, तब तक कैसे उनकी संख्या का पता चलेगा, कैसे उनकी भागीदारी होगी, कैसे उनको हिस्सा मिलेगा, कैसे उनकी आंकड़ा का पता चलेगा। तो ये सामाजिक न्याय के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आज ओबीसी समाज को भी अलग कॉलम होना चाहिए।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विकसित भारत 2047 के संकल्पों को लेकर आज कोडरमा जिले के बिजली बीएड कॉलेज में एक पॉडकास्ट का आयोजन किया गया। इसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सीबी शर्मा ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए।
3: जो बदलाव ला रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी का, जो हमने साइलोज में बंद कर दिया था नॉलेज को, उसको खोले हैं। तो अब हमारे यहाँ से बेस्ट डांसर्स, बेस्ट पेंटर्स, बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट फर्नीचर डिजाइनर, बेस्ट अपैरल डिजाइनर्स निकल लेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो वो लागू हो गया है, हमको लगता है कि वो निश्चित तौर पर 2040-47 तक हम दुनिया में बढ़िया आर्किटेक्ट दे सकेंगे।
1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल अपने 3 वर्ष पूरे कर रही है, जिसके तहत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक उपकरण, ऋण और कौशल प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाना है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड का मुंगरा गांव प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है। गांव की लाभुक सुनीता देवी ने इस योजना की मदद से 60 महिलाओं को लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण भी दे रही हैं।
4: पीएम विश्वकर्मा योजना से हम लोग का सामान भी मिला, जुड़े भी हैं और हम लोग महिला लोग को यहाँ समिति बनाकर सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सबको यहाँ काम को बारे में बता भी रहे हैं और सब महिला लोग सीख भी रहे हैं।
1: नई दिल्ली में खेले जा रहे सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में झारखंड की टीम ने धवन एवं दीप को 4-0 से हरा दिया है। झारखंड की ओर से अनीश कुजूर, शुभम कुमार, सत्यम महतो और विक्की उराव ने 1-1 शानदार गोल दागा, जबकि टीम की मजबूत रक्षा पंक्ति ने विरोधी टीम को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, ईपीएफओ के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर की गई 25,000 रुपए। 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल जनरल ने रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। झारखंड में पर्यटन, संस्कृति, मिनरल्स और कौशल विकास में सहयोग पर चर्चा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर को लेकर अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 30 सितंबर तक का समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल से शुरू हो रहा है सेवा संकल्प अभियान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देशवासियों से आशीर्वाद का एक दिया जलाने का किया आह्वान। और नई दिल्ली में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड की शानदार जीत।

0: एक तरफा मुकाबले में दमन एवं दीव को 4-0 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
2: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
1: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
2: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
1: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
2: और लड़के की 21 वर्ष है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता बरकरार रखने, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर प्रमंडलीय बैठक पाकुड़ में हुई। बैठक के बारे में विस्तार से बताया स्टेट नोडल पदाधिकारी रंजीत कुमार ने।
2: ये पूरा संथाल परगना के जितने भी जिले हैं उनको क्वालिटी संबंधी जानकारी और उसका रिव्यू करने के लिए कि किस तरह किस स्थिति में हम लोग हैं और आगे क्या एक्शन प्लान होगा, क्या क्या गैप्स है हमारा और उसके हिसाब से किस तरह से हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं, सो दैट कि भारत सरकार का जो टारगेट है बाय द एंड ऑफ 26 सभी हमारा हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो क्वालिटी सर्टिफाइड होना चाहिए। उसका जो सिंबल है एनक्वास है, एनक्वास सर्टिफाइड हो, ये हमारा ध्येय है।
1: सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने सहित यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा लगातार जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इस पर बात की जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने।
3: सभी मोटरसाइकिल धारियों से जो भी है हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो टोटो के भी ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी ट्रैफिक रूल का अनुपालन नहीं करने वाले को चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कार चालक जो है सीट बेल्ट लेकर पहनकर नहीं चलते हैं, वैध ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के नहीं चलते हैं, इसी की जाँच की जा रही है।
1: जन वितरण प्रणाली व्यवस्था से जुड़े राशन डीलरों ने बकाया कमीशन का भुगतान करने सहित कई मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने धरना दिया। इस पर बात की फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सचिव आबेदीन अंसारी ने।
4: देश के सबसे गरीब तबके के जो घर में है हम लोग अनाज पहुंचाने का काम करते हैं और हम लोग का कमीशन 12 महीने से लगभग अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो आखिर डीलर लोग क्या करेंगे? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और हम लोग का कमीशन 10-10 है, वो भी कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का भी परिवार है, हम लोग को भी बाल बच्चे हैं, वो लोग का भी पढ़ाई लिखाई है, डॉक्टर का खर्चा है, बहुत तरह की समस्या है हम लोग के साथ। इसलिए हम लोग प्रदेश के आह्वान पर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रोग्राम रखे हैं। अगर सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो फिर हम लोग आगे आंदोलन को जारी रखेंगे।
1: पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड की एक आभूषण दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक अंतर्राज्यीय लूटपाट गिरोह के 3 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सोने की दुकान में हुई लूट के चांदी एवं सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। इस पर बात की पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने।
5: कांड की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल एसआईटी की का गठन किया गया था और उसमें सब टीमें 6 टीमों को और इन्वॉल्व किया गया था उसके अंदर, और घटना में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो सभी हथियार बरामद कर लिए गए हैं, एम्यूनेशन बरामद कर लिया गया है, घटना में जो आभूषण गए थे वो बरामद किए गए हैं और जो घटना में बाइक प्रयुक्त की गई थी वो बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है।
1: जिले में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय के अलावे हिरणपुर एवं महेशपुर में इस अवसर पर पूजा समितियों द्वारा आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार।
0: अभी आप सुन रहे थे

अभी आप आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण शुरुआत सुन रहे थे। प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग के इस रंग को हमने सजाया फिल्म शुक्रिया के गाने के साथ। तो आइए हम सुनते हैं फिल्म शुक्रिया के सभी गाने को एक रंग में।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग आकाशवाणी डाल्टनगंज FM 103 मेगाहर्ट्ज़। और आज के इस रंग को सजाया हमने एक ही फिल्म के गाने जिसका नाम है, हम आपको सुना रहे हैं फिल्म

0: तो आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आपने सुना के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। आज हमने इस रंग को सजाया था शुक्रिया फिल्म के गाने से। संगीतकार विशाल शेखर और समीर के बोल थे। फिल्म का नाम था शुक्रिया। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आइए हम अब सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी। भेंटवार्ता में अपेंडिक्स कारण एवं निदान। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, सर्जन पलामू। भेंट करता है संजय कुमार मिश्रा।
1: कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे अपेंडिक्स पे। अपेंडिक्स का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इससे संबंधित ढेर सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। आइए आज उन तमाम सवालों का जवाब आपको हम दिलवाएंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने चिकित्सक, सर्जन और पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर सुशील कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, अपेंडिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएं अपेंडिक्स है क्या, किसे कहते हैं अपेंडिक्स?
2: ये अपेंडिक्स जो है एक ग्रंथि है शरीर में। यह छोटी आंत जहां पर खत्म होती है और बड़ी आंत जहां पर सीकम शुरू होता है, तो उस सीकम के उस हिस्से से एक छोटा सा अंग होता है बड़ी आंत से लगा हुआ, उसी को अपेंडिक्स कहते हैं।
1: अच्छा, ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, ये बीमार होता है जिसकी वजह से अपेंडिक्स की चर्चा लोग करने लगते हैं, डॉक्टर पास जाना है, बात करनी है, इलाज करना है, तो क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं?
2: जैसे शरीर के कोई भी हिस्सा शरीर का बीमार ग्रस्त हो सकता है, उसी तरह से यह अपेंडिक्स नामक ग्रंथि जो है इसमें भी यह भी बीमार ग्रस्त हो सकता है, इसमें भी सूजन आ सकता है। तो इस जब वह बीमार ग्रस्त या अथवा सूजन ग्रस्त हो जाता है तो इस अवस्था को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो यही रोग है।
1: अच्छा, तो इसमें क्या होता है? जैसे आपने कहा कि ये बीमार हो सकता है, बीमार होने के बाद किस तरह के लक्षण आने लगते हैं, क्या परेशानी बढ़ने लगती है आदमी में?
2: जब इसमें सूजन आ जाता है तो यह जो है दर्द देने लगता है। आमतौर पर जो इसके लक्षण हम देखते हैं मरीजों में वह होता है पेट में दर्द। तो पेट में दर्द आमतौर पर, हालांकि इसके लक्षण विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः जो आमतौर पर देखे जाते हैं वह मैं बताता हूँ। यह जो है दर्द जो है लगभग नाभि के आसपास में शुरू होता है, किसी किसी व्यक्ति में नाभि के ऊपर भी दर्द शुरू हो सकता है, अथवा दर्द शुरू होने के पश्चात धीरे धीरे यह दाहिनी तरफ, दाहिने पेट के दाहिने और नीचे निचले भाग में दाहिने तरफ यह धीरे धीरे जाके सेटल हो जाता है, और साथ में जो है उल्टी की भावना आने लगती है, और जो है भूख नहीं लगती है, हल्का बुखार आ सकता है, कभी कभी बहुत रेयरली जो है पेशाब में जलन भी हो सकता है, और कभी कभी पतला दस्त भी हो सकता है। तो मुख्यतः हम यही लक्षण देखते हैं।
1: और अगर इस तरह की कोई भी परेशानी किसी को शुरू हो तो वो सीधे ये समझ ले कि उसे अपेंडिक्स की परेशानी हो रही है, वो अपेंडिक्स उसका बीमार हो रहा है, या उसके लिए आपके चिकित्सक के पास आकर के उसके कुछ खास जांच करवाने पड़ते हैं, कैसे पता चलता है ये?
2: अपेंडिक्स का, अपेंडिसाइटिस में जिस तरह का दर्द होता है वैसा ही दर्द और भी अंगों में बीमारियां होने से भी ऐसे हो सकती हैं। मुख्यतः जो हम देखते हैं छोटी आंत में इन्फेक्शन, कभी कभी किडनी में पथरी होना या पेशाब की नली में इन्फेक्शन होना, यूटीआई जिसे बोलते हैं, बी कोलाई बोलते हैं आमतौर पर, वह उस स्थिति में, अथवा जो है कभी बच्चों में खासकर जैसे हम देखते हैं गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं उस स्थिति में भी, और तो इस तरह का दर्द हो सकता है। तो अगर कभी भी पेट में दर्द हो तो आपको तो योग्य चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, और वही देखकर जो है कुछ जांच कराकर और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो अपेंडिक्स है वह बीमार ग्रस्त है कि नहीं। जी,
1: इसके लिए कोई खास उम्र सीमा तय की गई है? ऐसी खास उम्र के लोगों में परेशानी बढ़ती है, या किसी उम्र में किसी कोई बीमारी हो सकती है?
2: यह जो अपेंडिसाइटिस है वह किसी भी उम्र में हो सकती है, वो एक साल के बच्चे में भी हो सकती है, और मैंने तो 80-90 साल के पुरुषों में भी यह बीमारियां होते देखी हैं। पर मुख्यतः जो है यह जो हम जो देखते हैं आमतौर पर वह होता है यंग लोगों में ज्यादा होती है, विशेषकर लड़कियों में, यह शोध यह बतलाता है कि लड़कों में यह बीमारी ज्यादा होती है। तो मुख्यतः जो है अगर वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो यंग लोगों में, जैसे कि कॉलेज गोइंग बच्चों में या स्कूल गोइंग बच्चों में यह ज्यादा देखा जाता है।
1: और डॉक्टर साहब, स्त्री और पुरुष, लड़का हो या लड़की, तो ये जो बात, जो जानकारी आपने दी, तो इसकी क्या जो फिजियोलॉजी है दोनों की, शारीरिक संरचना दो है, तो इसमें क्या अंतर है जो खास वर्ग में ज्यादा देखा जाता है ये परेशानी?
2: लड़कियों में ज्यादा होता, आमतौर पर जो हम देखते हैं प्लमों में, वह देखते हैं कि जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है। पर ये उनकी शारीरिक संरचना लड़कों से या पुरुषों से अलग है, इसलिए

0: होती है यह कहना बहुत कठिन है। इसलिए यह संभवतः ऐसा नहीं प्रतीत होता है। मुख्यतः जो अपेंडिक्स के बीमार होने के जो कारण देखे गए हैं वह देखिए, अपेंडिक्स जो है वह शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब कि उस अंग की विशेष जरूरत शरीर को नहीं है, इसलिए उसको वह नहीं भी शरीर में रहे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ लोग इसको एब्डोमिनल टॉन्सिल बोलते हैं कि वो इन्फेक्शन को छानने का काम करता है, सब कहते हैं, पर यह एक शोध का विषय है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है शरीर में इसके रहने से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बीमार क्यों होता है? ये बीमार होता है, इसमें सूजन आ जाता है। वो इसमें जैसे कि कुछ जो है लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, वह फॉलिकल्स जो है कुछ इन्फेक्शन होने से वो सूजन आ जाती है उसके अंदर, या कभी कभी जो मल का कण जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इस कारण जो है वहाँ पे जो कीटाणु हैं वह ज्यादा जम जाते हैं, बैक्टीरिया, और वह कुल मिलाकर उस चीज को बीमार बना देते हैं। तो ये पुरुष और स्त्रियों में संरचना में विभिन्नता है, इसलिए ऐसा होता है, यह कहना नहीं सही प्रतीत होता है
1: जी। और डॉक्टर साहब, लोगों के खान पान या रहन सहन या एक तरह की आदतें जो हैं, इस क्या प्रभाव डालती हैं इसमें?
0: नहीं, विशेष खान पान से विशेष प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है।
1: जैसे लोग कहते हैं कि आप नियमित जो नाश्ता खाना और टाइमली पेट में गैस का होना, क्योंकि वैक्यूम होने की वजह से ये ग्रो करता है, ये आम धारणा है, ये लोग क्या सही सोच है या गलत है?
0: नहीं, अपेंडिक्स के मामले में यह तो सही धारणा नहीं है।
1: ये लोग जो कहते हैं, इसका मतलब कि चिकित्सक ये राय है कि ये गैस पेट में होने से ये ग्रो करता है, बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है कितना समय लगता है जब खतरनाक हो जाता है? जैसे ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा दर्द अगर हो तो पहली मर्तबा से ही स्थिति बिगड़ गई और तुरंत ये नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, लेकिन कितना समय लगता है इसको बड़ा होने में, बढ़ने में?
0: जी, अपेंडिक्स जो है आमतौर पर हम जो देखते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस या एक्यूट कैटरल अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि तुरंत बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, और एक होता है रिकरेंट अपेंडिसाइटिस, मतलब वो बार बार दर्द होता रहता है इसमें। तो जो एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस होता है उसमें होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सूजन ग्रंथि में चली जाती है, और जिससे उसको फटने की आशंका रहती है, ठीक है, तो यह एकदम इमरजेंसी है
1: जी।
0: और दूसरा प्रकार जो मैं बता रहा था, क्रोनिक या रिकरेंट होना, वो बार बार दर्द होता रहता है, वो होता है कि दर्द से परेशान करता रहता है, वह फटता नहीं है। तो ये दो बीमारियां हम देख रहे हैं। तो जो पहले वाला जो है एक्यूट गैंग्रीनस, उसकी तो बहुत इमरजेंसी में इलाज होनी चाहिए उसको, क्योंकि उसमें फटने की आशंका होती है, और एक बार अपेंडिक्स फट गया तो बहुत तरह की परेशानियां इलाज में चली आती हैं।
1: अगर इस तरह के दर्द हो और शुरुआती दौर में, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर कोई मरीज आया तो आप ये भी कभी कहना पड़ता है कि ये परेशानी तो आप पिछले एक साल से है, तीन साल से है, छह महीने से है, या पहली मर्तबा जस्ट अभी शुरुआत है, ऐसी बातें भी होती हैं?
0: हाँ जी, वही जो मैं दूसरा प्रकार बता रहा था, जिसमें कि रिकरेंट बार बार दर्द होने वाला जो अपेंडिक्स होता है, उसमें अक्सर जो मरीज आकर वो बताते हैं कि मुझे ये दो साल से हो रहा है, या मुझे ये छह महीने से बार बार करके दर्द होता है, मैं कुछ दवाइयां लेता हूँ या लेती हूँ तो दर्द में मुझे आराम हो जाता है, लेकिन फिर से दर्द होने लगता है। तो यह जो सेकेंड प्रकार का जो अपेंडिक्स है, इस ये तो समय देता है इंसान को, पर ये तो हम सलाह देते हैं कि अगर ये बार बार दर्द होकर परेशान कर रहा है आपको, पढ़ाई लिखाई में तंग कर रहा है आपको, या आपके जीवन जीने में आपको ये तकलीफ बाधा ले आ रहा है, तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए। हाँ, अगर एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस हो तो बहुत बार जो है वह ज्यादा समय नहीं देता है, वो बहुत दर्द ज्यादा करता है, और समय रहते अगर उसको नहीं उसका इलाज किया गया तो फटने की आशंका उसकी रहती है, तो उस क्षेत्र में भी इसे ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए।
1: डॉक्टर सुशील पांडे जी, जैसे आजकल आम धारणा लोगों की बन गई है कि लोग अस्पताल जाते हैं पेट दर्द की शिकायत को लेकर के, और कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स डॉक्टर ने निकाल दिया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतनी ज्यादा मात्रा में जो कहते हैं बड़े पैमाने पर लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जा रहा है या करवा ले रहे हैं लोग, तो ये क्या सही है?
0: मरीज को अगर अपेंडिसाइटिस है तो अपेंडिक्स का जो निदान है, डेफिनेटिव जो निदान है, वह तो ऑपरेशन ही है। हालांकि कुछ शोध आजकल आने लगे हैं जिसमें कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाए

0: एपेंडिसाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है, किंतु यह शोध में अभी भी निष्कर्ष नहीं हुआ है। देखा गया है कि जिन मरीजों में ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए वह जल्दी स्वस्थ होते हैं और कंपैरेटिवली वो जो है उनमें बार बार दर्द होने वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो वो जल्दी उसका जो है वो जल्दी स्वस्थ होते हैं और उसके इलाज में खर्च भी कम आता है, क्योंकि आप बार बार दवाई खाएंगे, काफ़ी लंबे समय तक दवाई खाएंगे तो उसमें खर्च भी आता है और परेशानी भी मरीज को होती है। हाँ, जहाँ तक प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा संख्या में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो इसके मैं जो है इसकी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स क्या है यह तो मैं नहीं जानता हूँ, पर चूंकि हमारे जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी आबादी भी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो निस्संदेह अगर ज़्यादा आबादी है तो ज़्यादा लोग भी इस रोग से ग्रस्त होंगे, तो हो सकता है कि इसलिए ही ऐसा प्रतीत होता हो कि ज़्यादा लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। अगर वो योग्य चिकित्सक के पास में जा रहे हैं तो यह कहना सही नहीं होगा कि वो अननेसेसरी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, हालांकि कहा जाता है कि देखिए अपेंडिक्स की जो बीमारी है वो कैसे पकड़ में, कैसे आप कैसे उसको डायग्नोसिस करेंगे कि भाई इसको अपेंडिक्स ही हुआ है इन मरीज को, तो यह तो है जो सबसे बड़ा जो डायग्नोस्टिक इसमें जो बात है वो है कि योग्य चिकित्सा का अनुभव। तो ये जो है जो सर्जन है वो अपने अनुभव के आधार पर उनको वो बताते हैं कि ये अपेंडिक्स उनको प्रतीत हो रहा है नहीं प्रतीत हो रहा है। कुछ सपोर्टिव जांच भी होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड पेट का करना, तो अल्ट्रासाउंड के पेट में वो बहुत बार अपेंडिक्स जो है सूजन होने से वो नजर आ जाता है, कभी कभी नजर नहीं भी आता है। ब्लड खून की जब जांच करते हैं तो उसमें जो है जो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होती हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई होती है, तो इस आधार पर जो है सर्जन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसको अपेंडिक्स है कि नहीं है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड के अलावा भी CT स्कैन भी करना पड़ सकता है, बहुत रेयरली कभी कभी बेरियम मेल फॉलो थ्रू भी करना पड़ सकता है, तो इन जांच के आधार पर जो है अपेंडिक्स के निष्कर्ष पहुंचते हैं कि इस मरीज को अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम आपकी बात करें, आप भी एक सर्जन हैं और प्रतिदिन इतने सारे मरीज को देखते हैं, तो आपके पास जो भी मरीज आते हैं अपेंडिक्स की शिकायत को लेकर के, या आपको लगता है कि जो मरीज आते हैं उनको अपेंडिक्स की परेशानी उनको है, तो आपको क्या लगता है कि जितने मरीज आते हैं उसमें दवा से इलाज के लायक कितने मरीज होते हैं, यानी आमतौर पे दवा से ठीक होने वाले अपेंडिक्स हमारे क्षेत्र में कितना है और कितने प्रतिशत जो ऑपरेशन ही उसका इलाज है?
0: देखिए, मैं डेफिनेटिव सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स तो इसमें नहीं बता पाऊंगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि जो पेट में दर्द हो रहा है वो निर्णायक रूप से सिद्ध करना है कि यह अपेंडिक्स है कि नहीं है। अगर मुझे लगता है कि इस मरीज को बार बार जो परेशानी हो रही है या यह जो अधिक पेट का दर्द जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस से चलते हो रहा है, तो आमतौर पर हम सलाह देते हैं कि इसको ऑपरेशन होना चाहिए। पर हम कभी कभी देखते हैं कि नहीं, दर्द की जो परिमाण है, दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हल्का हल्का होता है और ज़्यादा तंग नहीं करता है, तो उस स्थिति में अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे कि अभी उसका कोई जीवन में जैसे परीक्षा देना है या कोई और काम है, सामाजिक काम है उसको, उसमें वह जरूरी है ज़्यादा, तो हम उसको दवाइयाँ देकर भी छोड़ देते हैं कि चलो भाई तुम अपना परीक्षा निकाल लो या आगे देख लो, अभी कुछ दिन दवाई खा लो, अगर तुम्हें ये बार बार परेशान करने लगे, रिकरेंट अपेंडिसाइटिस पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब करने लगे या जीवन जो आपको प्रोफेशन करने में दिक्कत करने लगे, तो आप इसको फिर ऑपरेशन करा लीजिए। पर यह बात जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए नहीं है। अगर वो एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस है जिससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, फटने की आशंका हो गई हो, अल्ट्रासाउंड में स्पष्ट दिख रहा हो, या पस जम गया हो, जैसे जटिलता कुछ आ गई है, या जांच में लगता है कि नहीं अपेंडिक्स तो फट चुका है उसका, तो इस स्थिति में ऑपरेशन छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है।
1: यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर शुरुआती दौर में पहले अगर मरीज चिकित्सक की राय लें, उनके पास जाएं, तो दवा से इसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।
0: शुरुआत में वही मैं बता रहा था कि ये तो जो रोग है मुख्यतः दो प्रकार के हैं, तो अगर ये एक्यूट रिकरेंट, एक्यूट नहीं है, रिकरेंट वाला अपेंडिसाइटिस जिसमें हल्का हल्का करके दर्द होता रहता है, तो उसमें आपके पास में समय मिलता है आपको और बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाए जाए तो वो कभी कभी अपने आप से भी ठीक हो जाता है और कंट्रोल में रहता है वो, तो उस स्थिति में ऑपरेशन नहीं करने की भी आवश्यकता हो सकती है।
1: डॉक्टर सुशील पांडे जी, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे तमाम श्रोताओं को। दोबारा जब भी मौका मिला इस विषय पर और भी बातें करेंगे, आपकी बात तमाम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे हमारे कल्याणी कार्यक्रम।

0: पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी। भेंटवार्ता में आपने सुना अपेंडिक्स कारण एवं निदान। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, भेंटकर्ता थे संजय कुमार मिश्रा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे श्रोताओं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जुड़ते हैं एक बार फिर गीत संगीत की दुनिया में, सुनते हैं चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
3: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनके दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

श्रोताओं, सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना फिल्म दरिया दिल के इस गाने को विठल भाई पटेल और नितिन मुकेश की आवाज़ में। राजेश रोशन के संगीत इंदिवर के बोल थे।

अभी आपने सुना फिल्म जुर्म के इस गाने को साधना सरगम कुमार शानू की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं फिल्म कस्मे वादे के गाने को।

छत पे कपड़े सुखाए, मैं सच्ची में तुझको ताड़ू, तू नकली सा शर्माए। मैं तेरी गली से गुजरूं, तू छत पे कपड़े सुखाए, मैं सच्ची में

अभी आपने सुना फिल्म जॉली एलएलबी की गाने को, मोहित चौहान श्रेया घोषाल की आवाज़ में, सुभाष कपूर के संगीत थे और कर्षण के बोल थे और कर्षण के संगीत। और अब आइए सुनते हैं फिल्म आन की इस गाने को अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में, समीर के बोल हैं अनु मलिक के संगीत। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपट यहीं समाप्त होता है। रात्रि 8:45 पर हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए।

डॉक्टर गांगुजी बोलो में हम जुड़ेंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या के लिए 11:00 दिल्ली के, रात्रि 9:00 सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार और 9:30 विविध भारती की प्रसारण सेवा छाएगी। तो रात्रि 10:30 हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में विशेष कार्यक्रम के लिए और रात्रि 10:30 पर रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से। तो आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में समाचार संध्या के लिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुँच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
4: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
1: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनअतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने बस्तर जिले के साल 2013 झीराम वादी माओनवाज हमले में कसूरवार करार दिए गए 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई है। और आजमुदाकार कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहिब फाल्के नाम से नवाजा जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत का टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए हुकूमत और सेमीकंडक्टर सनत के दरमियान करीबी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सरकर्दा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोलमेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनूई जहानत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनअतों की बड़े पैमाने पर शमूलियत की अपील की। एआई के शोबे में 1 करोड़ अफराद को तरबियत देने के हदफ का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के होनहार अफराद और आलमी सनती रहनुमाओं की सलाहियतों और तजुर्बों को यकजा करने से खातिरख्वाह इम्कानात पैदा हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मामले में कायद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि सेमीकंडक्टर के शोबे में खातिरख्वाह पेशरफ्त भी हुई है और कहा कि ये इको निज़ाम बुनियादी कोशिशों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने और ज्यादा मौकों के मरहले की जानिब गामज़न है। इस दौरान सीईओज ने भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को फरोग देने में हुकूमत की पायदार कोशिशों की सताइश की। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में सलाहियत साजी की भारत की अहलियत के तहत उभरते हुए इम्कानात पर एतमाद का इजहार किया, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजीज और माविन सनअतें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले सेमीकॉन इंडिया के 5वें एडिशन के इफ्तिताह से पहले ये गोलमेज मीटिंग हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निजाम से वाबस्ता शराकतदारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि माविनत और इख्तिरा को फरोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अलावी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप से मुतालिक मखसूस पवेलियन शामिल होंगे। सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत लाजमी कवरेज के लिए तनख्वाह की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना कर दिया है। आज काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 51 लाख इजाफी मुलाजमीन के लाजमी ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है, जिससे कारकुनों के लिए समाजी तहफ्फुज़ का दायरा नुमाया तौर पर वसी होगा। इस इकदाम के लिए हुकूमत के सालाना अखराजात का तखमीना तकरीबन 11,349 करोड़ रुपए है। जनाब वैष्णव ने कहा कि नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद कल विश्वकर्मा जयंती से नाफिजुल अमल हो जाएगी।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की तनख्वाह की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। जनाब वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मौजूदा फैसला इस हद को 25,000 रुपए तक बढ़ाकर इस नुक्ता नजर को मजीद बढ़ाता है, जो कि इन बरसों के दौरान उजरत में पायदार बढ़ोतरी, इजाफी आमदनी और बाजाबता रोजगार में तौसी की अक्कासी करता है। हमारे नामानिगार के रिपोर्ट के मुताबिक इस मंजूरी से प्रोविडेंट फंड की बचत तक रसाई में इजाफा होगा और मुलाजिमीन की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन तहफ्फुज को वसत मिलेगी। पेश एक रिपोर्ट।
2: तनख्वाह की हद में इजाफा एक जामे मुस्तहकम और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग समाजी तहफ्फुज के निजाम की तामीर की जानिब एक और अहम कदम है। इस वक्त अगर कोई नया मुलाजिम 15,000 रुपए माहाना से ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजमत इख्तियार करता है तो वो खुद ब खुद ईपीएफ के दायरे कार में शामिल नहीं होता था। इस हद को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से मुलाजमीन का एक बड़ा हिस्सा कानूनी समाजी तहफ्फुज के निजाम में शामिल हो जाएगा। नजरसानी शुदा

0: अभियान की शुरुआत से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत की तारीफ की और उन्हें अवामी बहबूद को सही मायनों में तरजीह देने वाला रहनुमा करार दिया।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी ने अवामी खिदमत के अपने 25 साल में भारत के हर शोबे की काया पलट की है। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने जल शक्ति के वजीर मुमलिकत वी सोमन्ना और मकानात और शहरी उमूर के वजीर मुमलिकत तोखान साहू के हमरा आज स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2026 का आगाज किया। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। आज शाम तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि इस साल की मुहिम 5 अहम सुतूनों पर मरकूज है। इनमें अवामी मकामात की सफाई सुथराई, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि के मकासद शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये दहशतगर्द ग्रुप हथियारों, धमाका खेज मवाद और मनुष्यात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलव्वस रहा है। इसके अलावा ये नौजवानों को भड़काने और मुजरिमीन को दहशतगर्दी की जानिब माइल करने में भी शामिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में आज गजट नोटिफिकेशन जारी किया। शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत के जमहूरी ढांचे और फिरकावाराना हम आहंगी के ताने बाने को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज डिजिटल मवाद भी शाया किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के नजरिए के तहत उसने UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नजदीक ये वाकया खास तौर पर तशवीश का बायस है क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुश्तपनाही वाले यमन के हूसी मुसल्ला ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया और उसे तबाह कर दिया। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने खबरदार किया है कि सऊदी क्यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूर इकदाम करेगा। इस दौरान हूसियों ने मक्का को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है। सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान तेजी से कशीदगी में इजाफा होने के दरमियान ये वाकया पेश आया है। कल सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने कई अलर्ट्स जारी किए थे। अलबत्ता उसने बहरे अहमर में अपने अहम ऑयल पोर्ट यांबू समेत 6 शहरों में इन अलर्ट्स को हटा भी लिया था। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने थिम्पू में अपने भूटानी हममनसब लियोनोपो डीएन ढुनग्याल से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर तावुन का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में तरक्याती शराकत दारी, तवानाई, तिजारत, राबता, सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबित समेत भारत और भूटान के कसीर जहती ताल्लुकात को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी NIA अदालत ने झीरामवादी के सभी 10 कसूरवारों को आज सजाए मौत सुनाई है। खसूसी जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। कसूरवारों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा पुलिस स्टेशन के तहत झीरामवादी में हुए माओनवाज हमले में कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले में कौमी जांच एजेंसी NIA ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और 11 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुलजिम की समाअत के दौरान मौत हो गई। NIA की खसूसी अदालत ने 5 सितम्बर को बाकी 10 मुलजिमीन को इस

मामले में कसूरवार करार दिया और आज सभी 10 मुल्जमीन को सजाए मौत सुनाई गई। भारत सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेशन के मरकजी बोर्ड CBFC की फौरी तौर पर असर नौ तश्कील की है, जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। इत्तला-ओ- नशरियात की वजारत ने कहा कि नौ तश्कील शुदा बोर्ड CBFC में 18 मेम्बरान होंगे। मस्कूरा बोर्ड CBFC के असर नौ तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इत्तला-ओ- नशरियात की वजारत की जानिब से आज जारी किया गया। मशहूर अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहेब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। कई नस्लों को तहरीक देने वाले सिनेमा के उनके सफर और भारतीय सिनेमा में गरां कदर ताउन के बदले जनाब नाग को इस इनाम से नवाजा जाएगा। जनाब नाग को इस महीने की 22 तारीख को गुजरात के केवड़िया में मुनाकिद होने वाली 72वीं कौमी फिल्म इनामत तकरीब के दौरान दादा साहिब फाल्के इनाम से सरफराज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजमुदाकार अदाकार अनंतनाग को दादा साहिब फाल्के इनाम दिए जाने के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि जनाब नाग की बेहतरीन कारकर्दगी, हमाकीर सलाहियत और उमदगी ने कई दहाइयों तक भारतीय सिनेमा पर अनमिट नकोश छोड़े हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि जनाब नाग ने हमेशा अपनी अदाकारी में गहराई का मुजाहिरा किया है और मुनफरिद अंदाज पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि एक मुनफरिद फनकार के तौर पर जनाब नाग इस एजाज के मुस्तहिक हैं। हुकूमत ने 3 लाख रुपए तक के सरमाए वाली बरामदाती खेपों को रजिस्ट्रेशन के मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना कर दिया है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद नए और छोटे बरामदकारों के तकमीली अमल के बोझ को कम करना और तामीली अमल के बोझ को कम करना और पोस्टल, कुरियर और दीगर उभरते हुए चैनल्स के जरिए बरामद के अमल में आसानी पैदा करना है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनअतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी CEOs ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने EPFO के तहत कम अज कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजिमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: कैसी तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेऊन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए हैं।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े

0: 0044।
1: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कुल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बजट तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचों को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल होने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी सहित 18 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना
1: कार्यक्रम रजनीगंधा की पहली पेशकश फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के इस गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में हिंदी वर्ग के बोल बप्पी लहरी के संगीत थे। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बर्मा मलिक के बोल सोनी कौमी के संगीत है। फिल्म का नाम है सावन भादो।

श्रोता, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। भी आपने सुना फिल्म जीने की राह के इस गाने को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में फिल्म मेरा गाँव मेरा देश के इस खूबसूरत से गाने को।

दोस्ताना फिल्म के इस गाने को सुना आपने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और अब आइए सुनते हैं इंदिवर के बोल, अनु मलिक के संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये गीत।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में रात्रि 11 बजे हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए और 11:05 में अंग्रेजी समाचार के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in scaling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. The roundtable was held ahead of the inauguration of the 5th edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organisation from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional employees. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
1: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. इससे करीब 51 lakh employees को इसका benefit मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले band में थे, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे estimated government expenditure रहेगा about 11,339 crore rupees every year.
2: The government has declared Pakistan-based Shehzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. A special NIA court at Jagdalpur in Chhattisgarh's Bastar district today sentenced all 10 convicts to death in the 2013 Jhelum Valley Maoist attack case. The convicts have been given 30 days to appeal against the verdict in the High Court. On 25th of May in 2013, 27 people, including several senior Congress leaders, were killed and 35 others were injured in Maoist attack in Jhelum Valley in Bastar district. BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from tomorrow to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. With a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. The party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with Prime Minister Modi's personality. The Prime Minister's birthday tomorrow will be observed as Seva Divas and blood donation camps will be organized across the country. Veteran actor of Kannada cinema Anant Nag will be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024 for his outstanding contribution to the Indian cinema. The Information and Broadcasting Ministry made the announcement today. The award will be presented at the 72nd National Film Award Ceremony on 22nd of this month at Kevadia in Gujarat. The Delhi government has approved the construction of a 250-bed super-speciality trauma block at Guru Tegh Bahadur Hospital in Dilshad Garden of Delhi. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi. The Chief Minister said that the project will cost over 244 crore rupees and the block will be constructed under Phase 4 of the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. It will have 250 beds, 48 specialist OPD rooms and 9 modern operation theatres. In men's cricket, India will play the final match of the 3-match T20 International Series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India have already secured the series with convincing wins in the first two matches. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।